आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसी

0: देह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग और DTH पर सुन सकते हैं और इसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन है न्यूज ऑन AIR जिसके जरिए आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय ले सकते हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: वंदन वार

चिंतन। बाल गंगाधर तिलक का कथन है, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। भक्ति संगीत।

0: से दुलार के हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के,
1: हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह आपकी अपनी विविध भारती की आवाज सुबह 8:30 पर चित्रलोक जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद

ध्वनि तरंगों की तल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 217। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, गज तत्ववाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। ये कार्यक्रम आप शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8 बजे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम, एक जय घोष। आज 32वीं कड़ी, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित है अभिनेत्री श्यामा पर। 9:30 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश। 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2:30 पर सदाबहार नखमे। 3 बजे हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, अंजलि की कहानी सुनिएगा। कहानी सुनेगा अंजलि, लेखक है अरगवान अब्बी। छाया गीत शाम 5 बजे। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन सुनिएगा। शाम 7 बजे जयबाला। 7:45 पर गुलदस्ता।

रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका सफेदी के पेड़। लेखक रेवती शरण शर्मा, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें कि सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री श्यामा

10 बजे छाया गीत होगा, 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात, रात्रि 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। ये था लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। फिल्म संसार के जाने माने कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्रीराम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

0: संगीत सरिता के अंतर्गत आज से हम आपको सुनवा रहे हैं गज वाद्यों पर आधारित श्रृंखला गज तत् वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। सुनिए इसकी पहली कड़ी।
1: नमस्कार। भारतीय संगीत में गज वाद्यों की अपनी परंपरा रही है। गज, जिसे अंग्रेजी में बो कहा जाता है, प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य के नाम से संबोधित किया है, किंतु 20वीं शताब्दी के कतिपय लेखकों ने प्रहार से वादन किए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य और गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को वितत्वाद्य की संज्ञा प्रदान की है। गज वाद्यों को वितत कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथों में अवनद्य वाद्य को वितत वर्ग के अंतर्गत बताया गया है, इसलिए इसे गज वाद्य कहना या गज तत्वाद्य कहना अधिक उचित प्रतीत होता है, जिससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि वे वाद्य जिसमें तार लगे होते हैं और उन्हें गज से घर्षण करके बजाया जाता है। गज वाद्यों की यह विशेषता है कि इन वाद्यों द्वारा एकल वादन अर्थात सोलो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और इन वाद्यों से साथ संगत भी अच्छी तरह की जाती है। इतना ही नहीं, इन वाद्यों का वाद्य वृंद में बहुत प्रयोग किया जाता है। वर्तमान भारतीय शास्त्रीय संगीत में इस वर्ग के वाद्यों में वायलिन, सारंगी, इसराज, दिलरुबा, तार शहनाई आदि वाद्य प्रचलित हैं। श्रोताओं, आज हम सर्वप्रथम वायलिन वाद्य की चर्चा करेंगे। वर्तमान में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संगीत में वायलिन ने अब अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। वायलिन को उत्तर भारत में बेला नाम से संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि रावण हस्त वीणा लंका

पति रावण द्वारा बनाई गई थी, जिसके दो तारों को गज से बजाया जाता था। संगीत सुधाकर, संगीत रत्नाकर, संगीत राज आदि ग्रंथों में गज से बजाई जाने वाली पीना की वीणा का वर्णन उपलब्ध होता है, किंतु यह स्वीकार करने में हमें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि वर्तमान वायलिन पाश्चात्य देशों की ही देन है। वायलिन का आविष्कार किसने किया, यह आज भी एक विचारणीय प्रश्न है। कुछ विद्वान गास्पर ट्विफो प्रगर को वायलिन का आविष्कारक मानते हैं। कुछ चिंतकों का चिंतन है कि वायलिन को क्रिमाना के आंद्रे अमाती ने बनाया। कुछ गुणीजनों का विचार है कि वायलिन का निर्माण गैस्पारो बर्तलोत्ती अर्थात गैस्पर द सालो द्वारा किया गया है। कुछ जानकार वायल से वायलिन की उत्पत्ति मानते हैं और कुछ संगीतज्ञों का मानना है कि वायलिन का विकास रिबेक और रबाब वाद्य के आधार से हुआ है। इसका आविष्कारक भले कोई भी हो अथवा किसी वाद्य से इसका विकास हुआ हो, पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वायलिन ईस्वी सन 1505 से 1530 तक निर्मित हो चुका था। भारत में वायलिन का प्रयोग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हो रहा है। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायलिन का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय श्री बालू स्वामी दीक्षित जी को दिया जाता है। उत्तर भारत में वायलिन का शास्त्रीय संगीत में प्रयोग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। श्री पी ए सुंदरम अय्यर, श्री गगन बाबू, बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां, श्री बलवंत सिंह हुगुन आदि कलाकारों द्वारा वायलिन पर उत्तर भारतीय संगीत को प्रस्तुत किया गया। सच पूछा जाए तो इन्हीं कलाकारों द्वारा वायलिन की लोकप्रियता का श्री गणेश हुआ। तत्पश्चात श्री वी जी जोग, पंडित गजानन राव जोशी, श्री डी के दातार, श्री एम एस गोपाल कृष्णन, डॉक्टर श्रीमती एन राजम, श्री शिशिर कणाधर चौधरी और श्रीधर पारसेकर आदि कलाकारों द्वारा वायलिन का केवल प्रचार ही नहीं बल्कि इनके द्वारा इसकी वादन तकनीक को भी अत्यंत समृद्ध किया गया। तो आइए सुनते हैं पीडी सप्तऋषि जी का वायलिन वादन। राग है जौनपुरी।

गजतत्वाद्य, गजवाद्यों पर आधारित श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल के सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके मीत हर रोज सुबह।

0: दुलार के हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के,
1: हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह आपकी अपनी विविध भारती की आवाज। सुबह 8:30 पर चित्रलोक, जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री को जो अपनी शोखी के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम है श्यामा। सन 1954 फिल्म भाई भाई, सन 1956 फिल्म भाई भाई, श्यामा किशन रंग में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में है।

भाई भाई फिल्म का गाना गीता रॉय की आवाज में था, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का था। एक बार फिर आ रही है गीता रॉय की ही आवाज। मजरू सुल्तानपुरी ओपी नैयर, फिल्म आर पार।

भाभी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था। राजेंद्र कृष्ण की बोल थे, संगीत चित्रगुप्त का था। विविध भारती से आप बोले बिसरे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

शारदा फिल्म का गीत था राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और सी रामचंद्र की तरह सी आशा भोसले की आवाज। दिन की इस भागदौड़ में सुबह के 7:18 हो चुके हैं। लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों के सहारे आगे बढ़ते हैं।

शरद फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था, एसएच बिहारी के बोल थे, संगीत खुद हेमंत कुमार का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अपना घर फिल्म का गाना, गीता रॉय और मुकेश की आवाजों में, प्रेम धवन के बोल, रवि की तर्ज़।

इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम खत्म होता है, लेकिन विविध भारती से हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण जारी है। तो दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग रहिए। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

खाएगा आपका बाल बच्चा, खा के देखो वेरी वेरी गुड मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का

मेरा नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा।

फिल्म का नाम था भाई भाई, राजेंद्र कृष्ण की बोल थी, संगीत मदन मोहन का था।

मुझे सुल्तानपुरी की बोलती है ओपी नैयर की तर्ज आवाजें मोहम्मद रफी और गीता रॉय की थी और अब ये फिल्म है बरसात की रात, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथी साहिर लुधियानवी, रोशन।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सावन भादो फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में था। वर्मा मलिक के बोल थे, संगीत सोनिक उमी का था। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में शकील बदायूनी का नगमा, नौशाद के बोल और फिल्म का नाम दिल दिया कर दिया।

0: आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचार की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
4: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
4: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
3: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।

0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
2: We signed this year a free trade agreement with Europe.
3: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोजितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
5: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो

0: हमारे भी बहुत अच्छा हुआ, हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है आंखों से देख

0: नहीं सकती थी मासूम। आवाज से पहचान लिए तीन दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नगालैंड

0: केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत आइए करते हैं बर्फे फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें श्रेया घोषाल और निखिल की। इस गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

फिल्म संगीत में आइए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं कॉकटेल फिल्म से। इस गीत को आवाजें दी हैं नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने, वहीं इस गीत के बोल लिखे हैं अरशाद कामिल ने और सुरों से सजाया है प्रीतम ने।

फिल्म संगीत का अगला और आखिरी गीत लीजिए, आप तक पहुंच जाते हैं दबंग 2 इस फिल्म से। दबंग 2 फिल्म के इस गीत को आवाजें दी हैं राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने। इस फिल्म के गीत के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने, वहीं सुरों से सजाया है साजिद वाजिद ने।

दबंग फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार। नया दिन, नए विचार, नई ऊर्जा के साथ मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जिंदगी रोज एक मौका देती है नया दिन, नई सुबह, नई सोच के साथ। तो अगर कल कुछ अच्छा ना हुआ तो आज बेहतर करने का मौका है। तो बिल्कुल असली ताकत वही है जो गिरकर भी मुस्कुराने की हिम्मत रखे। तो आज एक वादा करते हैं, हर पल को जिएंगे, खुलकर जिएंगे, सच्चे दिल से जिएंगे। बस इसी खुद से किए वादे के साथ शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। आज के मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम इस वक्त आपके साथ ट्यून है आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर, और इस वक्त जो नमस्कार की पूरी क्रिएटिव टीम आपसे नमस्कार को रूबरू करवा रही है, उससे करवा देते हैं आपका परिचय।
1: और नमस्कार की टीम में ट्रांसमीटर पर हमारा साथ दे रहे हैं पारसपुरी गोस्वामी और फारूक अहमद शेख।
0: तकनीकी सहयोग के लिए इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं इंजीनियर सुनील जयपाल।
1: और एचपीटी कंसोल पर हमारा साथ दे रही हैं रेखा भाटिया।
0: वहीं एफएम के ट्रांसमीटर पर है अनाउंसर ऑन ड्यूटी कविता सांखला।
1: और पूरी टीम के साथ कार्यक्रम की होस्ट मैं चंद्रकला सुथार,
0: और दोस्तों मैं हूं स्वाति फिंसाली। और इस पूरे कार्यक्रम की थीम तैयार की है कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राजेश लामरोड ने। और दोस्तों आज मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में होंगी आपसे ढेर सारी बातें, और उनके साथ ही सुनवाएंगे आपको गाने नए नवेले। तो कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा पहला गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: इसको सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गुप्त।

0: रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: उफ़, इस पतरे की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: स्वाति जी कहते हैं ना कि कोई भी डर जब हमको सताता है तो उस डर को जब हम पार कर लेते हैं तो हम नई चीजें सीखना शुरू कर देते हैं, और सीखते रहने से रचनात्मकता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए किसी काम को लेकर मन में कोई डर हो तो उसे दूर करना ही समझदारी है। इससे हमें नई चीजें सीखने का जो अनुभव है वो भी मिलेगा।
1: बिल्कुल। और चंद्रकला देखो ना, ये जो अनुभव है हम भी तो हमारे श्रोताओं के साथ रोज ही साझा करते हैं। जब भी हम रोज अपनी श्रोताओं से नई नई बातें शेयर करते हैं, नई नई जानकारियां शेयर करते हैं, तो हमारा भी अनुभव बढ़ता है और श्रोताओं का ज्ञान भी बढ़ता है, और डर तो निश्चित तौर पर दूर भागता ही है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार महात्मा गांधी से भी किसी ने पूछा था कि आपके जीवन का रहस्य क्या है, तो
0: अच्छा।
1: उन्होंने भी कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो हम सबका जीवन भी तो संदेश बनना चाहिए, लेकिन सवाल ये आता है, क्या हमारा जीवन ऐसा संदेश बन सकता है जिससे लोग सकारात्मक रूप में याद रखें, या हमारा जीवन ऐसा संदेश दूसरों को देगा जिससे लोग हमें नकारात्मक रूप में याद रखें? चुनाव हमारा है, क्योंकि कर्म भी हमारे ही होंगे। तो बिल्कुल बातें आपसे शेयर करते रहेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: स्वाति, अक्सर लोग कहते हैं कि बीता हुआ कल वापस नहीं आता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जो ये यादें हैं, जब हम पीछे छोड़ के आते हैं तो वही हमारे आने वाले कल के लिए ज़रूरी होती है, और जो ये सिर्फ यादें होती हैं, ये बीते हुए दिन नहीं होते हैं। कभी कभी जब हम हार मान लेते हैं तो ये पुरानी यादें ही तो होती हैं जो हमें एहसास दिलाती है कि हमने कितनी मुश्किलों से, कितने संघर्ष के बाद आज को पाया है।
1: बिल्कुल, और ये जो आज है इसे खूबसूरत बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सब की है। देखिए, बीते हुए कल को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, आने वाला कल कैसा होगा उसको तय करने की जिम्मेदारी हमारे आज की है। और वैसे कल कैसा होगा ये तो अनिश्चितताओं से भरा हुआ हमेशा ही रहता है, जिंदगी की खूबसूरती भी तो वैसे यही है। अगर सोचे ना, सब कुछ पहले से पता हो तो जिंदगी बोरिंग लगने लगेगी ना, लेकिन जैसे ही कोई अचानक से अच्छी खबर मिलती है या अनपेक्षित खुशियां मिलती है तो फिर दिल झूम उठता है। तो इसीलिए जीवन को आश्चर्य की तरह जीना चाहिए, कभी भी समस्या की तरह नहीं मानना चाहिए। बस सोचिए ना, आपके लिए भी तो एक आश्चर्य है, आने वाला गाना कौन सा होगा ये भी तो आपके लिए सरप्राइज है।
0: बिल्कुल, तो आज अपने बीते हुए दिनों को याद कीजिए, लेकिन ठहरिए मत दोस्तों, यादें आपको सिखाने के लिए आती हैं, रुकने के लिए नहीं। आगे बढ़िए, नई यादें बनाइए और अपनी जिंदगी को और भी शानदार बनाइए।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: स्वाति, ये जो दूरी का फलसफा है वो भी बड़ा अजीब होता है ना। हम जितनी कोशिश करते हैं कि यादों से किनारा कर ले, बातों से किनारा कर ले, एहसासों से किनारा कर ले, लेकिन वो उतनी ही गहराई से हमें घेर लेती हैं। जैसे कोई मुसाफिर होता है, वो अपनी मंजिल को बदलता तो है पर लौटता कहाँ है, उसी पुरानी गली में। वैसे ही हमारा दिल भी अक्सर यादों की पनाह में आता रहता है।
1: बिल्कुल, और ये जो यादों की पनाह है ये सुकून भी देती है हमेशा हमें। और जब सफ़र की बात चली है तो हमारा ये जो आजकल का मॉडर्नाइजेशन का सफ़र है ये हमें कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर भी कर गया है।
0: बिल्कुल।
1: तो ज़रूरत, जिस तरह से हम यादों के सफ़र में वापस लौटते हैं, सुकून पाते हैं, उसी तरह से अगर हम भी फिर से प्रकृति के पास आ जाएं, पेड़ों की छाँव में अगर हमें सुकून मिलने लगे, नदियों की कलकल सुनने में अगर सुकून मिलने लगे, झरनों के बहते कलरों में अगर सुकून मिलने लगे, पक्षियों की चहचहाट में सुकून मिलने लगे, तो फिर क्या ही बात है। लेकिन शहरों में थोड़ा मुश्किल है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या किया जाए, फिर से उस सुकून की ओर लौटा जाए, प्रयास वही किए जाए कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाया जाए। बातें आपसे शेयर कर रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, आप बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: स्वाति कह रहे हैं इस गाने में कि मुंह फेर बैठे हैं अपने खुदा से, क्या मुंह फेर लेना समाधान है किसी बात का?
1: बिल्कुल भी नहीं, मुंह फेरना समाधान नहीं है, बल्कि अगर कोई समस्या आ जाए उसका खुल के सामना करना ही तो सच्चा समाधान है।
0: बिल्कुल, जब हम किसी मुश्किल काम से मुंह फेरते हैं तो हम केवल काम को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हम उस सीखने वाली जो प्रक्रिया है उसको भी छोड़ देते हैं, और मौके होते हैं जो अच्छे अवसरों के, जो मौके मिलते हैं हमें, अच्छे अवसर मिलते हैं, वो भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं।
1: तो फिर करना क्या है, जब भी मौका दे जिंदगी उसको लपक लेना है, तभी तो जिंदगी खुशगवार होगी।
0: बिल्कुल,
1: तो बिल्कुल हमारे सामने भी मौका है हमारे श्रोताओं को खूबसूरत गाना सुनवाने का, तो बिल्कुल सुनवाते हैं।

0: तो सुनो, बजने वाले हैं, यहाँ हम न्यूज ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
1: जी, आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी।
1: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: देश में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। मंत्रालय ने बताया कि किसान 9140245981800 नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में आगामी 1 और 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न पंचायतों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहलों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए और रजत पदक विजेताओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा जन कल्याण में संसाधनों की कमी दूर की जा सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ

0: नागरिक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में चल रहे विशेष यातायात अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल 9703 वाहनों के खिलाफ एक ही दिन में कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. बी एल मीणा ने बताया कि सबसे ज्यादा 3638 मामले वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने के दर्ज किए गए। इसके अलावा अवैध नंबर प्लेट, वाहनों पर अनधिकृत लेखन, मॉडिफिकेशन और अवैध हूटर बत्ती तथा प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा इकट्ठा करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। इधर राजस्थान पुलिस ने भी आम जन से जल्दी मुनाफे के लालच में बिना जांच पड़ताल के किसी अनजान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा निवेश नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। कई जिलों में आंधी चलने और बारिश होने के समाचार हैं। डीग, धौलपुर और भरतपुर में तेज अंधड़ के साथ हल्की बरसात हुई, इससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं कोटपुतली बहरोड के कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। वहां तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: बहरोड क्षेत्र में देर शाम मौसम में बदलाव के कारण तेज हवा और तूफान के कारण दर्जनों पेड़, 80 से अधिक बिजली के पोल और 50 से अधिक ट्रांसफार्मर गिर जाने के कारण विद्युत वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई, जिसे सुधारने के लिए बड़ी संख्या में बिजली विभाग की टीमें देर रात तक विद्युत व्यवस्था बहाल करने में जुटी रही। बहरोड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं पारा भी लुढ़ककर नीचे आ गया। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपुतली, बहरोड।
0: दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अब भी गर्मी और उमस का असर बरकरार है। कल जैसलमेर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। इस मौसमी बदलाव से आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। प्रदेश की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का कल निधन हो गया। वे 98 वर्ष की थीं। गौरी देवी का जन्म बाड़मेर के कोरण गांव में लोक कलाकार परिवार में हुआ। करीब 8 दशक तक वे मांड गायन के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। गौरी देवी ने देश भर में मांड गायन की प्रस्तुतियां देकर प्रदेश की लोक संस्कृति को एक नई पहचान दिलाई। वे भैरवी युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके चर्चित गानों में बागा चालो केसरिया, सौ कोसों दूर बसे महारा साजन, आई आई सावणियरी तीज और केसरिया बालम पधारो शामिल है। उनके कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार प्रसारित होते थे। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। पाली के गवरी में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन, मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जो कि इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के साथ आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर। और नमस्कार में हम इतिहास के आईने में अगर नजर डालें तो फिर आज का दिन कुछ अलग सा ही नजर आता है, क्योंकि बहुत वैसे तो हर दिन अपने आप में कोई ना कोई सीख दे जाता है, लेकिन आज का जो खास दिन है वो हमें बता रहा है कि सन 1987 में आज ही का वो दिन था जब ब्रिटिश चुनावों में मार्गरेट थैचर को तीसरी बार ऐतिहासिक विजय मिली थी।

0: साथ ही दोस्तों इतिहास में आज का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के लिए भी अमर है। प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों पर लगान बढ़ा दिए जाने के विरोध में 12 जून 1928 को बारडोली में व्यापक किसान आंदोलन और सत्याग्रह शुरू हुआ। इसी आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
1: साल 2008 में प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन को 10वें ओसियाना सिनेफैन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया था। दिन आज ही का था, यानी कि 12 जून का।
0: साथ ही दोस्तों क्रिकेट इतिहास के सर्वकालीन महान ऑलराउंडर वेस्टइंडीज के सर गारफील्ड यानी गैरी सोबर्स को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था।
1: साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का बैडमिंटन में खिताब जीता था। दिन आज ही का था, यानी कि 12 जून का, और साल था 2016 का।
0: और 1982 में मशहूर भौतिकी विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को उनके अभूतपूर्व वैज्ञानिक योगदान के लिए ब्रिटेन की महारानी द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर आप और हम बने हुए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ। इस गीत से पहले हम इतिहास की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो इतिहास बनके भी अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक आवाज थी गौरी देवी की, पाली की प्रसिद्ध और दिग्गज मांड गायिका रही। और वैसे जोधपुर रियासत को इन्होंने जो पहचान दिलाई वो दुनिया भर में इनके नाम से जानी जाने लगी, और 8 दशकों तक इन्होंने राजस्थानी लोक संगीत और मांड गायकी को दुनिया भर में पहचान दिलाई। इनका जन्म 1920 में हुआ था जोधपुर में ही। माता पिता भी बीकानेर दरबार में पेशेवर लोक कलाकार थे। पाली को अपनी कर्मभूमि बनाया विवाह के बाद और देश भर के मंचों पर प्रस्तुतियां दी, और खास तौर पर भैरवी युक्त मांड गायकी जो थी वो अपने आप में इनकी अलहदा थी, विशिष्ट थी। और मांड के अलावा ठुमरी, गजल और भजन भी बखूबी गाती थी। मरु कोकिला के नाम से जानी जाती थी अपनी सुरीली और खास आवाज के कारण। शरीर से आज भले ही हमारे बीच नहीं रही, लेकिन इनकी आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। कल यानी कि गुरुवार को इन्होंने रात्रि में अंतिम सांस ली थी अपनी आवाज पर, लेकिन आज भी अपने पीछे अपने परिवार में मांड गायकी की समृद्ध विरासत ये सौंप के गई हैं, जो इनकी विरासत को, इनकी आवाज को आगे लाखों करोड़ों श्रोताओं तक पहुंचाने का एक जो गुरुतर दायित्व है वो अपने कंधों पर लेते रहेंगे। और बिल्कुल हम भी नमस्कार कार्यक्रम पूरे और परिवार की ओर से इन्हें देते हैं भावभीनी श्रद्धांजलि, और आपको सुनवाते हैं इन्हीं की खास आवाज़।

0: सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 के बारे में। यह एक प्रसिद्ध डिस्टोपियन किताब है। मुख्य रूप से सत्तावादी शासन, सामूहिक निगरानी और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के दमन के खतरों पर यह आधारित है। इसकी कहानी ओशेनिया नामक काल्पनिक देश पर आधारित है, जिस पर बिग ब्रदर के नेतृत्व वाली पार्टी का पूर्ण नियंत्रण है। यहाँ थॉट पुलिस और हर जगह लगे कैमरे नागरिकों पर 2400 घंटे नजर रखते हैं। कहानी का नायक विस्टन स्मिथ सत्य मंत्रालय में काम करता है। उसका काम सरकार के हिसाब से पुराने इतिहास, अखबारों और रिकॉर्ड्स को बदलना, यानी झूठ को सच साबित करना है। सिस्टम से परेशान होकर विस्टन अपनी सोच को स्वतंत्र रखने की कोशिश करता है और जूलिया नाम की लड़की से प्रेम करता है, जो इस तानाशाही समाज में पूरी तरह मना है। अंततः सरकार उसकी इस बगावत को बेरहमी से कुचल देती है। और स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्तों, जिसे एक बार हासिल करके हमेशा के लिए सुरक्षित मान लिया जाए, बल्कि इसके लिए हर पीढ़ी को हर दौर में जागरूक और सतर्क रहना पड़ता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और ये उपन्यास हमें सतर्क भी करता है, यदि सरकारें निरंकुश हो जाए तो हर व्यक्ति की निजता, स्वतंत्र विचार और सच का अस्तित्व कैसे काबू में किया जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर हम जिस तरह से हम भारत में लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो ऐसे में हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी एक नागरिक के रूप में स्वतंत्रता, इन दोनों को अलग अलग रख के अपनी बातें रख सकते हैं समाज के सामने। और वैसे इस उपन्यास में जॉर्ज ऑरवेल ने हमें कई ऐसी शब्दावलियां दी थी जो आज भी राजनीति और समाज में प्रासंगिक है। सोचिए ना, कुछ ऐसे शब्द जैसे बिग ब्रदर। बिग ब्रदर के रूप में उन्होंने एक ऐसी सर्वव्यापी सत्ता बताई जो हर नागरिक पर निरंतर नजर रखती है। एक शब्द उन्होंने और दिया थॉट पुलिस, एक ऐसा अधिकारी जो पार्टी के खिलाफ सोचने वालों को पकड़ देता है या गायब कर देता है। एक और बहुत ही खूबसूरत शब्द इन्होंने दिया डबल थिंग, एक ही समय में दो परस्पर विरोधी बातें हैं और दोनों को ही सच माना जा सकता है। कैसे हो सकता है ये? जो खूबसूरत काम है ये किया है जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी नई शब्दावली द्वारा। और एक खूबसूरत शब्द जिसकी बात किए बिना ये बात अधूरी रह जाएगी, वो शब्द था न्यू स्पीक। बिल्कुल एक ऐसी कृत्रिम भाषा जो इसने लोगों की सोचने की क्षमता को सीमित करने के लिए ही बनाया गया है। सोचे ना, ये कितने खूबसूरत शब्द, कितने अलहदा सी एक शब्दावली इन्होंने बनाई थी जॉर्ज ऑरवेल ने अपने इस खास कालजयी डिस्टोपियन उपन्यास 1984 में। और ये प्रकाशित हुआ था 1949 में। और बिल्कुल आपको भी समय मिले तो ये उपन्यास आज जरूर समय निकाल के पढ़िएगा। फिलहाल बातें यहीं तक, सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।
2: हाथों में किताब,

0: करना है।
1: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
2: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: श्रोताओं आप और हम बने हुए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ और नमस्कार में अब करते हैं खास बात विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की जो कि आज और हर साल 12 जून को ही मनाया जाता है। वैसे बाल श्रम की समस्या तो दशकों से प्रचलित है और इसी विषय पर खास बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर बी एल सारस्वत जो कि सहायक निदेशक हैं जिला बाल संरक्षण इकाई के बाल अधिकारिता विभाग जोधपुर से और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन है राजेश लामरोड का और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं खास तौर पर किस तरह से आज का ये जो खास दिन है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये प्रासंगिक है और किस तरह से हम बच्चों के अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं और बाल श्रम से उन्हें बचा सकते हैं। तो डॉक्टर बीएल सारस्वत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कार्यक्रम में।
1: मैडम नमस्कार सभी को नमस्कार।
0: सर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये जो दिन मनाया जा रहा है ये खास तौर पर बच्चों के जो काम करने लगे हैं खास तौर पर फैक्ट्रियों में या अवैध रूप से दुकानों में या होटलों में रेस्टोरेंट्स में किस तरह से ये जो बचपन है उनका ये छीना जा रहा है ये समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है।
1: जी मैडम आप सही फरमा रहे हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो बाल श्रम की समस्या पूरे विश्व में मौजूद है
0: जी।
1: भारत में भी ये काफी मात्रा में मौजूद है। अगर हम जोधपुर जिले की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम करती है
0: जी।
1: विभिन्न विभागों से समन्वय करके जिसमें मुख्य रूप से पुलिस विभाग है लेबर डिपार्टमेंट है महिला बाल विकास है इन सभी की एक जिला स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी बनी हुई है। तो समय समय पर ऐसे जो एरियाज हैं जो जैसे औद्योगिक क्षेत्र है कच्ची बस्तियां हैं वहाँ पे समय समय पर शिविर भी लगाए जाते हैं और उनका चिन्हीकरण किया जाता है पहले तो प्रथम दृष्टया चिन्हीकरण के बाद में फिर उन बच्चों की रेस्क्यू की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि बच्चा उसमें लिप्त है तो उसका कोई अपराध नहीं है
0: बिल्कुल।
1: तो नियोक्ता उन बच्चों को अपने फैक्ट्री में या किसी होटल में कार्य करने के लिए लगाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है
0: जी। लेकिन एक कई कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं ना कि किसी की पारिवारिक मजबूरी ऐसी रही हो घर में या कोई कमाने वाला नहीं है फिर ऐसे में अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो उस बच्चे का कमाना मजबूरी हो जाती है और अगर

0: कानून के हिसाब से देखे तो ये एक अपराध भी बन जाता है।
1: जी आप सही फरमा रहे हैं मैडम।
0: जी
1: मजबूरी वाली बात अगर अपन देखते हैं तो ज्यादातर बच्चे जो है वो
0: जी
1: आपको रास्ते में, जैसे आप जाओगे तो कार साफ करते हुए या किसी होटल में बर्तन साफ करते हुए मिल जाएंगे।
0: जी
1: एक्चुअल में वो बच्चे सब जो है उन परिवारों से हैं जो परिवार दूसरे राज्यों के या दूसरे जिलों के जो माइग्रेट होके यहाँ पे आते हैं,
0: जी
1: और उनमें से ज्यादातर परिवार के उनमें माता पिता का जो है वो टूटे हुए परिवार होते हैं। पिता का अता पता नहीं होता है तो माँ कहीं मजदूर भी जाती है तो बच्चा पीछे बाल श्रम करता है या बाल भिक्षावृत्ति करता है। बाल भिक्षावृत्ति धीरे धीरे करते करते बाल श्रम का रूप ले लेती है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि उनके जो उनकी मेन समस्या होती है दस्तावेज की,
0: जी
1: ऐसे परिवार में हमने सर्वे करवाया था पिछले साल जिला प्रशासन के माध्यम से मिशन मुस्कान,
0: जी जी
1: उसमें हमने 1,850 बच्चे ऐसे चिन्हित किए थे जो कि झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, रोडों पे घूम रहे हैं। तो वो बच्चे आगे बाल श्रम करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले एक उनके दस्तावेज तैयार करें, क्योंकि जब तक उनके दस्तावेज नहीं बनेंगे तब तक वे किसी न किसी सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: बच्चा इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, परिवार में गुजारा नहीं चल रहा है। तो सरकार के पास ऐसी सभी स्कीमें हैं जिसमें कम से कम उसके परिवार का जो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
2: जी, लेकिन सर आपने कहा कि सरकार के पास ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हमारे देश में बाल श्रम को लेकर कड़े कानून भी हैं। इसके बावजूद यूं कहें कि कमी कहाँ रह जाती है कि लोग बिना डरे बच्चों से काम करवाते हैं।
1: कमी तो मैडम थोड़ी जागरूकता की भी है, और ज्यादातर जो केसेज दर्ज किए जाते हैं
2: जी
1: उसमें क्या होता है मैडम, इस एक्ट में दो तरह के रूल है। एक तो जो बच्चा 14 साल से कम है और वो जोखिम भरे जो एक्ट है 1986 का, बाल श्रम निषेध जो अधिनियम है 1986, 2016 में संशोधित हुआ था,
2: जी
1: तो उसके अनुसार एक धारा 3 में जो एक अनुसूची बनी हुई है क और ख, उस अनुसूची में जो जो काम आ रहे हैं उसमें अगर वो बच्चा 14 साल से कम है तो उसके ऊपर ये बाल श्रम की धाराएं लगती है। अन्यथा 14 और 18 साल के जो बीच में बच्चा है वो भी बाल श्रम नहीं कर सकता है, लेकिन
2: अच्छा
1: उसके उसके ऊपर किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जो 79 धारा लगती है जिसमें उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको विद्यालय से जोड़ा जाता है और उसके परिवार को समाज कल्याण की जो स्कीम्स है,
2: जी
1: पेंशन है, पालनहार योजना है, उनसे जोड़ा जाता है ताकि भविष्य में वो बच्चा बाल श्रम की पुनरावृत्ति नहीं करे।
2: जी सर, और एक आम नागरिक के तौर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अगर हम अपने आसपास किसी ढाबे या घर में किसी बच्चे को काम करते हुए देखें तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? इसके लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है तो
1: नहीं
2: आप
1: मैडम,
2: साझा?
1: इसमें मेरा निवेदन ये है कि जितने भी जो 18 साल से कम वाले बच्चों की जो बाल समस्याएं हैं, जैसे जरूरी नहीं बाल श्रम है तो बाल विवाह भी है, तो ये सामाजिक समस्याएं हैं, उसमें विभाग तो काम कर ही रहा है,
2: जी
1: लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी का एक कर्तव्य है कि जहां पर भी हम ऐसी शिकायत देखे हैं, अपने को अगर मान लो सामने नजर आ रहा है कि बाल श्रम हो रहा है या बाल विवाह हो रहा है, तो हमें 1098 पे कॉल करना चाहिए।
2: अच्छा
1: हमारे जिला बाल संरक्षण इकाई में ही इसका 1098 का एक चाइल्ड लाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर, तो इसमें बकायदा ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती है और
2: जी
1: जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक वो शिकायत उसमें ऑनलाइन में दिखती रहती है। तो
2: सर,
1: हम
2: अगर
1: क्या करते
2: कोई
1: हैं इसे,
2: अगर कोई सूचना की हेल्पलाइन नंबर पर देता है, अगर कोई सूचना, तो क्या उसका नाम गुप्त रखा जाता है?
1: जी बिल्कुल मैडम, उसका नाम गुप्त रखा जाता है और हमारे यहाँ से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक टीम बना के भेजती है, और
2: जी
1: वाकई अगर वहाँ पे बाल श्रम हो रहा है तो ये इसमें जो एसओपी बनी हुई है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, उसके अनुसार जो संबंधित थाने का जो एक बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त होता है, प्रत्येक थाने में जो बच्चों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक बाल कल्याण अधिकारी होता है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की जाती है, और उसके बाद में बाल जो लेबर इंस्पेक्टर है उनके द्वारा उनके बयान लिए जाते हैं, एसडीएम के द्वारा भी 164 के बयान लिए जाते हैं, और उसका ये पता लगाया जाता है कि वाकई वो उसकी उम्र उसमें आ रही है नहीं आ रही है या वो बाल श्रम की श्रेणी में है या नहीं है।
2: जी आपने इस
1: इसमें
2: क्षेत्र
1: मैडम
2: में
1: सभी जो
2: जी
1: एनजीओ है वो सोशल जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कई एनजीओ है जो बाल श्रम पे काम कर रहे हैं,
2: जी
1: तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें ऐसे स्थानों पे जहाँ पे बाल श्रम की संभावना ज्यादा है वहां पे जागरूकता शिविर लगाने चाहिए, और शिक्षा विभाग को चाहिए कि ऐसे बच्चे जो ज्यादातर टाइम से स्कूल नहीं आ रहे हैं उसका क्या कारण है वो वहां पर जांच करके देखे कि वो बच्चे कहीं बाल श्रम में तो लिप्त नहीं है। तो इसमें रूल भी है कि जो 30 दिन से ज्यादा बच्चा 1 महीने तक लगातार नहीं आ रहा है स्कूल तो उसके बाल श्रम में जुड़ने की संभावना रहती है, तो ऐसे ड्रॉप आउट बच्चों का पता लगाकर उनको शिक्षा से जुड़ा जाए ताकि

0: आगे वो बाल श्रम नहीं बने।
1: जी सर, आपने जिक्र किया था कि सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, तो कुछ योजनाओं के बारे में आप बता सकते हैं ताकि बच्चा काम छोड़कर स्कूल जा सके? क्या उन्हें कोई वित्तीय सहायता मिलती है, जैसे पालनहार योजना है, वो सब उनके बारे में?
0: जैसे मैडम, सबसे पहले तो ऐसे बच्चे जिनके कोई माता पिता नहीं है, उनके लिए अपने किशोर न्याय अधिनियम में पंजीकृत तो बालगृह होते हैं। जोधपुर में भी ऐसे कम से कम 6 अपने गैर राज के बालगृह है और गवर्नमेंट के भी किशोर गृह और बालिका गृह होते हैं। वहां पर उनको 18 वर्ष तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद में 14 से 18 साल के बीच में उनकी काउंसलिंग करके उनके हुनर की पहचान करके उनको किसी न किसी कौशल विकास से जोड़ा जाता है। तो अपने जोधपुर में मंडोर में हमारे कार्यालय में बाल परामर्श एवं कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी है, जहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 2026 में जो भी बाल श्रमिक आएंगे उनका एक बैच बना के और उनको किसी न किसी हुनर से जोड़ेंगे, उनको स्किल ट्रेनिंग करवाएंगे।
1: अच्छा,
0: इसी तरह से उनके अगर मान लो कि कोई विधवा का पुत्र है तो उनके माँ को सामाजिक रूप से पेंशन से जोड़ा जा सकता है, और उस बच्चे को और उसके जितने भी भाई बहन है उनको पालनहार योजना से जोड़कर उनको एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है।
1: अच्छा। और सर आप इस जी
0: स्कीमें काफी है, लेकिन उनके पास मेन ये होता है कि वो माइग्रेट वाले होते हैं, बाहर से आते हैं, तो वो उनके जब भी पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में, तो उनके पास आधार कार्ड तक भी नहीं होता है। तो उनके पास फिर आधार कार्ड नहीं होता तो सबसे पहले उनका है कि दस्तावेज जो है ना वो तैयार करने की समस्या रहती है। जी मैडम
1: जी, आप इस क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहे हैं सर? कुछ अभियान, जागरूकता कार्यक्रम जो भी आपने किए हैं उसके बारे में?
0: मैं देखता हूँ कि कार्रवाई करना कोई बड़ी बात नहीं है।
1: अच्छा।
0: कार्रवाई से पहले कि वो बच्चा बाल श्रम क्यों कर रहा है, उनकी जो काउंसलिंग है, उनके परिवार तक पहुंच सुलभ करके ये पता करना पड़ेगा कि वो बाल श्रम क्यों कर रहा है, उसकी मजबूरियां क्या है। अपन उसको अगर वहां तक निवारण कर देंगे तो आगे ये समस्या नहीं आती है। तो मेरा जो काम करने का तरीका होता है, कार्रवाई करने का कम होता है, और प्लस उस बच्चे को उसके परिवार की स्थिति को देखकर उनके योजनाओं से जोड़ने की ज्यादा होती है।
2: बिल्कुल सर, ये तो बहुत मनोवैज्ञानिक तरीका है, बहुत ही एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि कई बार जो परिस्थितियां होती हैं सबके, हर बच्चे की अलग अलग होती हैं, और अगर आप वो परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही करते हैं तो वो सबसे सही है। लेकिन सर एक चीज़ है कि कई बार हम जैसे बाल श्रम को तो हम बचा लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इस तरह की औद्योगिक इकाई में या इस तरह की दुकान पर यहाँ पर बच्चे काम नहीं कर सकते, लेकिन अनऑर्गेनाइज तरीके से भी अगर देखें तो जैसे बाल भिक्षावृत्ति है, जो हम अगर सिग्नल पर जिस तरह से हम जब भी रुकते हैं तो देखते हैं कि बच्चे और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जिस तरह से या तो वो गाड़ियां साफ करने की कोशिश करते हैं या कुछ एक सामान बेचने की कोशिश करते हैं या भीख मांगने की कोशिश करते हैं, तो ये भिक्षावृत्ति भी हो गई, उसके साथ साथ कुछ सामान उनको इस तरह से बेचने पर मजबूर किया जाता है, तो क्या ये सब भी बाल श्रम में आता है और इसको रोकने के लिए भी अलग से कुछ उपाय हैं?
0: हाँ, बाल भिक्षावृत्ति जो है वो बाल श्रम में तो नहीं आता है।
2: नहीं, भिक्षावृत्ति नहीं, लेकिन ये जो सामान बेचा जाता है बच्चों के द्वारा।
0: मैडम, वो सामान बेचा जाता तो वो जो बच्चे हैं वो नीड केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में आते हैं, 14 कैटेगरी है।
2: जी जी,
0: जो बच्चे जैसे लावारिस घूम रहे हैं, जो सड़क के किनारे बैठे हैं, या जैसे कोई मतलब लावारिस अवस्था में घूम रहा है, या छोटी मोटी चीजें बेच के जैसे रोडों पे वो कार साफ कर रहे हैं
2: जी,
0: तो ये बाल श्रम में नहीं आता है, लेकिन उनका भी रेस्क्यू बाल श्रम के साथ साथ में किया जाता है
2: जी।
0: और भिक्षावृत्ति जो कि आगे चलकर बाल श्रम का ही रूप ले लेती, क्योंकि कई बार भिक्षावृत्ति के चक्कर में ऐसे कई गिरोह होते हैं जो उन बच्चों की ट्रैफिकिंग भी कर लेते हैं।
2: बिल्कुल,
0: तो ये समस्या आगे जाके बाल तस्करी का रूप ले लेती है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम और कुछ नहीं करें, जोधपुर जिले की जो बाल कल्याण समिति बनी हुई है, जिसे जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पावर है, उन बच्चों के सामने उनको पेश कर दें। तो ये जिम्मेदारी है कि जो संबंधित तो जो चौराहा होता है उसमें जो ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक में लगे हुए हैं, उनको तुरंत 1098 पे या बाल कल्याण समिति को या हमारे डिपार्टमेंट को कॉल करना चाहिए।
2: बिल्कुल,
0: तो ये आपस में जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है ना, इसकी थोड़ी कमी लग रही है मेरे को भी
2: जी। तो ये हम सब का एक कर्तव्य बन जाता है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि आसपास जो भी ट्रैफिक पुलिस है सिग्नल के आसपास, उन्हें हमें इस बात की सूचना जरूर दें।
0: बिल्कुल मैडम, आम आदमी भी इसको इग्नोर नहीं करता।
2: हाँ।
0: भी दिख रहा है ना, तो संबंधित विभाग और जो 1098 है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वहां तक उसकी सूचना अवश्य दे।
2: बिल्कुल,
0: उसके बाद में कार्रवाई अवश्य होगी
2: जी। तो आज आप हमारे साथ जुड़े सर, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी कि हम किस तरह से बाल श्रम को रोकने में हम सहायता कर सकते, एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी फर्ज निभा सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम
2: जी।
0: श्रोताओं, धन्यवाद आपका भी।

0: सभी का।
1: श्रोताओं, इस वक्त नमस्कार कार्यक्रम में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए थे डॉक्टर बीएल सारस्वत, जो कि सहायक निदेशक हैं जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जोधपुर से, और आज इनसे खास बातचीत हम कर रहे थे नमस्कार कार्यक्रम में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर। और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन था राजेश लामरोड का। बातें और भी करते रहेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, आप बने रहिए हमारे साथ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

दोस्तों अब कर लेते हैं जन आधार ऑटो अपडेट से जुड़ी हुई खास बात। राजस्थान सरकार ने आम जनता की सहूलियत के लिए जन आधार डेटाबेस को ऑटो अपडेट मोड पर डालने की व्यवस्था शुरू की है। नई व्यवस्था का उद्देश्य जन आधार डेटाबेस को अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। जब किसी नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से जारी होता है तो प्राप्त डेटा के आधार पर शिशु का नाम उसकी माता के जन आधार कार्ड में एक सदस्य के रूप में अपने आप जुड़ जाता है। इसी तरह परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद डेथ रजिस्ट्रेशन के डेटा से मिलान करके उस सदस्य का नाम जन आधार परिवार से अपने आप हटा दिया जाता है। इस ऑटो अपडेट प्रक्रिया के सही तरीके से काम करने के लिए यह जरूरी है दोस्तों कि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के समय माता की आधार संख्या, जन आधार रसीद, पहचान संख्या और सदस्य आईडी का विवरण बिल्कुल सही सही भरा गया हो। साथ ही माता की आधार ई केवाईसी पूर्ण होनी अनिवार्य है। अगर किसी नवजात का नाम तुरंत दर्ज नहीं हो पाता है तो उसे कुछ समय के बाद बेबी ऑफ मदर नेम के रूप में अस्थाई रूप से जोड़ दिया जाता है, जिसे बाद में अपडेट भी किया जा सकता है। जोधपुर और पूरे राजस्थान के निवासियों के लिए यह एक आधिकारिक और वैध व्यवस्था है दोस्तों, जिससे अब लोगों को नाम जुड़वाने और कटवाने के लिए अलग से ई मित्र या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है आज की खास बात।

दोस्तों, खास बात में हम बात कर रहे हैं जन आधार में बदलाव की। इसके साथ ही इसमें सीमा और शुल्क भी निर्धारित किए गए हैं। अगर जैसे व्यक्तिगत जानकारी है, जैसे माता पिता का नाम या वैवाहिक स्थिति, उसमें भी पूरे जीवन काल में दो बार संशोधन किया जा सकता है। पहली बार तो ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है, लेकिन दूसरी बार से ₹15 का शुल्क इसमें निश्चित किया गया है। साथ ही साथ एक वित्तीय वर्ष में आय और शिक्षा दो बार अपडेट किए जा सकेंगे। इसमें भी पहली बार निःशुल्क, उसके बाद ₹25 प्रति संशोधन। और वहीं बैंक खाते में पहली बार बदलने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन बाद में हर बार अपडेट करने पर ₹40 का शुल्क कटेगा। और अगर आप परिवार में विभाजन या मुखिया में बदलाव करते हैं नाम का, तो इसमें अधिकतम 5 बार संशोधन की सुविधा जन आधार कार्ड में दी गई है। तो ये तो थी आज की बात, खास बात। और अब बातें और भी शेयर करेंगे आपसे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान अपनी देह तो छोड़ जाता है लेकिन उसके विचार उसके कर्म और उसकी सीख अमर हो जाते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज होते हैं जो हर युग में नई पीढ़ियों को राह दिखाते हैं। आज का दिन विशेष है और आज हम याद कर रहे हैं जयंती के रूप में कन्नड़ साहित्य और रंगमंच के पुरोधा सी के नागराज राव को, क्योंकि आज उनकी जयंती है। कन्नड़ साहित्य रंगमंच और संस्कृति के क्षेत्र में एक अत्यंत सम्मानित और प्रभावशाली नाम है। वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने लेखक, नाटककार, अभिनेता, निर्देशक और पत्रकार के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्हें मुख्य रूप से उनके ऐतिहासिक उपन्यासों और कन्नड़ रंगमंच के उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कई नाटकों की रचना की जो केवल पढ़ने में नहीं बल्कि मंचन और दृष्टिकोण से भी बहुत सशक्त उनके नाटक रहे हैं। पट महादेवी शांतला यह उनका सबसे प्रसिद्ध और कालजयी महा उपन्यास है। इस उपन्यास में उन्हें कन्नड़ साहित्य जगत में अमर कर दिया। इसके लिए उन्हें व्यापक सराहना भी मिली। वे एक कुशल अभिनेता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन किया और रंगमंच की नई तकनीकों को बढ़ावा दिया। कन्नड़ साहित्य और संस्कृति में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इतिहास को कल्पना और सच्चाई के अनूठे संगम के साथ पेश करने की उनकी जो कला है वो आज के लेखकों को प्रेरित करती है। उनका पूरा जीवन कन्नड़ भाषा और संस्कृति की सेवा में समर्पित रहा है। साथ ही दोस्तों हम याद कर लेते हैं भरथरी गायन की अमर आवाज सुरुजबाई खांडे को। उनकी भी आज जयंती है। छत्तीसगढ़ की एक प्रख्यात लोक गायिका थी आप, जिन्होंने अपनी अद्वितीय आवाज और कला से छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति विशेषकर भरथरी गायन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्हें भरथरी विद्या की सशक्त हस्ताक्षर माना जाता है। एक महिला कलाकार के रूप में उस दौर में मंच पर आना और लोक गायन को अपना करियर बनाना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने हर बाधा को पार कर लिया था।

0: दोस्तों, आज हिंदी की जानी मानी कथाकार उपन्यासकार गीतांजलि श्री का भी जन्मदिन है। वह हिंदी की पहली ऐसी लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। आज जन्मदिन के अवसर पर हम इस मंच से उनको शुभकामनाएं देते हैं और याद कर लेते हैं तेलुगु साहित्य के एक दैदीप्यमान नक्षत्र कहे जाने वाले डॉक्टर सिंगिरेड्डी नारायण को, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, और याद कर लेते हैं साथ ही पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे को भी, उनकी भी पुण्यतिथि है। लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्य अभिनेता और कथाकार, पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार और गायक पुरुषोत्तम लक्ष्मण पांडे देश पांडे की पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था।
1: बिल्कुल, साथ ही साथ आज ही के दिन पुण्यतिथि है राजकुमारी नीलोफर की, जिनकी सन 1989 में निधन हुआ था, और साथ ही साथ पंडित गोपीनाथ कविराज, जिनका सन 1976 में आज ही के दिन निधन हुआ था। ये संस्कृत के विद्वान और दार्शनिक थे। श्रोताओं, अब सांस्कृतिक समाचारों में बात करते हैं कि कल समापन होगा जोधपुर में चल रही एनएसडी की 30 दिवसीय बाल मंच वर्कशॉप का, और साथ ही साथ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हेतु जोधपुर शहरवासियों के लिए आसन फोटो कॉम्पिटिशन भी आयोजित किया जा रहा है, तो आप भी इसमें अपनी योगा के पोज करते हुए एंट्री भेज सकते हैं। खेल खबरों में कल मेक्सिको में रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही फुटबॉल के विश्व कप का आगाज हुआ था, और अर्जेंटीना और पुर्तगाल अलग अलग ग्रुप्स में खेल रही हैं। भारत की पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन के ऑस्ट्रेलियाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं आज का खास दिन है क्योंकि आज आगाज हो रहा है 10वें महिला क्रिकेट विश्व कप का। पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के मध्य खेला जाएगा, और वहीं क्रिकेट में ही ट्राई सीरीज में अफगान ए टीम ने भारतीय ए टीम को 4 रन से हरा दिया था। और जब बात कर रहे हैं खास उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन से संबंध है, तो याद आती हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री खुर्शीद अख्तर, जिन्हें हम श्यामा के नाम से जानते हैं। आज ही के दिन 1935 में इनका जन्म हुआ था। फिल्म शारदा में अपनी हम उम्र मीना कुमारी की माँ की भूमिका निभाने से भी इन्होंने परहेज नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे रोल इन्होंने किए थे, और इन्हें इसी फिल्म के लिए सन 1957 का सर्वश्रेष्ठ सहनायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इनकी आखिरी फिल्म थी हथियार, जो कि आई थी सन 1989 में। और अब याद करते हैं आज ही के दिन जन्मे इंजीनियर श्रीधरन को, जिनका 1932 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाने जाते हैं। 2008 में पद्म विभूषण से और 2001 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। और अब याद आती है एक दिग्गज अभिनेत्री और नृत्यांगना पद्मिनी, आज ही के दिन 1932 में इनका भी जन्म हुआ था। हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु सहित कई भाषाओं की फिल्मों में, 250 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया, और खास तौर पर इन्हें जाना जाता है फिल्म 1970 में जो आई थी मेरा नाम जोकर, और 1960 में जो फिल्म आई थी जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला था। वो फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है, और उसका ये खास क्लासिक गीत जो बन गया है आज का नमस्कार का समापन गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सवेरे के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
5: आकाशवाणी के खजाने में खूबसूरत हर जमाने के गीत, आकाशवाणी के प्रोग्राम पेश करने वालों की बेमिसाल आवाजें।
6: नमस्कार।
7: दिल ये चाहे हवाओं से खेलो,
6: अपना शहर अपनी शान,
8: मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी।
9: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है,
10: FM सन सिटी,
11: जोधपुर FM, हार्ट बीट ऑफ जोधपुर,
12: नए अंदाज में।
13: जो दिन भर घर घर में गूंजती है,
14: ट्यून कीजिए FM सन सिटी।

हेलो डॉक्टर, ये खूबसूरत प्रोग्राम आपके रेडियो सेट पर ट्यून हो चुका है 102.1 एफएम सनसिटी पर, और बहुत सारी बातें आज हमारे मेहमान से हम करने वाले हैं, डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब भी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, बहुत सारी बातें स्किन केयर पे करेंगे, खासतौर पर मॉनसून में हम किस तरह से स्किन केयर कर सकते हैं। लेकिन उन बातों से पहले, हम हमारे डॉक्टर साहब के परिचय से भी पहले उन्हीं की पसंद का एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, और फिर डॉक्टर साहब से ढेर सारी बातें भी करेंगे। आपसे भी जो सवाल हमें मिलेंगे वो हम डॉक्टर साहब के साथ शेयर करेंगे, और आप तब तक हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9413329359। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने सवाल पूछ सकते हैं, मॉनसून में स्किन केयर किस तरह से की जाए या स्किन की प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं, तो बातें आपसे शेयर करेंगे, सर के साथ शेयर करेंगे आप ही के सवाल इस खूबसूरत से सर की ही पसंद के गीत के बाद।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: हेलो डॉक्टर, इस खास प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं 102.1 FM सन सिटी पर और आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अनिल बुडानिया जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एम्स जोधपुर में और आज इनसे हम खास तौर पर बात करने वाले हैं मॉनसून में स्किन केयर कैसे करें और आज के इस प्रोग्राम में आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं 94133 29359 इस नंबर पे अपने सवालों के आप जवाब पा सकते हैं डॉक्टर साहब से। और आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन है राजेश लामरोड का और आज के इस प्रोग्राम में हम आपके होस्ट आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं स्वाति भंसाली
2: और मैं हूं चंद्रकला सुथार।
1: तो मॉनसून में स्किन केयर कैसे करें डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में।
3: धन्यवाद आकाशवाणी खम्मागणी जोधपुर।
1: क्या बात है सर, दिल जीत लिया आपने।
3: थैंक यू
1: सर। कुछ बातें ऐसी होती हैं सर, जैसे स्किन मतलब हमारे पूरे शरीर में, सपोज अगर किसी का सर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है तो वो शरीर का एक खास हिस्सा है, लेकिन स्किन क्योंकि पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करती है, पूरे शरीर का एक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करती है, और अगर वही सेंसिटिव हो जाए, उसी में तकलीफ हो जाए तो कहीं ना कहीं शरीर

0: का हर अंग उससे प्रभावित होता ही है।
1: नहीं, बिल्कुल सही बात की, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जब हम बहुत छोटे थे हम पढ़ते थे सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है कि जी लीवर।
0: हाँ।
1: पर अभी पता लग गया कि स्किन चमड़ी सबसे बड़ा ऑर्गन है, इज द ऑर्गन सिस्टम।
0: बिल्कुल।
1: तो इसकी केयर करना इट्स लाइक पूरी बॉडी की केयर करना। और आपने ये जो टाइमिंग रखी है जस्ट बिफोर द मॉनसून, हम मॉनसून की स्किन प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
0: तो
1: सबको बड़ा ही ध्यान से सुनना चाहिए।
0: प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन
1: केयर। प्रिवेंशन इज द बेस्ट केयर।
0: हाँ, तो अभी हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं आने वाले मॉनसून के लिए। सर, आज हमने जब टॉपिक लिया ना मॉनसून में स्किन केयर कैसे करें, तो हम आने वाली बारिश के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं, क्योंकि अभी जो गर्मियां चल रही हैं और खास तौर पर अब जो पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी होने लगी है, तो स्किन प्रॉब्लम्स और भी कुछ ज्यादा होने लगी है। और इस चिपचिपाहट में जो सबसे ज्यादा तकलीफ आती है सर, वो आती है बालों में, क्योंकि बालों में जो है वो बहुत ज्यादा पसीना भी होने लगता है, प्रॉपर अगर वॉशिंग नहीं हो, ट्रीटमेंट नहीं हो, तो बालों में फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, डैंड्रफ भी हो जाता है। और जो एक कॉमन समस्या कई बार लड़कियों में स्पेशली जू और लीक वो सब जो चीजें हैं वो ज्यादा होने लग जाती है, तो ये प्रॉब्लम से कैसे जाए और अगर हो जाए तो कैसे इसको क्योर करना है।
1: जी बिल्कुल, मॉनसून के टाइम बाल हमारा सबसे अफेक्टेड पार्ट होता है बॉडी का, इसमें कई प्रॉब्लम होती है। एक तो लोगों में हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है
0: जी,
1: उससे लोग काफी घबरा जाते हैं, उसको बोलते हैं मॉनसून इंड्यूस्ड टिलोजन इफ्लुवियम। सेकंड प्रॉब्लम होती है कि डेफिनेटली चिपचिपाहट भरी गर्मी होगी तो डैंड्रफ बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि इन्फेक्शन, जैसे कि पैरासाइट इन्फेक्शन, जैसे कि जुए वगैरह भी हो सकती है
0: जी।
1: तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हम पहला टॉपिक लेते हैं कि मॉनसून इंड्यूस्ड हेयर फॉल
0: जी।
1: तो ये यूजुअली कुछ कारणों से होता है, जैसे एक तो नमी है, नमी बाल के अंदर भी चली जाती है, बाल थोड़ा सा फूल जाता है, जैसे हम कॉम्बिंग स्टार्ट करते हैं उससे बाल खराब हो जाता है, बाल हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लोग इस नमी वाली गर्मी से बचने के लिए फ्रिक्वेंट हेयर वॉश करते हैं, उससे भी बाल डैमेज होता है। बार बार शैम्पू लगाना, दिन में 3-4 बार शैम्पू लगाना, उससे बाल डैमेज होता है,
0: मुश्किल होती है।
1: या तीसरी बात यह है कि इस मौसम में अचानक से हमारे सारे बाल ग्रोथ फेज से शेडिंग फेज की तरफ चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, उससे भी लोग घबरा जाते हैं।
0: अच्छा, ये नॉर्मल है, घबराने की जरूरत
1: इसमें
0: नहीं।
1: बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और इधर उधर जाके उल्टा सीधा ट्रीटमेंट लेने के बजाय हमें एक नियरेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए
0: जी।
1: चौथी बात है इन्फेक्शन, जिसमें एक तो फंगल इन्फेक्शन जैसे कि डैंड्रफ और दूसरा पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे कि जुए, उनका ट्रीटमेंट बड़ा इजीली अपन कर सकते हैं। ऐसा किसी को कुछ भी लगे तो तुरंत उसको अपने स्किन डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो ये जैसे कई बार तो कुछ एज स्पेसिफिक भी ज्यादा रहती है ये प्रॉब्लम्स, या सभी को हो सकती है कॉमन?
1: इस मौसम में तो सभी इफेक्ट होंगे, 8 से लेकर 60 साल तक सभी इफेक्ट होंगे।
0: लेकिन हमारा जैसे, क्योंकि राजस्थान वैसे ड्राई एरिया है, हमारा जोधपुर तो और भी ज्यादा ड्राई है, और ऐसे में एकदम से जो ये नमी वाला स्विच ओवर होता है, तो क्या अचानक से, जैसे आपने कहा हेयर फॉल नॉर्मल है, होता ही है, तो अगर उसमें क्या पता लगे कि अच्छा इतना है तो नॉर्मल है और इससे ज्यादा है तो प्रॉब्लमेटिक है?
1: जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यूजुअली हम मानते हैं कि 50 से 100 बाल प्रतिदिन झड़ना एक नॉर्मल सी फिनोमेना है, वो सबके झड़ते हैं,
0: सबके
1: उससे ज्यादा अगर हो और गुच्छे गुच्छे बालों के झड़ने लग जाएं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हर एक 50 से 100 बाल अगर झड़ रहे हैं तो वापस आ जाएंगे बिना किसी चिंता के।
0: मतलब अगर थोड़ी बहुत घर में जैसे चिंता है उससे आपके थोड़े बाल झड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत जैसे बच्चे परेशान कर रहे हैं या घर में मियां बीवी का कुछ झगड़ा है तो थोड़े बहुत बाल गिरते हैं तो नॉर्मल बात है। लेकिन हाँ, कोई तनाव ज्यादा बढ़ गया है या मौसम में चिपचिपाहट ज्यादा बढ़ गई और ऐसे में अगर हेयरफॉल ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर साहब की सलाह भी यही है कि आप तुरंत स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं।
2: सर, एक सवाल और है कि जैसे अभी आपने कहा कि मौसम के बदलने पर ही बालों का जो समस्या है वो बढ़ती है, तो क्या सर जो मौसम, इस मौसम में पसीना भी बहुत आता है, तो क्या सिर में पसीना आता है उसके कारण भी बालों का झड़ना कोई रोल निभाता है?
1: पसीने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: अच्छा।
1: बट पसीने से बचने के लिए हम बार बार हेयर वॉश करेंगे।
2: हाँ,
1: वो, तो वो बाल को डैमेज करेगा। हाँ, अगर आप ज्यादा शैम्पू लगाओगे तो बाल डैमेज होगा।
2: अच्छा।
1: दिन में एक बार शैम्पू लगाना इज परफेक्टली नॉर्मल, पर 3 बार लगाओगे तो बाल डेफिनेटली डैमेज होगा।
2: ओके,
0: तो सर अगर मतलब एक प्रिवेंशन के तौर पर क्या ऐसे कुछ उपाय किए जाएं जिनसे ये प्रॉब्लम्स हो ही कम?
1: या बिल्कुल, इसके लिए हम एक जेंटल शैम्पू यूज कर सकते हैं जो कि हमें डेली यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कन्वीनियंस। जैसे मेल्स होते हैं वो यूजुअली डेली हेयर वॉश कर पाते हैं, फीमेल्स के बाल लंबे होते हैं तो वो हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश कर सकती हैं
0: जी।
1: और एक हम रिकमेंड करते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा लेना चाहिए, जो कि कीटोकोनाजोल या ZPTO वाले शैम्पू होते हैं, वो अपन लगा सकते हैं।
0: यानी अगर डैंड्रफ हो या ना हो, लेकिन एक बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी अगर यूज कर
1: लें एज ए प्रिवेंटिव मेजर हम लगा सकते हैं
0: तो वो बेटर है।
1: यस,
0: ठीक है, ये हमने कर लिया। एक एक सर हेयर से ही रिलेटेड एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम और आती है, कई लोग जिनके या तो कर्ली बाल हैं या हेयर कलरिंग वगैरह करवा के रखते हैं, स्ट्रेटनिंग करवा के रखते हैं, जो स्पेशली ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, उनमें क्या अलग तरह की कुछ समस्याएं होती हैं इस मौसम में खासतौर पर?

0: हेयर कलरिंग टोटली सेफ है जब तक कि आपको हेयर कलर से एलर्जी नहीं है, आप हेयर कलर यूज कर सकते हो, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेटनिंग बाल को डेफिनेटली डैमेज करता है
1: जी।
0: और हेयर कलर के बारे में एक बात बता दूं कि अभी रिसेंटली एक न्यूज स्प्रेड हो रही है कि हेयर कलर से कैंसर होता है, सो वो एक सही न्यूज नहीं है, इट्स नॉट अ साइंटिफिक स्टडी। तो आप हेयर कलर यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, जो कि आजकल जो ब्रांडेड हेयर कलर आप यूज कर सकते हो। अगर आपको हेयर कलर से एलर्जी होती है देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। स्ट्रेटनिंग बाल को डैमेज करता है, पहले उसको स्ट्रेटनिंग बोलते थे, आजकल उसको केराटिन थेरेपी बोलते हैं, ये बाल को डेफिनेट डैमेज करता है। तो आ तो आप ना कराएं, और कराएं तो आप कम से कम कराएं। और जो ट्रीटेड हेयर हैं वो यूजुअली थोड़े रफ हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, तो उनको एक अच्छा कंडीशनर यूज करना चाहिए। कंडीशनर आप डेली यूज कर सकते हैं,
1: डेली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी एक लिसनर है सोनिया महामंदिर से, वो जानना चाह रही है कि मतलब स्पेशली

0: लिसनर हैं सोनिया महामंदिर से, वो जानना चाह रही हैं कि मतलब स्पेशली जो कर्ली हेयर होते हैं वो, क्योंकि उनको कोम करना ही इस मौसम में मुश्किल हो जाता है और इस मौसम में वो और ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल हम अलग से रूटीन फॉलो करें?
1: सोनिया को मैं बता देता हूँ कि जो कर्ली हेयर बाहर से दिख रहे हैं उनकी रूट भी कर्ली है
0: जी,
1: तो आप कभी भी उनको परमानेंटली स्ट्रेटन नहीं कर सकती सोनिया, तो यू शुड एक्सेप्ट व्हाट यू हैव। कर्ली हेयर की ब्यूटी थोड़ी अलग ही होती है, पर हाँ कर्ली हेयर की केयर में एक तो आपको वाइट टूथ कॉम्ब यूज करना चाहिए, बड़े दांत वाला कंघा, वो फाइन कॉम्बिंग नहीं करनी चाहिए, और दूसरा आप कंडीशनर हफ्ते में 3 बार 4 बार इवन डेली भी आप कंडीशन कर सकते हो,
0: कर सकते हैं,
1: और सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्हाट यू हैव, यू शुड एक्सेप्ट व्हाट यू हैव।
0: ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों की तरफ ज्यादा देखते हैं, अपनी तरफ कम देखते हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो वो जरूर रहना चाहिए। तो हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं स्पेशली मॉनसून में स्किन केयर की। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है या आप भी किसी तरह की कोई स्किन केयर रूटीन जानना चाहते हैं, स्किन केयर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9413329359, यानी कि 9413329359 पे। इस नंबर पे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो बातें हमारी जारी रहेगी डॉक्टर अनिल बडानिया से। कार्यक्रम में इस वक्त ट्यून्ड है आपके रेडियो सेट पर हेलो डॉक्टर। इस खूबसूरत से गीत के बाद हम बातें जारी रखेंगे जो कि है डॉक्टर साहब की ही पसंद का।

0: पुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: दोस्तों हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में, और आज हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हमारे मेहमान के रूप में एम्स जोधपुर के त्वचा रोग विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर अनिल बुडानिया जी हमारे सामने मौजूद है और विशेष बातचीत हो रही है मानसून में त्वचा की देखभाल विषय पर। डॉक्टर साहब, चेहरे की जो त्वचा होती है वो शरीर की सबसे संवेदनशील होती है, इसलिए इस मौसम में खान पान और प्रदूषण का असर सबसे जल्दी इसी पर दिखता है। यहाँ चेहरे से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप बताना चाह रहे हैं हमें लग रहा है, तो हम वो जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे।
2: हाँ जी बिल्कुल, चेहरा डेफिनेटली बहुत अलग होता है ना, चेहरा मन का दर्पण भी होता है।
1: जी जी,
2: तो एक तो खास बात है कि चेहरे पे ऑयल ग्लैंड्स, तेल ग्रंथियां बहुत ज्यादा होती हैं, ऑलमोस्ट पूरे फेस पे होती हैं, ठीक है। दूसरा, चेहरे की मेलनोसाइट्स जो होती हैं, कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं।
1: अच्छा,
2: तो एक प्रॉब्लम आती है, मौसम में नमी है तो वो चेहरे पे भी आएगी। सबसे पहले चेहरे पे आएगी मौसमी नमी, और उससे जो अपने पोर्स है वो क्लॉग हो जाएंगे, पोर्स बंद हो जाएंगे, जो छिद्र है तो जाएगी, छिद्र बंद हो जाएंगे, उनके तेल ग्रंथियां छिद्र बंद होंगे तो उनके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन डेवलप होगा, तो उससे एक्ने बढ़ जाएंगे। तो सडनली ये होता है कि इस मौसम में एक्ने बढ़ जाते हैं।
1: अच्छा,
2: दूसरा एक लोग गलती करते हैं कि चलो बाहर बारिश हो रही है, बादल है, तो सनस्क्रीन ना लगाऊं मैं धूप में, ऐसे निकल जाऊंगी, बादल तो है ही, नेचुरल सन प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं है, एक्चुअली बादल के थ्रू भी यूवी रेज आती हैं।
1: अच्छा,
2: तो जिसको मेलाज़मा है या चेहरे पे पिगमेंटेशन ज्यादा है, वो बिना सनस्क्रीन के बाहर निकलेगा इस मौसम में, तो उसको पिगमेंटेशन और बढ़ेगा।
1: तो मतलब लगानी जरूरी है,
2: तो इस मौसम में भी सनस्क्रीन हमेशा लगानी चाहिए, भले बादल ने पूरा आसमान घेर रखा है।
1: अच्छा,
2: आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ, बारिश में मत लगाओ,
1: धूप से भी बचाओ और मौसम से भी बचाओ।
2: धूप ना है तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी है।
1: अच्छा,
2: और दूसरा इसमें मौसम, इसमें गलती करते हैं लोग कि हाँ नमी ज्यादा आ रही है, फ्रीक्वेंट फेस वॉशिंग, जो सेम जैसे हेड वॉश में, तो वैसे फेस वॉशिंग में हुआ कि बार बार फेस वॉश, दिन में चार बार जी सारे दिन फेस वॉशिंग कर रहे हैं, ऐसा भी गलत है। आप ज्यादा फेस वॉश करोगे तो भी एक्ने बढ़ेंगे।
1: अच्छा,
2: ठीक है, तो दिन में दो बार फेस वॉश कर सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग।
1: अच्छा,
2: और सनस्क्रीन भी हमें लगानी चाहिए, और फेस वॉश हमें जेंटल फेस वॉश लगाना चाहिए। एक लोग तीसरी गलती ये करते हैं कि वो एंटीसेप्टिक फेस वॉश यूज करते हैं, नीम डाल दिया, डिटोल डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, पता नहीं क्या क्या डाल दिया। ठीक है, एक सिंपल जेंटल फेस वॉश जो कि इजीली मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को पता होते हैं नाम, आपका डॉक्टर भी पास, कोई डॉक्टर भी बता देगा, वो यूज करने चाहिए।
1: अच्छा, तो सर जैसे ठीक है हमने फेस वॉश लिया, लेकिन क्योंकि हम बाहर दिन में अगर चार बार भी बाहर जाना हुआ, बाहर आके एटलीस्ट सिंपल पानी से तो मुंह धो सकते हैं,
2: सिंपल पानी से फेस वॉश कर सकते हैं, पर आपको साबुन या एंटीसेप्टिक
1: का प्रयोग नहीं करना, वो हमें थोड़ा फ्रेशनेस रखेगा। लेकिन दूसरी चीजों के अलावा, जैसे बाहर का प्रभाव तो समझ में आता है, लेकिन कई बार क्या होता है इस मौसम में, क्योंकि उमस गर्मी बढ़ती है, इंसान वैसे ही परेशान होता है, और जो अंदर का टेंशन है क्या वो भी स्किन प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है?
2: अंदर का टेंशन मतलब तनाव,
1: मतलब मेंटल तनाव, बिल्कुल मेंटल जो परेशानियां हैं वो सब,
2: ऑलमोस्ट हर तरह की बीमारी और स्पेशली सारी स्किन प्रॉब्लम टेंशन से बढ़ती है,
1: टेंशन से बढ़ती है। तभी तो कहा है चेहरा दर्पण है,
2: चेहरा मेंटल दर्पण।
1: तो प्रॉब्लम्स चाहे कुछ भी हो, अगर मेंटली भी प्रॉब्लम है, दिमाग में टेंशन है, परिवार में टेंशन है, कुछ भी है, लेकिन प्लीज उन टेंशन को अपने से दूर रखिए।
2: सबसे पहले आपके फेस पे आएंगी,
1: फेस पे सबसे पहले आएंगी। अच्छा, मुस्कुराहट जैसे कहा गया या खुल के हंसना, अगर कहा जाता है कि जो फेस की मसल्स होती हैं वो खुल के हंसने में ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, एक्सरसाइज है एक तरह की।
2: बिल्कुल, आजकल तो फेस योगा बड़ा पॉपुलर है,
1: फेस योगा
2: खुल के हंसना चाहिए डेफिनेटली। पर हाँ, उसमें एक छोटा सा कैच है, मैं बता दूं कि जो ज्यादा हंसते हैं उनके आंख के चारों तरफ रिंकल थोड़े ज्यादा आते हैं, तो किसी के रिंकल आंख के चारों तरफ को क्रोज फीट बोलते हैं, तो समझे बंदा खुश रहता है वो।
1: जी, तो सर एक और जो इस मौसम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है फेस पे, वो आती है क्योंकि आजकल मौसम का असर तो है ही, लेकिन दूसरा हमारे जो डिजिटल गैजेट्स के लिए एक्सेस बढ़ गया है, तो डार्क सर्कल्स आंखों के में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इस मौसम में क्योंकि इचिंग या दूसरी परेशानियां ज्यादा होती है तो वो और ज्यादा इरिटेट करने लगती है। या मेकअप का यूज, अगर कहीं फंक्शन में जाना है, कोई जगह पे जाना है, तो मेकअप का यूज भी सबसे ज्यादा चेहरे पर होता है।
2: मेकअप बड़ा सेंसिटिव इशू, मेरा मानना है कि मेकअप करना हर नारी का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको हम रोकते नहीं है। बट उसमें एक छोटा सा एडवाइस मैं देता हूँ लोगों को कि आप मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगा लें, उसके ऊपर से मेकअप लगा लें, और जैसे आपका काम खत्म हो मेकअप वाला, सपोज पार्टी वार्टी होगी, देन जस्ट रिमूव इट एज सून एज पॉसिबल विद अ जेंटल फेस क्लींजर और सिंपल प्लेन वाटर।
1: सर हमारी एक फ्रेंड है कविता जी, वो इधर मथानिया के आसपास रहती है, तो वो वहां से कह रही है कि जो अगर यहाँ से अभी जैसे किसी फंक्शन में जाना है, और आजकल जो क्योंकि मौसम ये मॉनसून का है, तो वाटरप्रूफ मेकअप सजेस्ट किया जाता है,
3: जो अलग अलग स्किन स्पेशलिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं या जो मेकअप आर्टिस्ट है वो कहते हैं कि वाटरप्रूफ मेकअप

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर।

0: ज्यादा, लेकिन क्या ये दूसरे मेकअप की तरह ही सेफ होता है?
1: एक्चुअली मेकअप हमारा डोमेन नहीं होता, उसमें हमने कोई पढ़ाई नहीं की मेकअप के बारे में, तो जो आर्टिस्ट है वो ज्यादा जानता है, बट हम इतना कह सकते हैं कि आप मेकअप वाटरप्रूफ मेकअप ऑब्वियसली इस मौसम में लुक्स लाइक कि अच्छा रहेगा
0: जी,
1: पर आपका जैसे ही काम खत्म हो मेकअप उतार दो और मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगा लो,
0: सनस्क्रीन
1: हमारी
0: एनीहाउ वो ठीक रहता है। एक सर हमारे श्रोता हैं कैलाश चंद्र सोलंकी घंटाघर से, वो पूछ रहे हैं कि मतलब क्या एक्स्ट्रा में पानी पीना, क्योंकि पसीना ज्यादा आता है, वो भी चेहरे की स्किन को मेंटेन रखता है या प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में मदद करता है?
1: या एडिक्वेट हाइड्रेशन, एडिक्वेट पानी पीना, करीब 3-4 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए
0: जी,
1: पर 5-6 लीटर नहीं पीना चाहिए
0: जी। एक और हमारे श्रोता हैं कैलाश आसेरी चपासी हाउसिंग बोर्ड से, ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, गर्मी में पसीना बहुत ज्यादा आता है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन हाँ वजन इनका ज्यादा है 126 किलो, ब्लड प्रेशर की गोली ये ले रहे हैं रोज, लेकिन इनको पसीना इतना ज्यादा आता है कि कपड़े हमेशा भीगे हुए रहते हैं, शर्ट हमेशा गीला ही रहता है, खासतौर पर इस मौसम में, तो क्या ये कोई तकलीफ की
1: इस कंडीशन में हम जनरलाइज हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं
0: जी।
1: तो मेरे ख्याल से इनका अगर वजन 126 किलो है तो उनको वजन पे और हाइपरटेंशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए
0: जी,
1: और इसके लिए अपन कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं वो कर सकते हैं पसीने के लिए, उसके बाद इनको आगे दवाई दे सकते हैं।
0: सर एक मैसेज और है स्मिता जी का देवनगर से, सर ये जानना चाह रही है कि वैसे तो इनको 12 ही महीने पसीना बहुत बहुत ज्यादा रहता है चाहे सर्दी हो या गर्मी, लेकिन इस मौसम में स्पेशली इनके चेहरे से मतलब हर समय जैसे कपड़ा निचोड़ने पर किस तरह से बूंदे टपकती रहती है उस तरह से टपकता ही रहता है पसीना इनके चेहरे से।
1: बिल्कुल, ये भी हाइपरहाइड्रोसिस कंडीशन है
0: जी,
1: इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं,
0: ट्रीट कर सकते
1: हैं, इसके लिए कुछ बेसिक टेस्ट हम करवाते हैं
0: जी,
1: उसके बाद इनको ट्रीटमेंट कर
0: सकते
1: हैं।
0: तो ये क्योरेबल है और
1: हाँ ये कंट्रोलेबल है, ट्रीटेबल है।
0: तो सर एक लेकिन ये जो दोनों ही कंडीशंस हमारे जो श्रोताओं ने सवाल पूछा इनमें एक चीज जो कॉमन नजर आ रही है वो है वजन, क्या ओबेसिटी का भी इन स्किन प्रॉब्लम से गहरा
1: टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कोई लिंक नहीं है,
0: नहीं
1: बट ओबेसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है
0: जी, ओबेसिटी अपने आप में, लेकिन स्किन प्रॉब्लम्स और ओबेसिटी का आपस में कोई
1: स्किन प्रॉब्लम ओबेसिटी के साथ पसीना आना तो नहीं है एसोसिएटेड, बट हाँ उसके अलावा बहुत सारी कंडीशन होती है जैसे गर्दन के ऊपर काले घेरे आना
0: जी,
1: अंडर आर्म में काले घेरे आना उसको हम एकेंथोसिस नाइग्रेकेंस बोलते हैं
0: जी,
1: और इन लोगों में हार्मोन प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है, एक्ने भी इनको ज्यादा आते हैं, और इन लोगों में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं
0: जी,
1: और जो फ्रिक्शनल डर्मेटाइटिस होता है जैसे ये चलते हैं तो इनकी जांघें आपस में रगड़ खाती हैं
0: हाँ।
1: उससे उस जगह पे इनको प्रॉब्लम आती है, तो डेफिनेटली ओबेसिटी के साथ बहुत सारी स्किन कंडीशन एसोसिएटेड है, इवन हेयर फॉल भी इनमें ज्यादा होता है
0: जी। सर एक जैसे अभी ओबेसिटी की और ये बात चली तो आपने जैसे बताया कि दोनों जांघों के बीच में भी प्रॉब्लम आती है, एक जो इस मौसम में चाहे मेल हो फीमेल हो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिनके बारे में बात करने में लोग कतराते हैं वो है प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग और खुजली,
2: एक्जिमा,
0: एक्जिमा, एक्जिमा भी नहीं वो थोड़ी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है, पर बेसिक इचिंग भी इस मौसम में ज्यादा रहती है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते क्योंकि उन्हें थोड़ा टाबू सा सब्जेक्ट लगता है और लगता है कि नहीं इसके बारे में बात नहीं की जाए, और खासतौर पर जो बच्चे हैं या जिनमें अभी उतनी समझ डेवलप नहीं हुई है, तो क्या इन जो यहाँ की क्योंकि सेंसिटिव स्किन है उसको किस तरह से केयर किया जाए, किस तरह से ड्राई रखा जाए कि इचिंग ना हो या परेशानियां ना हो?
1: बिल्कुल सही बात, अगर ओबेसिटी है तो हमें वजन कम करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरा ये है कि आपको कॉटन अंडर गारमेंट्स पहनने चाहिए जहां तक पॉसिबल हो, और अगर मौसम ऐसा है तो आप दिन में 2 बार भी गारमेंट चेंज कर सकते हो
0: जी।
1: तीसरा कुछ लोग बिना डॉक्टर की एडवाइस के स्टीरॉइड वाली क्रीमें लगाते हैं इस जगह पे
0: जी, जी।
1: तो मैं आपको बता दूं कि ये स्किन हमारी बॉडी की सबसे पतली स्किन होती है, आप स्टीरॉइड लगाओगे स्किन और पतली हो जाएगी, वहां से स्किन गायब भी हो जाएगी, तो उसकी बजाय अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो और आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो तो सिंपल कैलामाइन लोशन अपन लगा सकते हैं,
0: और जगह शर्म आती है लोगों को बात करने में या डॉक्टर से कंसल्ट करने में,
1: शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो और आपके पास टाइम हो तो आपको बिल्कुल दिखाना चाहिए, अगर टाइम नहीं है प्रॉब्लम है तो आप इसको क्लीन करके सिंपल साबुन पानी से क्लीन करके और कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं
0: जो वो थोड़ा सेफ
1: वो सेफ है, और जब आपको टाइम मिले तो हमारे पास आ जाओ।
0: बिल्कुल नहीं, आपसे कंसल्ट करना तो हमेशा ही जरूर रहता है क्योंकि स्किन हमारे पूरे बॉडी का एक रिफ्लेक्शन है, और अगर स्किन खूबसूरत है तो खूबसूरत वो खूबसूरती से बाहर की नहीं हमारे कलर की नहीं जो उसकी क्वालिटी है स्किन की। जैसे एक डॉक्टर साहब एक बहुत कॉमन सा एक कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जैसे जब हम चेहरे पे कोई भी क्रीम या लगाते हैं वो अंदर की लेयर्स तक जाती है, और आजकल कई विज्ञापन भी इस तरह की बातें कहते हैं कि हम 99% क्लीन कर देते हैं या

0: इससे इसमें ये फलां केमिकल है, इससे आपकी स्किन ऐसी रहेगी, इससे आपकी स्किन ऐसी रहेगी, तो क्या ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजों में सब में अलग अलग अलग अलग एफिशिएंसी है, तो एक कंज्यूमर के तौर पर कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाए या कौन सा ना किया जाए या किस तरह के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हुआ जाए, ये भ्रम हमेशा बना रहता है। तो आप एक विशेषज्ञ के तौर पर क्या एडवाइस करेंगे?
1: मेरा ये मानना है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब और मेन सोशल मीडिया इज फुल ऑफ फेक एडवर्टाइजमेंट,
0: भ्रामक विज्ञापन है।
1: और वो एक बात और बोलते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड, हमने कभी रिकमेंड नहीं किया उन चीजों को, ठीक है? तो आपको जो बेसिक स्किन केयर रूटीन है, आप एक सिंपल स्किन कंसल्टेशन से हमारे साथ आके पूछ सकते हैं, हम बता सकते हैं, वो ज्यादा महंगा भी नहीं होता। अब अननेसेसरी उसमें आप पैसा खर्च करते हो वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपने स्किन को भी खराब करते हो, उससे बचना चाहिए,
0: बिल्कुल बचना चाहिए, इररिकवरेबल है।
1: हाँ, और एक हमारे देश में ये भी है कि इनके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है।
0: हाँ, ये भी
1: आपको कंट्रोल करने के लिए लोग बैठे हैं, मुझे कंट्रोल करने लोग बैठे हैं, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, तो इनसे बिल्कुल बचना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी अपना काम करेंगी जरूर। कुछ तो काम हुए हैं, पहले जो 100% का दावा किया जाता था उसको अब थोड़ा कंट्रोल किया गया,
1: 99.9,
0: बिल्कुल वहां तक तो आए, चलो एटलीस्ट इतना काम हुआ। लेकिन हाँ, हमें एज एन कंज्यूमर भी और एज एन पर्सन भी अवेयर रहने की जरूरत है। विशेषज्ञ की सलाह लेने में कभी कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम बातें कर रहे हैं मानसून में स्किन केयर पर, और भी हमारे श्रोता हमारे साथ जो सवालों के जरिए जुड़ रहे हैं, आप भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर 9413329359 पे। डॉक्टर साहब से हम बातें जारी रखेंगे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में इस खूबसूरत से गीत के बाद, जो कि है डॉक्टर साहब की ही पसंद का।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
5: दोस्तों, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ एम्स जोधपुर के त्वचा रोग विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर अनिल बुडानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे विशेष बातचीत हो रही है मानसून में त्वचा की देखभाल विषय पर। वो सब बातें, वो सब सवाल जो आपके और हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं स्किन को लेकर, कैसे देखभाल करें, कैसे बीमारियों से बचें, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, हम सब फेस करते हैं और उन्हीं पर विशेष चर्चा हम उनसे कर रहे हैं। तो अगला सवाल तो डॉक्टर साहब हमारा ये है कि क्या खान पान से भी स्किन पर कोई असर पड़ता है?
6: हाँ, खान पान जैसा हम खाते हैं वैसा हम बन जाते हैं, यूजुअली ऐसा बोलते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जैसे मेरा बेटा फोर्थ क्लास में है तो मैं उसका होमवर्क करा रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था बैलेंस डाइट।
5: अच्छा,
6: तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। एक फोर्थ क्लास के बच्चे को पता होती है बैलेंस डाइट क्या होती है। मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक और ज्यादा तेल मत खाओ।
5: अच्छा, तो आप तेल की बात कर रहे हैं तो सर यहाँ तो जोधपुर में तो हम खाउन खंडे होते हैं सभी लोग।
6: नहीं, बिल्कुल।
5: तो सर मिर्ची बड़ा तो हम छोड़ते नहीं है।
7: मॉनसून
5: है तो मॉनसून में,
6: मॉनसून में मिर्ची बड़ा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक्सेस में कभी नहीं खाना चाहिए।
5: अच्छा,
6: बाकी मन को भी नहीं मारना चाहिए। डेफिनेटली एंजॉय करो, मॉनसून को एंजॉय करो विद केयर। मिर्ची बड़ा खाओ और स्किन केयर भी करो और हेल्दी एक्सरसाइज भी करो तो आपकी लाइफ आराम से निकलेगी।
5: अच्छा,
7: हाइजीन का स्पेसिफिकली ध्यान रखना होता है, खाने में भी।
6: बिल्कुल, खाने में भी,
7: क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रीट फूड अगर यूज करे कोई भी खाने की तो मक्खियां मच्छर जो है वो इस मौसम में ऑलरेडी ज्यादा
6: मच्छर भी है। और मोस्टली सारा स्ट्रीट फूड आपका पाम ऑयल में बनता है। पाम ऑयल बड़ा डेंजरस है, उसे बचना चाहिए।
7: तो स्किन में, मतलब स्किन केयर में ऑयल सिलेक्शन भी मैटर करता है। किस
6: ऑयल सिलेक्शन आपकी ओवरऑल हेल्थ में मैटर करता है, ओवरऑल हेल्थ आपकी स्किन में रिफ्लेक्ट करती है
7: जी।
6: इसलिए
7: तो ये हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। और एक चीज और, क्योंकि मॉनसून में अगर हम हेल्दी डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम सैलेड है या जूस है, सूप है, लेकिन उनके साथ भी ध्यान ये रखना है कि वो बहुत देर तक कटे हुए अलग से खुले में ना पड़े हों, वो एटलीस्ट इन्फेक्शन को वो न्योता देना।
6: yeah, आपको फ्रेशली कंज्यूम करना पड़ेगा, जो भी फूड होगा आपको फ्रेशली कंज्यूम करना पड़ेगा। मॉनसून में चीजें बड़ी जल्दी खराब हो जाती है।
7: तो सर जब ओवरऑल स्किन केयर की बात आती है तो चूंकि हमारी पूरी जो बॉडी है स्किन उसका पार्ट है, चाहे पांव के तलवों से लगाकर हमारे सिर तक, तो ओवरऑल एक अगर हम कोई ऐसी टिप दें कि हाँ पूरे शरीर की केयर खास तौर पर इस मौसम में किस तरह से करनी है स्किन की।

0: लोग किस तरह से कर सकते हैं?
1: तो अगर एक ही पॉइंट अगर बताना है तो अपने जेंटल क्लींजर यूज कर सकते हैं, जेंटल क्लींजर, और एंटीसेप्टिक क्लींजर नहीं यूज करने हैं. That's more than sufficient.
0: खासतौर पर इस मौसम
1: में.
0: एक और कॉमन बीमारी आती है इस मौसम में, रैशेस की और घमोरियों की. तो ये क्योंकि मौसम का असर है और आप कितना भी बचने की कोशिश करें लेकिन घमोरियां कहीं ना कहीं असर करती हैं. सबकी अपनी अपनी स्किन टाइप होती है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा. तो ऐसे में कई लोग प्रिकली हीट पाउडर का यूज करते हैं या जो और ज्यादा मेडिकेटेड, उन्हें लगता है कि हम मेडिकेटेड पाउडर का यूज करें तो वो कितना सेफ होता है?
1: बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. घमोरियां इस मौसम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
0: जी,
1: जो ऑलमोस्ट सबको होती है विदाउट एनी प्रीडिस्पोजिशन टू एनी प्रॉब्लम. आपको घमोरियां तो होंगी होंगी, उनको अपन इंग्लिश में प्रिकली हीट बोलते हैं, हम लोग उसको मिलेरिया बोलते हैं. तो इसमें सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि घमोरियां हुई और पाउडर. घमोरियां क्यों होती है? घमोरियां एक्चुअली जो हमारे स्किन के पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, वो क्लोग हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं. आपने पाउडर लगाया तो और ज्यादा बंद हो जाएंगे
0: जी.
1: तो प्रिकली हीट पाउडर यूज करना इस मौसम में घमोरियों के लिए इज नॉट ए गुड आइडिया. घमोरियों के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप उसको क्लीन करें प्रॉपर. लूफा, एक तो लूफा होता है
0: जी,
1: जी जालीदार कपड़ा, उससे आप बैक क्लीन कर सकते हैं साबुन लगा के. दूसरा, आप जूट का भी लूफा आता है सिंपल, अगर वो भी नहीं है तो कॉटन के क्लोथ से आप क्लीन कर सकते हैं बैक को अच्छे से, थोड़ा सा रब कर सकते हैं. और ऊपर से आप एक सूदिंग लोशन जिसे कैलामाइन लोशन है वो लगा सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट. और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट घमोरियों का है कि हम ठंडे मौसम में रहें जहां तक पॉसिबल हो.
0: बिल्कुल सर, हमारे पास हमारे एक लिसनर का सवाल आया है. चूंकि आप खुद बीकानेर से हैं और हमारे जो अगले श्रोता हैं जिन्होंने सवाल भेजा है वो भी बीकानेर के गांव खारिया पतावतान से सवाल भेज रहे हैं, मनोज कुमार तंवर जी. ये कह रहे हैं इनकी जो घमोरियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी घमोरियां हो रही है और बहुत इचिंग हो रही है, तो क्या किया जाए?
1: हाँ, कई बार घमोरियां जब स्टार्ट होती है वो छोटी होती है, फिर उनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है. तो इनको अगर ज्यादा प्रॉब्लम है लंबे टाइम से तो इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. और बाकी इसको साबुन से क्लीन करके कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं. और इनको हम अगर हमें दिखाएंगे तो इनको एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं. घमोरियों का इन्फेक्शन होना बड़ा कॉमन होता है,
0: कॉमन होता है इस मौसम में. एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है फंगल इन्फेक्शन, जो मतलब शरीर के किसी स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा हो सकता है या पूरे शरीर में कहीं पर भी हो सकता है.
1: ये इस मौसम की सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है जिसको लोग बड़ा लाइटली लेते हैं और मोस्टली मिसट्रीट करते हैं.
0: तो अवेयरनेस भी शायद नहीं है.
1: अवेयरनेस नहीं है. तो सबसे इंपॉर्टेंट फंगल इन्फेक्शन है रिंग वर्म, एक गोल गोल घेरा जैसा बन जाता है और वो जांग में भी बन सकता है, बॉडी में कहीं बनता है, यूजली वो जांगों में होता है. दूसरा फंगल इन्फेक्शन होता है नेल का, वो बड़ा कॉमन होता है इस मौसम में. तो उसमें आपको एंटीफंगल ट्रीटमेंट लेना ही लेना चाहिए, प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए. एंटीफंगल दवाइयाँ आपको नींबू पानी के साथ लेनी होती हैं, प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेनी होती हैं. तो उसमें खाने और लगाने की दोनों दवाइयाँ होती हैं. और स्टीरॉयड का क्रीम यूज करना इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फंगल इन्फेक्शन. तो लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो स्टीरॉयड क्रीम लगाते हैं, उससे एक बार रिलीफ मिल जाता है 3 दिन के लिए, लेकिन जो दोबारा आएगा तो बहुत ज्यादा बढ़ के आएगा. और फंगल इन्फेक्शन एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली मेंबर में भी फैल सकते हैं.
0: तो ऐसे में ये भी ध्यान रखना होता है कि एक दूसरे के टॉवल नैपकिन शेयर ना करें.
1: बिल्कुल, टॉवल अपना अलग रखना चाहिए
2: और एक हाथ से खुजला के दूसरी जगह भी ना खुजली करें.
1: एग्जैक्टली, वो वहां से वहां फैल सकता है,
2: फैल सकता है, संक्रमण होने की ज्यादा संभावना रहती
1: है, संक्रामक बीमारी.
0: एक हमारी और लिसनर है आराध्या बोरा, ये जानना चाह रही है कि एलोपेशिया और टोटल एलोपेशिया का ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से होता है.
1: मेरे ख्याल से एलोपेशिया एरियटा की बात कर रहे हैं, उसका एक वेरिएंट होता है, उसको बोलते हैं एलोपेशिया टोटलिस
0: जी.
1: तो एलोपेशिया एरियटा में सिर के बाल जाते हैं
0: जी,
1: टोटलिस में पूरी बॉडी के बाल चले जाते हैं. तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, डेफिनेटली हम लोग ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को. तो आप आराम से आ सकती हैं. एक नई दवाई है जैक इनहिबिटर, वो काफी अच्छा काम कर रही है इसमें. इट्स वेरी सेफ, वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव.
0: तो आराध्या जी, आई होप आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया है. डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ये एडवाइस दिया है और बहुत सारे तमाम श्रोता जो उनके मन में भी अलग अलग स्किन केयर प्रॉब्लम्स को लेके जो सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं, तो आप भी चाहें तो अपना सवाल हमें 9413329359 पे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं. और डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं खासतौर पर फंगल इन्फेक्शन और इस तरह के जो छोटी छोटी इरिटेशंस होती है. सर, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अच्छा मौसम है, चलो ये प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ी बहुत रैशेज हैं या थोड़ा बहुत है. इग्नोरेंस से क्या ये प्रॉब्लम्स खतरनाक रूप ले सकती हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम जब छोटी हो उसको खत्म करना इज द बेस्ट. अगर बड़ी होगी तो आपको ट्रीटमेंट लंबा लेना पड़ेगा, ज्यादा महंगा लेना पड़ेगा.
0: बिल्कुल, तो दवाइयों से और क्रीम वगैरह से भी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल सकता है. तो डॉक्टर साहब, आपसे हम दवाइयों के बारे में भी खास तौर पर और बात करेंगे आपकी ही पसंद के इस खूबसूरत से गीत के बाद.

स्वागत दोस्तों 102.1 एफएम सन सिटी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और एम्स जोधपुर के त्वचा रोग विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर अनिल बुडानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे विशेष बातचीत हो रही है मानसून में त्वचा की देखभाल विषय पर डॉक्टर साहब एक आम सा सवाल है जनरल सा सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ सभी की ओर से कि

0: जो बारिश में इस मौसम में जब हम बारिश में नहाते हैं तो स्किन का रंग है जो थोड़ा सा सांवला सा हो जाता है, काला सा लगता है, क्या ये भ्रम है या होता है ऐसा?
1: बारिश में नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ उससे और दिक्कतें हो सकती हैं कि जैसे कि एक तो पानी ठंडा काफ़ी होता है तो उससे सर्दी जुकाम के चांसेस हैं, और दूसरा उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं डेफिनेटली, जो इतना पोल्यूशन है, पोल्यूशन के थ्रू ही वो रेन आ रही है तो भी स्किन को डैमेज कर सकता है। बट ओवरऑल इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि बारिश में नहाना कि नहीं नहाना, आपको अच्छा लग रहा है तो नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: बिल्कुल
2: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये जो बहुत सारी दवाइयाँ आप जैसे स्किन केयर की सजेस्ट करते हैं, क्रीम वगैरह, लेकिन अक्सर ये ना बहुत महंगी होती हैं और जेब पे अतिरिक्त भार तो डालती हैं, तो क्या ये स्किन ट्रीटमेंट वाकई में इतना कॉस्टली रहता है?
1: ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली स्किन की दवाइयाँ रियल में बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, पर थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट की जो जन औषधि की दवाइयाँ, भारतीय जन औषधि परियोजना स्टार्ट हुई थी हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, और वो दवाइयाँ काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी मेडिसिन है, ठीक है, और उनके अंदर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है और वो बहुत अच्छी अच्छी लैब्स में बनाई जाती हैं। सो जन औषधि की दवाइयाँ, और हमारे इंस्टीट्यूट में एम्स में करीब 2 शॉप्स हैं और बाहर भी करीब 2-3 शॉप्स हैं
2: जी।
1: तो आप बिल्कुल बिना किसी शक के वो दवाइयाँ ले सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स चीपर हैं मार्केट की दवाइयों से। तो जन औषधि की जो दवाइयाँ हैं वो हम खुद भी खाते हैं, एम्स का पूरा स्टाफ खाता है और हमने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, इट्स वेरी गुड। आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए,
2: जेब पे भार नहीं डालती,
1: जेब पे बिल्कुल भार नहीं डालती। और अभी तो ये भी कुछ कुछ जो सिंपल जैसे कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जैसे सनस्क्रीन, फेस वॉश, वो जन औषधि में नहीं अवेलेबल था, वो भी धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा
2: जी।
1: तो आपके स्किन की दवाइयाँ आपकी जेब पे बिल्कुल भार नहीं डालेंगी और क्वालिटी आपको बिल्कुल अच्छी मिलेगी।
2: बिल्कुल। अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं के जो सवाल आए हैं सर, उन्हें ले लेते हैं। पायला कला जिला बालोतरा मोहन से मोहनलाल प्रजापत कह रहे हैं कि पसीना होने पर फुंसियां होती है, वो तो ठीक है, लेकिन बरसात में भीगने पे ये और ज्यादा हो जाती हैं, तो ये क्या रीजन है?
1: बरसात का पानी कुछ इन्फेक्शन साथ में कैरी कर सकता है
2: जी,
1: और दूसरा जितना ज्यादा गीलापन रहेगा, अगर हम 1 घंटे तक बरसात में भीगते रहेंगे तो स्किन उतने 1 घंटे तक गीली रहेगी
2: जी।
1: गीली स्किन पे इन्फेक्शन होना बड़ा कॉमन है, तो फंगल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है
2: जी। एक सवाल है शंकरलाल गोयल जी का जोधपुर से ही, ये कह रहे हैं कि मेडिकल स्टोर्स में भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं और कई बार टीवी में ऐड देख के भी जो दांत खाद खुजली की दवाइयां हैं लोग बिना डॉक्टर की सलाह के उनका उपयोग कर लेते हैं, क्या वाकई में वो उतने एफिशिएंट हैं?
1: वो एफिशिएंट भी नहीं है और वो बड़ी खतरनाक दवाइयां हैं
2: जी।
1: वो आपकी दाद खास खुजली तो ठीक नहीं करेंगी, पर हाँ स्किन को खराब जरूर कर देंगी। स्किन जब स्किन ही बिल्कुल डैमेज हो जाएगी तो दाद खास खुजली का कोई सवाल ही नहीं रहेगा
2: जी, यानी तो उसके बाद वो
1: बिल्कुल बिल्कुल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नेवर एवर। दाद खास खुजली को कभी भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, स्पेशली दाद को, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, करीब 2 से 2.5 महीने ट्रीटमेंट चलता है,
2: इतना लंबा रहता
1: है। कभी भी दवाई आप सिर्फ विज्ञापन देख के दवाई ना लें, इट्स डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस
2: जी। एक सवाल और है रामनिवास बैरवा जी का जोधपुर से, ये जानना चाह रहे हैं कि इनके बच्चे के हाथ में छोटी छोटी गांठें हैं और सिर के बाल भी लगातार उड़ रहे हैं, तो इनको वैसे जो इन्होंने ट्रीटमेंट लिया उससे रिलीफ मिला नहीं है, तो क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे इन्हें?
1: ये काफ़ी वेग सी कंप्लेंट है और इनको देख के तो मैं नहीं बता सकता बीमारी क्या है, सुन के तो मैं नहीं बता सकता
2: जी,
1: पर इनको डेफिनेटली हमारी ओपीडी विजिट करनी चाहिए और इनको बिल्कुल हम हेल्प कर पाएंगे।
2: तो बिल्कुल इन्हें यही सलाह दी जाती है कि आप एक बार एम्स के ओपीडी में दिखाइए,
1: आसपास ना जाने की बजाय आप सीधा तुरंत पहुंच जाएं
2: जी,
1: वी विल हेल्प यू।
2: एक हमारी लिसनर और हैं पूजा, जो जानना चाह रही हैं कि खासतौर पर कहा जाता है कि एक बार स्किन के जो छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं, ओपन पोर्स के लिए क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अलग से होता है?
1: हाँ, पहली बात तो स्किन में पोर होना एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, पर ओपन पोर एक सेपरेट कंडीशन है जिसमें स्किन के पोर बड़े हो जाते हैं, इनको इसकी चिंता करनी चाहिए। तो उसके लिए विटामिन सी और रेटिनोल वाली कुछ क्रीम्स होती हैं जो हेल्प करती हैं, कुछ सीरम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, और इनको रेगुलर सनस्क्रीन लगाना चाहिए दिन में 1 या 2 बार
2: जी।
1: और एक हमारे पास लेजर है जिसको CO2 लेजर बोलते हैं, फ्रैक्शनल CO2 लेजर, उससे भी काफी हद तक ओपन पोर्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
2: और एक हमारी लिसनर है राधिका, जो जानना चाह रही है कि सेबोरिया ये क्या बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट कैसे लिया जा सकता है, खासतौर पर अगर मतलब हेयर और स्कैल्प के लिए भी ये कोई शैम्पू उसके लिए यूज करना चाह रही है।
1: सेबोरिया का एक्चुअल मीनिंग होता है तेल ज्यादा बनना सिर में, जहां भी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं हेयर के साथ साथ, वहां सेबोरिया का मतलब है ज्यादा तेल बनना। ज्यादा तेल बनेगा तो वहां फंगस की ग्रोथ ज्यादा होगी, फंगस की ग्रोथ ज्यादा होगी तो इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको कंडीशन बोलते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसका कॉमन नेम है डैंड्रफ
2: जी। तो वो
1: तो इसको ट्रीटमेंट के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू और कुछ एंटी डैंड्रफ लोशन हम लगा सकते हैं
2: सर। लेकिन एक बहुत कॉमन सी चीज है, जैसे कहा जाता है कि नारियल तेल कई बार स्किन

0: इन्फेक्शन के लिए लगता है रैशेज हो रहे, कुछ भी नारियल तेल लगा दो या घर पे कोई भी कोल्ड क्रीम या कोई भी क्रीम पड़ी होती है वो लगा दें, तो क्या ऐसे जो घरेलू नुस्खे हैं वो स्किन के लिए घातक हो सकते हैं? ये हमारे एक लिसनर है अब्दुल हमीद चीपा, ये भी जानना चाह रहे हैं।
1: नारियल तेल मेरे ख्याल से इज द बेस्ट थिंग फॉर द स्किन
0: जी।
1: नारियल तेल बहुत अच्छा होता है। इसका खास बात यह है कि इसके पीछे साइंस ये है कि इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा छोटा होता है
0: जी।
1: तो ये स्किन में डीप तक जाके नरिश करता है,
0: नरिश करता
1: तो नारियल तेल आप बेधड़क लगा सकते हैं
0: जी।
1: पर प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि जब आप सिर में नारियल तेल लगा के बाहर निकलोगे तो खूब सारा पॉल्यूशन और फंगस चिपकाओगे बालों में, तो प्रॉब्लम जो जितना फायदा नारियल तेल होने वाला है उतना नुकसान हो जाएगा। तो हम रिकमेंड करते हैं नारियल तेल आप रात में लगा लो, सुबह हेड वॉश करो और उधर अपने काम पे निकल जाओ।
0: और इसमें भी सर अगर स्किन में कोई भी मान लीजिए ट्रीटमेंट चाहिए या तो क्या नारियल तेल गर्म करके लगाने से, कई बार लगता है कि गर्म तेल की मालिश की जाए तो ज्यादा ठीक रहता है?
1: नारियल तेल सर्दियों में थोड़ा जम जाता है डेफिनेटली, तो नारियल तेल को हल्का सा गुनगुना करके हम लगा सकते हैं, बट अगर वो लिक्विड फॉर्म में तो गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। नारियल तेल इज वेरी गुड, इज द बेस्ट थिंग फॉर द स्किन।
0: सर चलते चलते हमारे एक लिसनर का और सवाल आया है, अगर आप कहें तो ले लें।
1: बिल्कुल
0: जी। खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर से कमरा राम सारन जी का, ये कह रहे हैं कि इनके नाक के ऊपर अंदर सब जगह छोटी छोटी फुंसियां होने लग गई है, 2-3 महीने से ये हैं, तो क्या ये गर्मी के कारण है या कोई और रीजन?
1: इसको कॉमन भाषा में कील मुहासे बोलते हैं, हम लोग एक्ने बोलते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट रेटिनोल क्रीम से पॉसिबल है,
0: लेकिन विशेषज्ञ को दिखा के ही ट्रीटमेंट लें अपने मन से। तो सभी श्रोताओं के लिए ये कॉमन एडवाइस है कि कोई भी अपने मन से ट्रीटमेंट वाली चीज ना करें।
1: बिल्कुल
0: जी सर। तो बहुत सारी बातें आज हम सर से कर रहे हैं, और खासतौर पर सर एक अगर आज के इस पूरे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में मैं अगर आपकी तरफ से हमारे तमाम लिसनर्स के लिए जो इस वक्त हमें रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, अगर ये मॉनसून में आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से एक बेसिक गाइडलाइन जो एडवाइजेस की है वो क्या रहेगी सर?
1: बेसिक गाइडलाइन ये है कि आप फ्रिक्वेंट वॉशिंग ना करें हेड की और बॉडी की
0: जी।
1: दिन में एक या दो बार वॉशिंग इज सफिशिएंट इंक्लूडिंग फेस। डॉक्टर से बिना पूछे अननेसरी जो ऐड आएंगे उनसे दवाइयां ना लें
0: जी।
1: नारियल तेल आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और अगर कहीं भी खुजली अगर हो तो आप कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं
0: जी।
1: पाउडर टेलकम पाउडर का यूज ना करें जहां तक पॉसिबल हो, ये मेरी बेसिक एडवाइस है। और हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज करें खूब सारा।
0: बिल्कुल।
1: और एक्सरसाइज में एक लास्ट एडवाइस मैं दे सकता हूं कि जो जिम गोअर्स हैं स्पेशली एक्सरसाइज जो करते हैं, इस मौसम में ज्यादा पसीना आएगा तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा टॉल और एक्स्ट्रा टी शर्ट कैरी करें, जैसे आपका काम खत्म हो चेंज योर टी शर्ट एंड कम होम एंड एंजॉय द मॉनसून।
0: ये एक बहुत खास एडवाइस है क्योंकि पसीना भी ज्यादा रहता है और उनका स्पेशली एक्स्ट्रा वर्कआउट हुआ हुआ होता है, तो वो जो पसीने से सारी जो क्या कहते हैं इन्फेक्शन और टॉक्सिन्स बॉडी से निकले हैं वो चेंज हो जाएंगे अगर ड्राई कपड़े पहन लिए तो।
2: डॉक्टर अनिल बुडानिया जी, आपने मानसून के त्वचा की देखभाल के लिए फंगल इन्फेक्शन और चेहरे की समस्याओं तक जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सभी साझा की है हमारे साथ, और वह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। यह समझना भी जरूरी है कि त्वचा केवल सुंदरता का विषय नहीं है बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का दर्पण भी है। तो हमारे श्रोताओं की ओर से और हमारी ओर से, पूरी टीम की ओर से, आकाशवाणी जोधपुर की टीम की ओर से अपना बहुमूल्य समय देने और जटिल मेडिकल जानकारियों को इतनी सरलता से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो आपकी दी हुई सलाहों को अपनाकर इस मानसून में मौसम में अपनी त्वचा को स्वस्थ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। और हेलो डॉक्टर प्रोग्राम कार्यक्रम को दोस्तों देते हैं यहीं विराम। इस सफर में मैं थी आपके साथ चंद्रकला सुथार, और हमारे मेहमान विशेषज्ञ थे एम्स जोधपुर के त्वचा रोग विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर अनिल बुडानिया जी। आज इस प्रोग्राम को यहीं देते हैं विराम। नमस्कार।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया। नमस्कार श्रोताओं, रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर जब सूरज अपनी पहली किरण बिखेरता है तो सबसे पहले जिस शहर का नाम याद आता है वह है हमारा जोधपुर। एक ऐसा शहर जिसकी हर गली इतिहास सुनाती है, जिसकी हर हवेली संस्कृति का गीत गाती है और जिसकी हर हवा में मारवाड़ की आन बान और शान की खुशबू बसती है। आज का इन्फोटेनिया समर्पित है उन महान विभूतियों को जिन्होंने इस धरती को केवल बसाया ही नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा, वीरता, साहित्य, राजनीति और संस्कृति से अमर बना दिया। आज हम केवल लोगों की जीवनी नहीं सुनेंगे बल्कि मंडोर से आधुनिक जोधपुर तक की एक रोमांचक यात्रा करेंगे। तो चलिए समय के पहियों को घुमाते हैं थोड़ा सा पीछे और शुरू करते हैं कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया, जिसमें आज मैं हूं आपकी हमसफर कविता सांकला। स्वीकार कीजिए नमस्कार। और चलिए जोधपुर इन्फोटेनिया कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है जोधपुर इन्फोटेनिया और आज हम बात कर रहे हैं जोधपुर की उन महान विभूतियों की जिनके कारण जोधपुर एक अलग ही पहचान लेकर खड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं जहां से हुई मारवाड़ की कहानी शुरू, मंडोर। जी हाँ दोस्तों, आज जोधपुर की पहचान मेहरानगढ़ है, लेकिन उससे पहले मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी मंडोर। मंडोर उस समय केवल एक नगर नहीं था, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की शक्ति का केंद्र हुआ करता था। यहाँ प्रतिहारों परिहारों ने शासन किया। आज भी मंडोर के उद्यान, वीरों की छत्रियां और ऐतिहासिक स्मारक उस गौरवशाली अतीत के गवाह बने हुए हैं। मंडोर हमें याद दिलाता है कि किसी भी महान शहर की कहानी उसकी जड़ों से शुरू होती है और इन्हीं जड़ों से निकलकर सामने आते हैं एक वीर योद्धा, राव हेमा गहलोत, जिन्होंने मंडोर को दी नई सांस। श्रोताओं, लोक कथाओं में वर्णित राव हेमा गहलोत का नाम मारवाड़ के इतिहास में विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। उस समय मंडोर पर विदेशी सत्ता का प्रभाव हुआ करता था। कहा जाता है कि राव हेमा ने असाधारण साहस और रणनीति का परिचय देते हुए मंडोर को मुक्त कराया। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोकगीतों में सुनाई देती है। होली के बाद निकलने वाली प्रसिद्ध राव जी की गैर परंपरा को भी लोग उनकी स्मृति से ही जोड़कर देखते हैं। राव हेमा ने न केवल युद्ध जीता बल्कि मारवाड़ की अस्मिता को भी बचाया। उनके प्रयासों ने आगे चलकर राठौड़ सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी वीरता को पूरा जोधपुर कभी भुला नहीं सकता। तो चलिए, जोधपुर से जुड़ी हम बातें कर रहे हैं, जोधपुर के शख्सियत की बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना जोधपुर से जुड़ा हुआ ही एक गीत सुना जाए।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है जोधपुर इन्फोटेनिया और आज हम बात कर रहे हैं जोधपुर से जुड़ी उन महान विभूतियों की जिनके कारण जोधपुर का अस्तित्व सामने आया। आगे इसी कड़ी में बढ़ते हैं और बात करते हैं मारवाड़ को संगठित करने वाले शासकों की। तो उनमें पहला नाम आता है राव चूड़ा का। जब हम मारवाड़ की राजनीतिक नींव की बात करें तो राव चूड़ा का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने बिखरी हुई शक्ति को संगठित किया और मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। उनकी दूरदर्शिता ने राठौड़ साम्राज्य को एक नई पहचान दी। साथ ही कहा जाता है श्रोताओं कि इन्होंने केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमता और संगठन शक्ति से मारवाड़ को मजबूत बनाया। आज का शक्तिशाली मारवाड़ जिस आधार पर खड़ा हुआ है उसकी पहली मजबूत ईंट राव चूड़ा ने रखी। साथ ही श्रोताओं, जोधपुर की बात कर रहे हैं और राव जोधा की बात हम ना करें तो जोधपुर की बात करना ही अधूरा सा लगता है, क्योंकि जोधपुर शब्द ही राव जोधा के बिना अधूरा सा है। जी हाँ श्रोताओं, सन था 1459 का। एक शासक जिसे चिड़ियानाथ की पहाड़ी पर खड़ा होकर दूर तक देख रहा था, जिसे केवल पहाड़ नहीं दिख रहे थे, उसे दिख रहा था भविष्य, और उस भविष्य का नाम था जोधपुर। राव जोधा ने मंडोर की सीमाओं से आगे सोचते हुए एक नए नगर की स्थापना करने की सोच करी और मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। वो मेहरानगढ़ किला जो आज भी दुनिया के सबसे भव्य दुर्गों में गिना जाता है। जी हाँ श्रोताओं, राव जोधा केवल योद्धा नहीं थे, वे नगर नियोजक, दूरदर्शी शासक और महान राष्ट्र निर्माता भी थे। आज लाखों लोग जिस जोधपुर पर गर्व करते हैं, उस जोधपुर की नींव रखी थी राव जोधा ने।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, महाराणा जसवंत सिंह आधुनिक सोच वाले शासक। 19वीं सदी में जब भारत में आधुनिकता की लहर उठ रही थी, तब जोधपुर में उसके सबसे बड़े वाहक बने महाराजा जसवंत सिंह।

जी हाँ, मारवाड़ का ताजमहल जिसे हम कहते हैं जसवंथड़ा, आज का प्रसिद्ध जसवंथड़ा महाराजा जसवंत सिंह की सम्मान में निर्मित स्मारक है। जसवंत सिंह जी को आधुनिक जोधपुर का निर्माता भी कहा जाता है। साथ ही श्रोताओं, महाराजा हनुमंत सिंह, मारवाड़ के इतिहास में शायद ही कोई शासक इतना लोकप्रिय रहा होगा जितने हनुमंत सिंह जी। साथ ही श्रोताओं, राजस्थान की वीर भूमि केवल रणबांकुरों और राजाओं के शौर्य के लिए ही नहीं बल्कि उन महान महिलाओं के लिए भी जानी जाती है जिन्होंने अपने त्याग बलिदान से इतिहास को अमर बना दिया। और ऐसी ही एक महान नारी थी गोराधाय, जिनका नाम मारवाड़ के इतिहास में स्वर्णित अक्षरों से अंकित है। जी हाँ श्रोताओं, 17वीं शताब्दी में जब मारवाड़ के शासक महाराजा अजीत सिंह का जन्म हुआ उस समय राज्य राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। उनके पिता महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो चुका था और मुगल सम्राट औरंगजेब मारवाड़ को अपने अधिकार में लेना चाह रहे थे और नवजात अजीत सिंह उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। महाराजा औरंगजेब, उनकी मंशा थी कि अजीत सिंह को अपने नियंत्रण में ले ले और ऐसे कठिन समय में गौराधाय ने असाधारण साहस का परिचय दिया। उन्होंने राजकुमार अजीत सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और उसकी जगह अपने ही पुत्र को प्रस्तुत कर दिया। एक मां के लिए अपने पुत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन गौराधाय ने मातृत्व से ऊपर उठकर राष्ट्र स्वामी भक्ति और मारवाड़ की अस्मिता को प्राथमिकता दी। उनका यह बलिदान केवल एक राजकुमार की रक्षा नहीं था बल्कि मारवाड़ के भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य था। जी हाँ श्रोताओं, राजस्थान के इतिहास में जब भी स्वामी भक्ति, त्याग, मातृत्व की सर्वोच्च मिसाल का उल्लेख होता है, गौराधाय का नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ हमेशा लिया जाता है। जिस प्रकार मेवाड़ में पन्नाधाय को याद किया जाता है ना, उसी प्रकार मारवाड़ में गौराधाय का त्याग और निष्ठा सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, ऐसी महान वीरांगना को शत शत नमन करते हैं जिनके बलिदान ने मारवाड़ के इतिहास को एक नई दिशा दी। श्रोताओं, माँ का हृदय कोमल होता है लेकिन जब मातृभूमि और सम्मान की रक्षा का प्रश्न हो तब वही माँ इतिहास रच देती है और गौराधाय इसका अमर उदाहरण है।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायक हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

शामिल है जय नारायण व्यास का। जय नारायण व्यास जिनके नाम पर आज जोधपुर का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी स्थापित है। यह विश्वविद्यालय आज भी शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। व्यास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के हित को सर्वोपरि रखे। आपने अपना पूरा जीवन राजस्थान और देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। राजनीति जिनके लिए सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि जन सेवा का मार्ग थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेखक, पत्रकार और दूरदर्शी नेता। आपने लोकतांत्रिक राजस्थान की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साथ ही दोस्तों, श्रोताओं, राजस्थान की धरती ने वीर पैदा किए, संत पैदा किए, शासक पैदा किए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी पैदा किए जिन्होंने शब्दों को हथियार बनाया और लोक कथाओं को अमर कर दिया। ऐसा ही एक नाम है विजयदान देथा, जिन्हें पूरे राजस्थान प्यार से बिजी कहता है। बोरुंदा गांव में जन्मे बिजी ने बचपन से ही गांव की चौपालों, दादी नानी की कहानियों और लोक कथाओं को बड़े ध्यान से सुना। उस समय शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यह बालक आगे चलकर राजस्थान की लोक कथाओं को विश्व साहित्य का हिस्सा बना देगा। जी हाँ, बिजी का मानना था कि लोक कथाएं केवल मनोरंजन नहीं होती बल्कि समाज की सामूहिक स्मृति होती है। उन्होंने हजारों लोक कथाओं को संकलित किया और बांतारी फुलवाड़ी जैसा विशाल साहित्य रच दिया। उनकी कहानियों में गरीब भी है, राजा भी है, प्रेम भी है, विद्रोह भी है और सामाजिक चेतना भी है। उन्हीं की ही प्रसिद्ध फिल्म कहानी दुविधा, इस पर मणिकौल ने फिल्म बनाई और बाद में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहेली भी उसी कथा से प्रेरित थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है श्रोताओं, आपको पता है, इतनी सफलता मिलने के बाद भी बिजी बोरुंदा नहीं छोड़ पाए। वे हमेशा कहते थे, मेरी ताकत मेरे गांव की मिट्टी है। जी हां श्रोताओं, जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन की बात करती है ना, तब बिजी हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े बिना कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती। राजस्थान की लोक आत्मा को शब्द देने वाले इस महान साहित्यकार को जोधपुर कभी नहीं भुला सकता।

जी हाँ श्रोताओं, यदि बिज्जी ने कहानियां बचाई हैं तो कोमल कोठारी ने लोक संगीत बचाया है। मांगणियार और लंगा कलाकारों को विश्व मंच तक पहचान देने वाले कोमल कोठारी आज भी जोधपुर की पहचान बने हुए हैं। जी हाँ श्रोताओं, कोमल कोठारी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि संस्कृति केवल अतीत नहीं होती बल्कि भविष्य की धरोहर हुई होती है।

व्यक्ति की दो ऐसी बेटियों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश और दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन किया है और जोधपुर को अलग पहचान दी है। जी हाँ, एक ने अपनी सुरीली आवाज से संगीत जगत में पहचान बनाई तो दूसरी ने क्रिकेट के मैदान पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जी हम बात कर रहे हैं इला अरुण और मिताली राज की। राजस्थानी लोक संगीत की पहचान बन चुकी इला अरुण ने अपनी दमदार आवाज और अनूठी शैली से भारतीय संगीत जगत में विशेष स्थान बनाया है। मोरनी बागामाट बोले, चोली के पीछे घाघरा, ऐसे गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। आपने राजस्थानी लोक धुनों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मिताली राज की बात करें तो मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे प्रेरणादायक हस्तियों में गिनी जाती है। मिताली राज ने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में अपनी पहचान बनाई। वर्षों तक भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अनगिनत युवतियों को क्रिकेट अपनाने की प्रेरणा दी। जी हां श्रोताओं, एक सुर एक संघर्ष, एक और इला अरुण ने संगीत के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाया तो दूसरी ओर मिताली राज ने खेल के मैदान में भारत का गौरव बढ़ाया। दोनों ने यह साबित किया कि प्रतिभा, मेहनत और समर्पण के बल पर किसी भी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। जोधपुर की इन दोनों बेटियों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिस पर आज पूरा राजस्थान, जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरा भारत गर्व करता है।

आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंसिटिव चैनल पर कार्यक्रम सुन रहे हैं जोधपुर इन्फोटेनिया। और आज हम बात कर रहे हैं जोधपुर के उन विभूतियों की जिन्होंने जोधपुर की अलग पहचान बनाई। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोधपुर के नए उभरते सितारे की। जी हाँ, जोधपुर का वो युवा गायक जिसने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई और जोधपुर की भी साथ में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद फैज की। मोहम्मद फैज राजस्थान के जोधपुर के युवा गायक हैं जिन्होंने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। वर्ष 2022 में इन्होंने सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 का खिताब जीतकर लाखों दिलों को अपनी आवाज का दीवाना बना दिया। अठारह फरवरी 2008 को जोधपुर में जन्मे मोहम्मद फैज को संगीत की प्रेरणा उनके परिवार से मिली और कम उम्र में ही इन्होंने मंच प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया था। 2022 में फैज ने सुपरस्टार सिंगर 2 का खिताब जीतकर जोधपुर की पहचान को एक अलग ही पहचान दी। और साथ ही 2024 में फैज ने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के गीत देखा तैनू से बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में महत्वपूर्ण शुरुआत की और इस गीत को श्रोताओं ने खूब पसंद किया। जी हाँ श्रोताओं, नीले शहर जोधपुर की धरती ने कई कलाकार दिए, उन्हीं में से एक नाम है मोहम्मद फैज का, जिसने अपनी सुरीली आवाज, विनम्र स्वभाव और शानदार गायकी से देश भर के श्रोताओं का दिल जीता। और दिल जीतने वाले फैज आज युवा

मंडोर की मिट्टी से लेकर मेहरानगढ़ की ऊंचाइयों तक यह यात्रा केवल व्यक्तित्व की नहीं थी, यह यात्रा थी जोधपुर के आत्मा की, वीरता, संस्कृति, साहित्य, संगीत, राजनीति और जनसेवा, इन सभी का संगम है हमारा जोधपुर। इसी गर्व और इसी सम्मान के साथ लेती हूँ कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया से विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया। आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 12 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा

0: 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सदमा फिल्म के गाने से। सुरेश वाटकर की आवाज है, गुलजार के बोल, इलैया राजा का संगीत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

तारे जमी पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया

برہا

की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला

जमाने को दिखाना है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में. संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की. नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में. गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है.

भक्ति तक बैगुन पूरा हो।

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या गईयों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि

आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाए। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने, कई श्रोताओं ने वही वही गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदलकर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे ही, और ध्यान से जरा आज की इबारत पढ़ लीजिए, हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है, फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या यही खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे, इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था, और फिर दिल शायर बन गया, गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गाने सुझाए गए हैं, लेकिन हम कुछ खास शब्दों से पूछ रहे हैं कि कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं। दिल शायर बन गया, इसका गाना बताइए, और बताइए कि दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, और बताइए कि संभालने वाली जो बात है, यहाँ पर कहीं संभालने की बात आई है, उस पर कोई गाना बताइए, क्योंकि इन शब्दों पर कुछ गाने कम हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ कर रखा है कि देखें आपको याद आता है कि नहीं। जैसे कि एक बार जो सनम से दिल लगा, यहाँ पर कौन सा गाना याद आया है। अब चलिए गीतों के माध्यम से एक कहानी भी सुनवा देते हैं, उस कहानी से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आपको याद आती है जरा बताइए। बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी आपने, सुनिए ये गाना और याद कीजिए कोई कहानी या फिर कोई गाना या फिर कोई अपनी जिंदगी की कोई घटना, जो यहाँ विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। तो बताइए कहानी, और आप भी कोई इबारत लिखकर भेज सकते हैं

हाँ, एक भी कहानी याद नहीं आई किसी को, न कोई फसाना याद आया और न ही कोई ख्वाब याद आया पुराना। हमने आपसे कहा कि कोई पुराना ख्वाब याद आया, लिखिए फटाफट। आपने किसी ने नहीं लिखा और न ही किसी ने ये लिखा कि हमने ये बचपन में ये कहानी सुनी थी या बड़े होकर कहानी अपने बच्चे को सुनाई। अरे एक लाइन में बता तो सकते थे कि फलाने लेखक की कहानी सुनाई थी, प्रेमचंद की, निराला की कविता सुनाई थी, कुछ तो लिख देते। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अब गानों से जुड़ी हुई बातें भी लिखते चलिए, सिर्फ अपनी टिप्पणी साझा करके बैठिए मत। आपकी टिप्पणी फेसबुक पेज पर सुरक्षित है, अगर हम पढ़कर नहीं भी सुनाते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। हम सबकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की टिप्पणियां हमारी आंखों से गुजर रही हैं और हम लाइक करते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल की खूबसूरती ये नहीं कि उसमें कितनी बातें हैं, बल्कि ये है कि उसमें कितने लोग बसे हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं सीधे दिल से जुड़ते हैं और वही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। अगर दिल साफ हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि मेरी सनम मेरी धर्मपत्नी है, जो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मेरा तो दिल सिर्फ यही मानता है कि उसके अलावा कहीं और दिल नहीं लगाना है, और एक बार जो जन्म से दिल लगा लिया है तो मैंने समझ लिया कि दिल उसी का दीवाना हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने, और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल तराना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं, घटनाएं भूलती नहीं, किसी से मुलाकात वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कोई हसीना जब रूठ जाती है। एक ने लिखा है किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो। एक श्रोता ने लिखा है कभी कभी दिल से दिल किसी का शुक्रिया अदा करना भी कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल, हम आपका शुक्रिया तो अदा करते हैं रोजाना। एक श्रोता ने लिखा है मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। एक श्रोता ने लिखा है विविध भारती के नाम से कई सारी साइट है, नए लोगों को बहुत परेशान करती है। तो देखिए यहाँ पर जो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा लिखा है और ब्लू टिक है, विविध भारती की जो असली प्रोफाइल है, तो वहां जाके देख सकते हैं। और इस समय जहां से आपको ये सुनने को मिल रही है ये बात, जहां से टिप्पणियां मिल रही हैं, वहां पर आप आइए। और विविध भारती की लिंक भी है जो जिसे आप देखकर वहां पर पहुंच सकते हैं। बाकी जो प्रोफाइल है वो नकली प्रोफाइल है, याद रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक छोटी सी प्यारी बात, दिल वो जगह है जहां यादें महफूज रहती हैं, रिश्ते खिलते हैं और दुआएं जन्म लेती हैं। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया। एक श्रोता ने लिखा है वही वाह, गानों की तो लंबी फेहरिस्त है। हमें लगता है अगर गानों के बोल हम बोलने लगेंगे तो ये आज का सुरीला सफर इतना लंबा हो जाएगा कि कभी खत्म ही नहीं होगा। एक टिप्पणी और पढ़ देते हैं फिर गाने की ओर चलते हैं। लेकिन भाई हमने आपसे कहानी पूछी थी, जरा याद करके उस कहानी की एक लाइन तो लिख दीजिए और वो फसाना भी लिख दीजिए जो फसाना बन गया, जो कहानी बन गई, और वो ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफर में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की, प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है। ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।

0: छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना था. मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थीं. अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रही, तो कितना दुख पहुंचा था, कितना अवसाद हुआ था हम सभी को, जितने उनके चाहने वाले हैं. सचमुच
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे
0: जैसे बात नहीं करते हैं, मोबाइल में रहते हैं. और एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत से सालों से मेरी तुझसे पहचान है.
1: सुनाते हैं ग्रामीण महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम गणगौर.

0: आपरी सखी मंजू चारण और मारे साथ है आप ये एक और साथण ममता राज पुरोहित। तो ममता जी आपने भी घणेमान राम राम।
1: घणेमान राम राम मंजू जी और कार्यक्रम सुनने वाली सगड़ी हेताली सखिया ने भी राम राम। सखिया राजस्थान रा रीति रिवाज रहन सहन भाषा संस्कृति लोक गीत संगीत री एक खास धसक है कि उना में राजस्थान रे कण कण री आत्मा पड़का मारे। तो बिल्कुल इन आत्मा रो एक पड़को आप रे खातिर इन कार्यक्रम में ले आया हूँ। मैं और मंजू जी इन कार्यक्रम रे आगे लेर चला और आपने सुनावा ओ गीत।

0: सपनों सजाणो बढ़िया लागे है, रोज सिंजिया पड़िया पार्क में रमणो बढ़िया लागे है, मजबूरी कर दियो है आने समय पहली मोटो निरतर माथे माथे बोझ उठाणो कीने बढ़िया लागे।
1: बिल्कुल। तो आ जो चार पंक्तियां मंजू जी आप सुनाई है इन दिन रे खातर विशेष ध्यान के देवन जोग है, क्योंकि आज है 12 जून और 12 जून ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस रूप में मनाया करो। इन दिवस ने मनाने उद्देश्य भी हो छे कि जो बच्चों रे जो बचपन है बिनी आपा मासूम बचपन री सुरक्षा कर सका, बिने शिक्षा दे सका, स्वास्थ्य दे सका और बियाने बियारो अधिकार रे प्रति जागरूक कर सका।
0: बिल्कुल सही बात की हो ममता जी, क्योंकि टाबर पणो है अपन जीवन रो समा अनमोल समय दिया करे। अगर आप टाबर पणे में आप भी जानो और मैं भी जानू कि आप ने आज भी पूछे कि आप के अगर जानी चाहो किन उम्र में, तो आप पाचो ही कहवा भाई मन बचपन में
1: बिल्कुल
0: तो ओ बचपन है वो हमेशा चोख ही लग गया करे है। पर आज जो को विश्व बाल श्रम दिवस मनाना रो कारण ही मोटो ओई छे कि एड़ा टाबरिया जका ने रे बचपन ने बचावन री खातिर लोगा न माए इन वास्ते जागरूकता फैलानी इनो प्रमुख उद्देश्य रिया करे। हर साल ओ जून महीने री 12 तारीख ने तो आपा मनावा ही हाँ, इनने दुनिया भर में 100 ज्यादा देश मनाया करे है। आज भी वैश्विक स्तर माते अपन देखा तो बहुत बड़ा स्तर माते बाल श्रम और बाल मजूर जगह बापड़ा मजूरी कर रहा है। आप देखो तो कटई होटला मायने कारखाना मायने आप कई जगह अड़ी देखा जगह अपन है घर मायने भी देखो आजकल रख रहा है। तो अगर आप अपना बच्चा ने सुरक्षित रखना चाहो तो बेबी की नहीं टाबर है और बाने अधिकारा रो भी आपने ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपने आड़े पाड़े कोई एड़ो बच्चों आपने दिख रही हो और आप उन मुक्त भी कराना चाहो तो एक टोल फ्री नंबर आया करे 1098 उन माते कॉल कर और आप आन टाबरा ने बटू मुक्त करा सको हो।
1: बिल्कुल। तो गरीबी बेरोजगारी और अशिक्षा जड़ी मजबूरियां और समस्याओं के कारण बाल श्रम में फंसेड़ा जो टाबर है ब्याह ने छुड़ावना और ब्यारो पुनर्वास कराणो ब्याह ने उचित शिक्षा और सुरक्षा देवनी ओही इन दिन रो प्रमुख उद्देश्य है। तो चला इन तरफ।
0: हाँ बिल्कुल ममता जी, आ बात तो आपसे ही की हो कि उद्देश्य वही हुए क्योंकि इन बारे में मन चार पंक्तियां याद आवे कि भूख बुरी है भायला मिनख हुए मजबूर, भूख बुरी है भायला मिनख हुए मजबूर, रोटी री खातर बनिया बालकिया मजदूर, रोटी री खातर बनिया बालकिया मजदूर, बालकिया मजदूर नित उठ करे मजूरी, रहे मजा सु दूर सदा मन राख सबूरी। देखो नियत तेरा हाथा मजबूर रहन बे इन तरीका रा काम करिया करे तो किनी इतो फायदो भी नहीं उठानो चाहिए। जटवान अधिकारा री रक्षा है वाना अपन करनो चाहिए और हमेशा टाबरपणे ने टाबरिया ने टाबरपणो जीवन देनो चाहिए क्योंकि वो एक बार गियो प्रो तो बार बार नहीं आवेला।

0: मंजू जी
1: बिल्कुल
0: देखो हाँ। कि अब की बार जो अपनो जेठ महीनो है खूब लंबो चाल रो है अधिक मास रे चक्कर में है नी तो अधिक मास चाल रो है और अब गिणिया चुनिया दिन बच्चे अधिक मास रा 15 तारीख ने है अमावस और अधिक मास री समाप्ति हो रही है अपने तो अन बच्चोड़ा दिन और माय ने जो भी थर मारे जड़ा लोग है जो कटे कह नहीं कह तिर स्नान कर नहीं आया
1: बिल्कुल
0: बियर वास्ते एक खास चर्चा ले रहा हूँ आज घना जना है जो लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सके या शारीरिक अक्षमता वे कि कर नहीं पावे करना चाहे पर नहीं कर पावे तो अगर आप कम दूरी पर या राजस्थान में ही इन अधिक मास रो तीर्थ स्नान रो लाभ लेना चाहो तो राजस्थान में भी कई अड़ी जगह है मंजू जी
1: जिठे आप अपने पुष्कर है तीर्थराज पुष्कर आप उठे जा सको और इन फायदो उठा सको अब आप देखियो ममता जी इन महीना हम आप सब लगातार अगर फोटो देखा सोशल मीडिया माते है तो ज्यादातर ओ ज रहे के भाई एनी हंगाणी तीर्थ की उड़ारी फोटो
0: हां और भाई एक तो कहे है के एक दूजा वादे वादे अपन लगे के बह गया चलो आपे भी चलो
1: हाँ
0: यू भी हो जावे कई बार है नी तो बिल्कुल वही कहना चाहूँ कि अगर आप लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सको के हरिद्वार या कोई दूजी अड़ी जगह पर जठा आप जाना चाह रहा हो उठे जावा में सक्षम नहीं हो तो

0: तो आप राजस्थान रे माने भी घनी अड़ी जगहों हैं जटे तीर्थ स्नान रो लाभ ले सको के इन मास रे माने केवे नहीं के दान पुण्य और स्नान पवित्र नदियों रमायने स्नान रो खूब महत्व है। पर अगर आप नहीं भी कर सको तो देखो घना जना ऐडा है कि जो बुढ़ा बुजुर्ग है वे घर रमायन अगर गंगा जल है तो गंगा जल आप पानी में मिला अन स्नान कर अन सगड़ी पवित्र नदियों रो नाम लेन अगर स्नान करो तो बिल्कुल जो आप तीर्थ स्नान री जो जगह है बिन मुताबिक आपने जो पुण्य है बिन फल री प्राप्ति हो सके
1: बिल्कुल। और जका लोग देखो के भाई ये नहीं स्नान नहीं कर पाए दिया तो बाणाड़ पड़ेड़ा कोई छोटा मोटा स्थान है जो बीकानेर रो कोलायत ले लो अजमेर रो पुष्कर ले लो जयपुर में गलता जी ले लो और बाण गंगा चित्तौड़ में तो आप अठे जाए कई जगह गोमुकुंड और है बट आप स्नान कर और इनो फायदा उठा सको जो को भी आपने नजदीकी स्थल है।
0: और यूं देखो कि आप बनास नदी पर जो मातृकुंडिया है नी धाम एक विशेष महिमा है मंजू जी के और कहे के भगवान जो परशुराम जी अवतार होया बे उठे आप रो जो मन है तो वो शांत करवा खातर उठे स्नान करियो हो तो आप उठे भी जा सको और इन्हें मेवाड़ हरिद्वार नाम भी जानी है बेणेश्वर धाम है जो डूंगरपुर में आप उठे जान भी स्नान कर सको। और अगर नहीं कर सको कोई कारण नहीं है कि भाई आप उठे जाने कोई विशेष फल री प्राप्ति कर सको या आपरा मोक्ष री प्राप्ति री जो मान्यता है बिन खातर आप जाना चाहो तो घरे भी आप गंगा जल स्नान करो तो बिल्कुल वो पुण्य वो मानसिक शांति आपने जरूर से मिल सके।

0: मंजू जी, आप बार बात करी पुष्कर राज री।
1: बिल्कुल,
0: पुष्कर ने तीर्थ राज कहवे, और कहवत में कहवे है कि सगला तीर्थ बार बार

0: पुष्कर राज एक बार तो अड़ी है इन तीर्थ स्थान री इन तीर्थ स्थान री महिमा पौराणिक मान्यता और ग्रंथों रे अनुसार यूं कहवे के वज्रनाभ नाम रो एक राक्षस थो जिन्हें वध खातर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आप कमल सू बियाने जो वध है बिन राक्षस रो वो करियो और उन टाइम रो कुछ एक जो पंखुड़ियो है कमल री वे धरती पर जठे पड़ी उठे पुष्कर सरोवर रो निर्माण होयो और अठेरी जो पवित्रता है बिने देखन भगवान ब्रह्मा स्वयं माता गायत्री रे संग अठे यज्ञ करियो तो केवल पुष्कर में ही जो है जो ब्रह्मा जी है बियारो प्रमुख मंदिर है और अठेरे जो पूजा अर्चना है ब्रह्मा जी री वा केवल और केवल यूं कहवे के अठे ही होवे है। तो देखो हिंदू धर्म रा जो पांच पवित्र सरोवर है नी बियार माने भी पुष्कर राज रो विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल सरोवर रे आपा अगर बात करा तो चारों 52 घाट है और प्रत्येक घाट है उनमा ते अलग अलग नाम दियो डायवाने आपा उठ जाएं स्नान कर सका हाँ और हर घाट रे माते और आज पुष्कर झील है अबार बरसात रे टाइम तो इतनी लबा लब रे
0: बिल्कुल। तो ए जो घाट है ब्रह्मा घाट वराह घाट गऊ घाट या गांधी घाट भी कहवे इन्हें सप्तऋषि घाट और यज्ञ घाट ए मुख्य है। इन्हें अलावा भी काफी सारा घाट है जटे श्रद्धालुओं की भीड़ रहे और खासकर 11 पूनम और अमावस्या टाइम लोग ज्यादातर जाया करें तो बिल्कुल अगर आप
1: और
0: भी
1: कोई भी तीर्थ करना हो क्या करे कि अगर पुष्कर नहीं जाओ तो तीर्थ फल
0: अधूरा रहे बिल्कुल। तो बिल्कुल आप भी अगर हो सके तो जरूर सुन पुष्कर राज रा दर्शन करो।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: देखो ममता जी, अपराटे राजस्थान में एक घीरी मनवार है, उनो बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्योंकि आ मनवार अपन करा तो इन लारे अपनो प्रेम और सम्मान रो भाव है वो मेहमान साथे जुड़ियो रहे। और देसी घी अपन मेहमान ने परोसा और या यूं कहवा कि भाई पावना घरे आया है तो आनारो मतलब आदर सत्कार अपन राजस्थान री पहली विशेषता है।
6: बिल्कुल,
5: मेहमान नवाजी अठारी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अठे घी खाली खावन रो हिस्सो नहीं है बल्कि ताकत, सेहत और अतिथ्य रो प्रतीक मानी जावे है। तो आगीरी मनवार है, इनु महत्व कई है। इन मनवार रो महत्व ओ है कि राजस्थानी संस्कृति रमाए हिवड़े छू लेवन रो एक अटूट हिस्सो है ओ।
6: बिल्कुल,
5: मेहमाना ने प्रेम आदर और जबरदस्ती रहते भर भर अरे घी खवाड़नो।
6: बिल्कुल, जब आप घी की बात कर लिया होनी तो एक कहने के पुरानी याद आवे अपने दिमाग में। याद है एक जगह जिमण गया था तो आपने अठे कही है कि गांव ढाणी और मैंने रीत है कि जिमण होवे नी, कुछ कुछ जिमण ऐडा है जटे घी की चरिया घूमिया करे।
5: बिल्कुल,
6: और वन चरी की धार नहीं टूटनी चाहिए। और बहुत पुराने टाइम में तो ओ भी हो तो, आज तो आप इन चीजा ने नहीं मानो कि ओ भी हो तो कि उन माते भी अर्जना लाग जातो उन परिवार माते, अगर के भाई अगर घीरी धार टूटी है तो मतलब आप रो आदर सत्कार उन तरह रो नहीं है, उत्तो मनीच तो नहीं है। तो उन खातर भी आपने कोई कोई गांव रे तरफ फटकार पड़ जाती या और वो मिल जातो कि भैया रठे तो यूं कौन तो या यूं कौन तो। इन अलावा आप देखो कि आज भी अगर कोई पावन परी घरे आवे नी तो यूं तो क्या घी गुड़ अपर तो घी में डुबियोड़ो गुड़ देवे, कटोरी भरन घी घालन गुड़ उनमें डुबियोड़ो होना चाहिए। बात करो

0: अगम चौमासे लूकड़ी जो ना खोदे गेह तो नहीं चे ही जान जो गण बरसे लो मेह।
1: बिल्कुल ममता जी, के अगर चौमासरी रुत रहे और आवन वाली रहे और अगर लोमड़ी है रेगिस्तान दी वहाँ आप रो अगर जो को कहे के घर ने खोदिया नहीं करे तो अपन जान लेनो घर खोदिया करे तो अपन जान लेनो चाहिए कि अब बरसात है आवन वाली है। ऐड़ा ही कई सुगुन आपारे अठे बडेरा मानिया करता हा क्योंकि राजस्थान में हमेशा ऊँ कहीं रही हो कि पानी की कमी रही ही। राजस्थान में ज्यादातर पानी पीवन वास्ते वर्षा रु जल है बिने इकट्ठो करन राखता हा और मेरो पानी टांका टोबा तालाब या झीला रे माए सहेजन राख्या करता हा और आपानी खुदरी प्यास बुझाता और इनू ही आपाना जिता भी मवेशी हा या आप कह सका भाई दाव डांडा हा पानी भी प्यास बुझा सकता हा।
0: बिल्कुल
1: राजस्थानी लोग हमेशा वर्षा रो बेसब्री इंतजार करियो है और आनी आ मेहर प्रति बेसब्री ही आने मौसम विज्ञान ने परखना री और समझना री एक प्रेरणा अपने आप में दी ही। तो आज रा मौसम विज्ञानी जो को बतावे नी वे आपार बडेरा उन टाइम में बताई दिया करता।
0: बिल्कुल हा। और यूं कहवे नी कि एक तो अपर श्वास चले नी उन माथे भी लोग घना जना होता कि आपरी सांस देखन कहता कि इन दिशाओं में आई कि उन दिशाओं में आई कि तो आई वो भी बता देता और बाद में अब देखो कि आप टिटोड़ी होवे नी टिटोड़ी कितना अंडा दिया कि वे अंडा रो मुंडो कठिन है कितनी ऊंचाई माते दिया इन माते भी वे अनुमान लगा लेता कि मैं केड़ो कुई।
1: बिल्कुल और तो आपायू इनू संबंधित एक दोह है कि पीतल कांसी लोह में पड़िया काठ चढ़ जाए पीतल कांसी लोह में पड़िया काठ चढ़ जाए जल धर आवे दौड़ तो इनमें संशय न आए। अगर पीतल कांसी और लोहारा बर्तन है पड़िया पड़िया में काट लग जावे तो अपन समझ लेना चाहिए कि बरसात है वा आवन वाली है।
0: इनमें विज्ञान भी है कि अगर वातावरण में नमी है तो काट लागेला और नमी है इनो मतलब बारिश आवन वाली है।
1: तो सोचो कि मैं कितना बड़ा मौसम विज्ञानी। हाँ
0: बिल्कुल। तो ऐ छोटी छोटी चीजें हैं जो अपनी जो समृद्ध संस्कृति है अपनो रहन सहन रीति रिवाज है बिहार अपने ज्ञान देवे।
1: बिल्कुल। और यूं ही देखो आप टाबर पड़े में जब चिड़िया ने धूड़ में या रेत में स्नान करने में देखता जन पूछ लेता दादी से नानी साने कि भाई ये चिड़िया काई कर रही है तो इन बात भी एक है कि चढ़ चढ़ करती छिड़कलियां करे रेत स्नान चढ़ चढ़ करती छिड़कलियां करे रेत स्नान तंबू सो अबदानियों बादलिया आसमान। तो उन टाइम बरसात हमेशा दादी सामारी से नहीं कहता कि अब बरसात आवन वाली है भाई क्योंकि चिड़िया एनआईडी।
0: हाँ और मंजू जी देखो कई बार अड़ो वैनी कि आपा जो आजकल जो दौड़ धूप है नी इर मैंने पुरानी चीजें भूल गया हूँ पर आज जब बोल रही हूँ और याद करो तब सगली चीजों आखिर सामने आ रही है। एक एड़ी ही मैं भी आपने दो लैनो सुनाऊ। अगम सूचे सांडनी दौड़े बना अपार पग पटके बैसे नहीं जद में आवनहार। मतलब कि ऊंटनी जो वर्षा रो पुरमान मान वहनी वो ऊंटनी हो जाया करे जदवा अठू अठी दौड़न लागे और पग जमीर माते पटके और बैठे नहीं तो समझ रहे उन्हों के बरसात आने वाली है।
1: बिल्कुल।

0: ओ कार्यक्रम जो है अपनी मायड़ भाषाओं से जुड़ो तरह तरह री बातचीत बानगी कई तरह री रीत कहावत रो आप इनमें समावेश करो हाँ और हर बार कोई कोई मारवाड़ी री कहावत मारवाड़ी भाषा री कहावत आप इनमें राजस्थानी री क्या करा आज री कहावत है गेर दी लोई तो कई करेला कोई मतलब कि जब कोई पूरी तरह निर्लज हो जावे तो बिनो कोई कई नहीं बिगाड़ सके
1: बिल्कुल इन्हीं तरीका वो एक कहावत और है कि अंधा धुंधरी साई भी घटा तो प्रो राज तो अगर शासकी विवेकहीन या मूर्ख है तो अपने कदी भी नहीं पड़ जावे है बाहोरी नहीं रह सके तो हमेशा ध्यान रखना है कि जटा अंधा धुंधरी साई भी रही तो घटा टोपरो तो राज रहना ही है

मंजू जी, देखो कोई भी तरह रो महीनो होवे, कोई त्योहार होवे और घर रो कोई भी काम होवे, सगलो ही जो काम काज है या जो कहनी के आपद आपी है बाकी माते पड़े तो कहवे के घर री जो मुखिया है, जो महिला है, महिला मुखिया बिन माते रिया करे। तो यू देखवा जाओ तो जो माँ हो वह पूरा परिवार रो ध्यान तो राखे है, पर जद बात आवे खुदरे माते तो घनी चीजा है जकी वह नजरअंदाज कर देवे या इतनी जितो ध्यान देना चाहिए उतो ध्यान नहीं देवे। एक उम्र वे जब तक तो आज ही असर नहीं करेला, पर कुछ समय बाद 30-35 साल की उम्र

0: बाद में अगर आप ध्यान नहीं दो आपरे स्वास्थ्य रहो आपरी शरीर जुड़ी छोटी छोटी दिक्कतों रहो तो आगे जाने बड़ी हो सके।
1: बिल्कुल,
0: तो बिल्कुल जरूरी है कि जो घर री आपदा भी है वेनु थोड़ो सा समय निकाल अन आपरी उम्र रे अनुरूप आपरी उम्र रे अनुसार कुछ एक जा जो है बिन पर आपने जरूर सो ध्यान देना चाहिए। तो सब पहली बात जो आ रही है वह है मेमोग्राफी री। मेमोग्राफी यानी स्तनों री जांच। 40 वर्षीय उम्र के बाद में महिलाओं ने नियमित रूप से आ जांच करानी चाहिए क्योंकि जो स्तन कैंसर है बिना जो शुरुआती चरण है या लक्षण है बिनु आप आवन वाली बहुत बड़ी बाधा ने रोक सको या दूर कर सको हो।
1: बिल्कुल।
0: दूसरो टेस्ट है पेप स्मीयर टेस्ट और सर्वाइकल कैंसर री जांच रे वास्ते विया करे और समय पर स्क्रीनिंग या जांच हो कैंसर रो जो जोखिम है बिना आप रोक सको हो। एक बात और है मंजू जी के बाद जब सर्वाइकल कैंसर री हो रही है तो कम उम्र री जो बच्चियां हैं 14 साल तक
1: री। बिल्कुल, आजकल आनो टीकाकरण रो वो चल रियो है। हाँ। तो आप जरूर छोटी बच्चियां ने ले जाओ और इनो टीकाकरण जरूर करा।
0: एचपीवी वैक्सीन आप इन्हें किया करो तो अगर समय पर आप वैक्सीन लाग जावे तो भविष्य रो जो बड़ो खतरो है बिना आप टाल सको हो।
1: बिल्कुल, यूं ही ब्लड शुगर है झुकारी भी जांच टाइम टाइम माता कराणो रह चाहिए क्योंकि एक उम्र के बाद शुगर लेवल है वो अप रह जाए ही करे हाई रहे तो अपन ध्यान रखनो है कि भाई अपनी बढ़नी नहीं चाहिए तो इन्हीं जांच जरूर करा लेना।
0: हाँ, शुगर कारण जो डायबिटीज जड़ी परेशानी है बिनो आप बच सको जांच कारण। और लिपिड प्रोफाइल एक और जांच है। आ जांच शरीर मायने अच्छा और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है बिनी मात्रा बतावे तो हृदय रोग रे खतरे रो आकलन आप समय पहले कर सको हो।
1: बिल्कुल, इन्हीं तरीका दूजी जांच अगर आप तो थायराइड रो टेस्ट है तो आ देखो आजकल ज्यादातर महिलाओं में समस्या है थायराइड वाली तो आप इनो टाइम टाइम माते जांच कराता रहो क्योंकि अब यार अपन देखा तो इन दौर में ज्यादातर महिलाओं है पीसीओडी री शिकार। तो आप अगर जांच नहीं कराओ तो आपने ठानी पड़ेला कि भाई आप किन तरीका बीमारियों ग्रस्त रह सको हो तो जांच करा लेनी है ताकि उन्हीं संभावना है पर कम रह जावे। इन्हीं तरीका विटामिन डी और कैल्शियम रो टेस्ट भी टाइम टाइम माते करा लेना चाहिए। आजकल विटामिन 12 री कमी है बहुत ज्यादा महिलाओं में डेरी है तो इन सुकाई है कि विटामिन बी 12 रो एक टेस्ट आया करे वो कराना है ताकि आपने इन्हीं कमियों जो को है वो छुटकारो मिल सके। जो अगर आपने थकान आ रही है या नशा में आप खिंचाव महसूस कर रहे हो या जकड़न दे रही है तो जरूर आ समस्या रह सके तो आप जाओ और टेस्ट कराओ।
0: और यूं ही एक जो सामान्य समस्या है लगभग हर महिला ने या एक उम्र तक बाद में एक उम्र के बाद में बच्चों ने भी रिया करे वो है एनीमिया री तकलीफ। तो अगर एनीमिया री तकलीफ आपने पता करनी है तो आप आयरन टेस्ट करवा सको। तो ध्यान पड़े कि खून जो है या हीमोग्लोबिन री जो मात्रा है शरीर में वह कितनी है। इन्हें अलावा बोन डेंसिटी टेस्ट लीवर और किडनी री जांच सोनोग्राफी स्टूल टेस्ट कंप्लीट यूरिन टेस्ट ईसीजी एक्सरे एडिक कई सारी चीजें हैं जो एक उम्र के बाद में समय समय पर जांच करनी जरूरी है ताकि आने वाले बड़े खतरे ने आप टाल सको और आप परिवार संग एक बढ़िया सो खुशनुमा सो जीवन आप जी सको।
1: बिल्कुल।

0: मंजू जी, पहले के टाइम में जब भी कोई नवो दिन आतो या कोई बार त्योहार होतो या छोटो मोटो कहीं भी काम होतो नहीं घर परिवार मायने, तो आंगनो लीपने री ऊपर रीत देखता हर जगह। आज भी है तो घनी जगह यूं है कि जब नयो दिन आवे नहीं तो भले एक छोटी सी जगह, एक छोटो सो चौक ही एक तरफ राख, जो लीपन त्यार राखे उन माते आपने जो मानना है या लीपना है वह कर करान। एक छोटो दिवाली रमायने हाल भी करे गाँव और मायने एक छोटी सी जगह अड़ी राखे जटे ताजो लीप प्रोन पचे एक दियो जरूर रख्या करे।
1: बिल्कुल
0: तो आ है अपनी संस्कृति और इनी एक कला ने मेल खावती एक और संस्कृति या कला आपे केमो लिपन आर्ट या लिपन कला। लिपन नामो ही अपन ने ठा पड़े है के लीपने हूँ इन कलारी शुरुआत हुई और ज्यो ज्यो दिन आगे बीतता गया ज्यो इन कला रमायने और निखार आयो। भारत में गुजरात राज्य रे कच्छ क्षेत्र रमायने एक पारंपरिक भित्ति चित्र है मड मिरर जिन्हें कहवे या लिपण कला जिन्हें कहवे। इर मायने दीवार माथे माटी और गोंद्र मिश्रण सुंदर आकृतियां उकेरिया करे और उन मायने छोटा छोटा कांच आपला जोड़िया करे और आ कला जो है घर की सुंदरता ने तो बढ़ावे ही है साथ साथ याने ठंडा भी रखने रो काम करे।
1: बिल्कुल आपकी जो सही बात है ममता जी, ठंडा रिया करे। अपन अटी अगर आप पश्चिमी राजस्थान समय जावा तो आज भी झोंपड़ा देखने मिले और आनी दीवारा वगैरह लिपियोड़ी है तो उस घर ने ठंडो तो रखी है। साथ ही देखो कि आजकल जो कोई कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है आ बढ़ रही है, इन रोकन रो काम करिया करे है। तो इन गुजरात रो लिपन आर्ट तो फेमस है ही है, आप सब जाना। हाँ इनी सामग्री जब आप इन लिपा तो कहीं कहीं काम में लिया करा तो चिकनी माटी और गोबर रह साथ है गोंद डाल और इन इन्हें लिपिया करे है। और आज अगर देखा तो कई आधुनिकता रे दौड़ में एक्रेलिक मिट्टी आएगी है जो तो इन हाथ फेविकोल मिलाए और इन करी जो है तो इनमें कई डिजाइन बने जो मोर रो डिजाइन है, ऊंट रो डिजाइन है, आम रो पेड़ है, फूल है। तो स्थानीय लोक जीवन से जुड़िया जितना भी चित्र है वे इमा आप बनाया करा। हाँ और जिसका कांचरा छोटा छोटा टुकड़ा है या दर्पण कह लो जो गोल है, त्रिकोण है या चौकोर है, आने माटी में झड़ना रो काम करे करा ताकि दिखण में भी इतनी फूट रही दिखे है।
0: एक काम और कर सके आ चीज कि पहले टाइम में लाइटों तो हती कोनी, तो अगर एक दीवलो जगह हो तो ही पूरे घर में रोशनी रोशनी हो जाती।
1: बिल्कुल। और इन्हों देखो आप सांस्कृतिक में तो देखा तो मुख्य रूपों जो कि कच्छरी जो कि ग्रामीण महिला वही रेबारी समुदायों जुड़ियोड़ी बे ओ काम ज्यादातर करती ही
0: बिल्कुल
1: और आज भी करिया करे बे ओ काम। और आज तो इन्हें विश्व स्तर माते पहचान मिली है। तो जुबली बहन और मीरा बहन जड़ी कई नामी कलाकार आज भी इन काम ने बचाए रखियो है और बचाए रखना में काफी मदद कर रही है।
0: और इन आर्ट एक और बात बताऊं कि पहले टाइम में तो घरों मातेन आंगणा रमायने होती, अबे तो आप वॉल आर्ट रूप में इनो काम बढ़ रही है कि आप दीवारों माते भीतों माते भी यहाँ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो है वे बना आप फ्रेम करन लगा सको तो सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाया करे कर रही।
1: बिल्कुल।

0: ग्रामीण महिलाएं अभी सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम गणगौर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक

प्रभावी भूमिका निभा रही है श्री मोदी ने विज्ञान अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है उन्होंने कहा कि देश की माताएं बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी

0: का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था।

0: ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजी 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा।

0: जीता। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज़।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना और रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुने रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई बाहों में,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहंदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी।

0: देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: आज जी, मैं चांदनी जी बोल रही हूँ।
0: चांदनी जी
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है।

0: चांदनी जी, क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं? गृहिणी हैं? क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी. मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी. क्या बात है.
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ. मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है.
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी? अच्छा, मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी, मेरे 3 बच्चे हैं मैम.
0: अच्छा,
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है.
0: अच्छा, क्या बात है.
1: जी, मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है. दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक टेंट में है बेटा.
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं. तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो. हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा. हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे. तो खाकी चावल कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी चावल आते थे ना पहले, खाकी कवर
0: जी,
1: उसको चढ़ाते थे. और उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे. उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए. वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए. तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे. और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है.
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी. आज बताइए, आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान. गाने के बोल है मैं ना भूलूंगी.
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत.

0: अली
1: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
0: हम धनोजय सवाल बोल रहे हैं, झांसी से।
1: झांसी से धनोजय सवाल। धनोजय, मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
0: हमारे 3 बच्चे हैं
1: जी। तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
0: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
1: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे?
0: हम ही करते थे मैडम, सब हम करते थे।
1: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है, और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
0: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है जब किसी से प्यार होता है।
1: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए,
0: आप ही की बिन
1: जी, तो तुम बिन फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ
0: जी।
1: बताइए
0: जी, हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण रह नहीं हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन

0: मेरा प्रिय विषय है।
1: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
1: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगे अपनी सभी सखियों के लिए?
0: हाँ
1: जी
0: मैं
1: सुनाइए।
0: अपनी रचना सुनाती हूँ।

0: सुनाइए
1: कथे रचना सुनाती हूँ
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई, जब से तुमको ना खुदा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है,
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है, तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैलाश सुतार बात कर रही हूँ बीड़ जिले से।
0: बीड़ जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैं कुछ हूँ और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ टाटी चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी,
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल। तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं। स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी का एक अपना अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना।
1: बहुत बहुत बहुत
0: जी, तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है तो काम भी कर रहे थे यहाँ
0: जी
1: पे।
0: जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई नहीं तो ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल। और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे करते थे?
1: हाँ, ये शाम भी करते थे ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर सकते हम उसको खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना।
1: बहुत बहुत मैम
0: जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। वैजयंती जी, आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए आप सुनना चाहती हैं?
1: बहुत पसंद है, यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।
2: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
3: हेलो सहेली
2: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
3: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
2: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
3: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
2: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
3: जी बिल्कुल।
2: जी तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
3: जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
2: क्या बात है।
3: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
2: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप? और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
3: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है, बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग

0: लेटर्स लिखती थी
1: जी,
0: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
1: जी, हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
0: जी जी, मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
0: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
1: जी,
0: इसका शीर्षक है आशियाना।
1: आशियाना शीर्षक।
0: जी, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूला, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमा पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगले कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए, आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो मैडम
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजरे बोल रही हूँ मैडम, मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में
0: जी,
1: गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं
0: जी। तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की।
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम
1: पापड़
0: करती हैं?
1: बनाते ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते।
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के, जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश, ये गाना सुनना है
0: बिल्कुल,
1: अग्निपथ 2 का।
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से।
0: कोट

0: ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहां पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी
1: वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में
1: हाँ जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी
1: हाँ
0: आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह।
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई हूँ।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पर, नए शहर में है? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है, या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: इन। नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है
0: बहुत अच्छी बात
1: इसलिए।
0: है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
0: जी
1: होगा,
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: इसीलिए जड़ से उपचार करने के हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे, वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर वो
0: जी
1: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा, अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी सिकंदरा से, तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है और बालाघाट है।
0: जी बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी है?
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ जी जी
0: जी। तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं
0: जी।
1: देवर के, एक है, एक मेरा है। हाँ।
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं नहीं छोटे दीदी, एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं पूरा दिन, तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ
0: जी,
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुना था, मेरे घर आई है नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही, पालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना था ताराना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियो, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की, और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288।

0: मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 022-2867-0288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
0: नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
1: तुम पहले नाश्ता करो।
0: नहीं।
1: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
0: पक्का ना?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूमकर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे।
1: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
0: क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
1: पर बताना तो पड़ेगा ना?
0: पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू।
1: प्रेम।
0: ठंडी आए भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत।
0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
1: हाँ पर अंजलि की बात और है,
0: तुम मेरी बात तो करवाओ।
1: प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
0: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
1: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा।
0: पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोचकर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही

देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी।

कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें? मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी? अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो, क्या मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा? बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ, मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ, मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जमा दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहाँ अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली। अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नजर अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना में हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा

लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही, लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो, प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। नहीं तो खूबसूरत हो तुम, वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक

मैं लिखा था किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था, बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ, मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया, फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदा बांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

0: अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा?
1: मुझे तो ठीक ठीक ही लगा,
0: शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली।
1: बस ठीक?
0: हाँ भाई ठीक
1: बस।
0: अरे यार, तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या?
1: हाँ ये तो है,
0: तू पहली बार मिली है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे, लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो?
1: ठीक हूँ।
0: परेशान हो क्या?
1: हाँ थोड़ा परेशान हूँ।
0: बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा।
1: नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी।
0: अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उसे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी, लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहाँ अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

0: रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे?
1: मुझे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ।
0: फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई, शिवानी ने धमकाया।
1: नहीं आई बस।
0: अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे।
1: क्या?
0: मिलकर बताती हूँ।
1: अरे बताना।
0: नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा।
1: पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी।
0: अरविंद के बारे में है।
1: अरविंद?
0: हाँ,
1: क्या हुआ अरविंद को?
0: कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली।
1: अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में,
0: आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी।
1: मैं आऊँ यूनिवर्सिटी?
0: नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था, हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा,
1: तुम मेरा इंतजार मत किया करो।
0: अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आज भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के

साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं, जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ, मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरकवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपका दिन शानदार जा रहा होगा। आखिर आज फ्राइडे है, यानी वो दिन जो दिल थोड़ा हल्का महसूस कराता है और चेहरे पे मुस्कान अपने आप ले आता है ना? तो जल्दी कीजिए, चाय की चुस्कियाँ हो या फिर सफ़र का साथ, जुड़े रहिए हम दोनों के साथ, यानी कि मैं स्वस्ति और मेरे साथ है।
1: और दोस्तों, मैं आयुषी। तो दोस्तों, पूरे दिन की थकान के बाद में ये जो सुकून वाली शाम आई है, इसका आपके साथ साथ हमें भी इंतज़ार था। हमें इंतज़ार इसलिए था क्योंकि हमें आपसे बातें करने का मौका मिलता है। फिलहाल इस मौके को जाने नहीं देते हैं और आपको भी एक प्यारा सा मौका देते हैं, हम इतना प्यारा सा आने वाला म्यूजिकल ट्रैक सुनने का। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे आज के अगले म्यूजिकल सॉन्ग की ओर।

0: दोस्तों कहते हैं कि कुछ दिनों का इंतजार ना हमें पूरे हफ्ते रहता है और उनमें सबसे खास दिन होता है फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे का मतलब है बस थोड़ा और फिर वीकेंड। कितना सुनने में अच्छा लग रहा है ये।
1: बिल्कुल अच्छा तो लगता ही है स्वस्ति। फ्राइडे आते ही लोगों के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। ऑफिस में काम वही होता है, कॉलेज की क्लास भी वही होती है, लेकिन मन में एक ही बात चल रही होती है कि कल छुट्टी है।
0: और कुछ लोग तो फ्राइडे शाम से ही वीकेंड के सपने देखने लगते हैं। कोई घूमने का प्लान बनाता है, कोई दोस्तों से मिलने का, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का, और कुछ लोग बस ये सोच रहे होते हैं कि कल अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा।
1: सच में, लेकिन वीकेंड का सबसे बड़ा सुख ये भी तो होता है कि सुबह उठकर घड़ी नहीं देखनी पड़ती। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन नींद भी जल्दी खुल जाती है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने आयुषी। वैसे दोस्तों आज हम आपसे ना एक मजेदार सवाल करने वाले हैं। अगर आपको पूरे हफ्ते को एक फिल्म का नाम देना हो तो उसका नाम क्या होगा?
1: अगर मुझसे पूछोगी यही सवाल तो मैं उस फिल्म का नाम बताऊंगी भागम भाग।
0: और अगर मेरी बात करो तो मैं तो बोलूंगी ऑल इज वेल, क्योंकि चाहे कितना भी काम हो फ्राइडे आते आते सब अच्छे लगने लगता है।
1: लेकिन दोस्तों जिंदगी में हमेशा कोई बड़ा कारण नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। कभी कभी एक अच्छी चाय, दोस्तों की हंसी, पसंदीदा गाना और एक आरामदायक शाम ही काफी होती है।
0: बिल्कुल, और आज यही कोशिश करेंगे फ्राइडे इवनिंग में कि यही कोशिश करेंगे आप सभी को हंसाएं, मुस्कुराएं और मुस्कान से भर जाए आपका दिन। अगर आपका दिन थोड़ा थकाने वाला रहा तो अब रिलैक्स हो जाइए।
1: क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके लिए हैं। कुछ प्यारी बातें होंगी, कुछ मजेदार किस्से होंगे और ढेर सारे प्यारे प्यारा म्यूजिक भी होगा, है ना? तो स्वस्ति क्या बोलती हो?
0: बिल्कुल। वैसे आयुषी तुमको क्या लगता है वीकेंड शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है?
1: मेरे हिसाब से तो फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और अपने पसंदीदा लोगों के साथ समय बिताओ। जो काम पूरे हफ्ते नहीं कर पाए उनके बारे में वीकेंड पर भी मत सोचो और वीकेंड को एंजॉय करो।
0: बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो वीकेंड का असली मजा है अच्छे गाने सुनो, चिल करो, रिलैक्स करो। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं हमारी अगला म्यूजिकल ट्रैक।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: स्वस्ति, तुमने ये सोचा है कि कभी कभी कुछ जो सॉन्ग्स होते हैं जो बिना वजह मूड जो है हमारा अच्छा कर देते हैं, कभी नोटिस किया है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनका कोई खास रीजन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बजते हैं हमारा जो मूड है वो ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। जैसे कि कभी सड़क पर चलते हुए, कभी बारिश में, कभी हेडफोन्स लगा कर लेट नाइट, और कभी बस यूं ही रैंडम शफल पर, है ना?
1: बिल्कुल। और म्यूजिक ना शायद दुनिया की एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे समझने के लिए वर्ड्स की ना बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। एक अच्छा गाना और डांस करा बिल्कुल मजा ही आ जाता है। एक पुराना गाना या पुरानी यादें ले आता है।
0: बिल्कुल, कई बार हम सैड नहीं होते, बस टायर्ड होते, थके हुए होते हैं, और तभी एक फेवरेट सॉन्ग सडनली थेरेपी बन जाता है। मतलब सुनते ही ऐसा लगता है कि सारी थकान जो है वो दूर हो चुकी है। वैसे ही कुछ लोगों के लिए जो ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक म्यूजिक होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं उनको। कुछ लोगों को इंडी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तो कुछ के लिए लाउड पंजाबी सॉन्ग्स, वो बीट्स बज जाए कि वो धमाकेदार शानदार अपनी जगह से उठ करके नाचने ही लग जाते हैं। लेकिन फीलिंग जो है किसी में भी सेम नहीं होती है ना यार, ये सॉन्ग सुनकर लग रहा है ऐसा हम फील करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आज हमारा जो अगला आने वाला गाना है वो अगर हम सुनाएं जिसे सुन करके तुम्हें कैसा लगता है वो तो मुझे बताना, और हमारे दोस्तों से भी अब मैं पूछती हूँ आपको कैसा लगता है ये आप भी सुनिएगा और सोचिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले म्यूजिकल और धमाकेदार सॉन्ग की तरफ।

हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जहां आप बने हुए मेरे साथ यानी कि आरजे स्वस्ति के साथ। कहते हैं कि जब जुनून मैदान पे उतरता है तो इतिहास तो बनता ही है। जब सपने सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि हौसलों में बस जाते हैं, तब हर चुनौती एक नए अवसर में बदल जाती है। और जब प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास एक साथ मैदान पर कदम रखते हैं ना, तो सिर्फ एक मैच नहीं खेले जाते बल्कि प्रेरणा की नई कहानियां लिखी जाती है। आज बात ऐसे ही एक मंच की है, जहां हर रन के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी है, हर विकेट के पीछे संघर्ष और एक कहानी है, और हर जीत के पीछे पूरी देश की उम्मीदें जुड़ी हुई है। यह मंच है उन खिलाड़ियों का, जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि सपने की कोई सीमा नहीं है और सफलता किसी एक पहचान की मोहताज नहीं है। आज दुनिया की बेहतरीन महिला क्रिकेट खिलाड़ियां एक बार फिर से मैदान पर उतर रही हैं, अपने देश का गौरव बढ़ाने, नई कीर्तिमान स्थापित करने और करोड़ों लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो तैयार हो जाइए रोमांचक, जोश और उत्साह से यादगार पलों से भरे इस शानदार सफर के लिए, क्योंकि आज से शुरू हो चुका है विमेंस T20 वर्ल्ड कप, और इसका जादू ना एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों के लिए दिल को छूने वाला है। भारतीय टीम भी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतर रही है। हम सभी की निगाहें होंगी कैप्टन हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंदना की और जो युवा सितारे हैं उनके ऊपर। भारत का पहला मुकाबला होने वाला है रविवार को यानी कि 14 जून को। टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा रोमांचक मैच होने वाला है, क्योंकि यह है भारत बनाम पाकिस्तान का मैच। तो तैयार हो जाइए चौको छक्को।

0: दोस्तों, इस शानदार म्यूजिकल सॉन्ग के बाद में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम युगवाणी में, जहां मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आयुषी और मेरे आज साथ है,
1: यानी कि मैं आपकी दोस्त स्वस्ति। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो लगभग हर इंसान की जिंदगी का ना हिस्सा बन चुका है, फोन, मोबाइल या फिर सोशल मीडिया।
0: अरे भाई, क्या टॉपिक है। मतलब स्वस्ति, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि मोबाइल फायदा है या नुकसान, तो तुम क्या कहोगी?
1: मैं तो यही कहूँगी कि मोबाइल एक टूल है। फायदा या नुकसान इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
0: बात तो सही है, लेकिन ये भी है ना कि आज मोबाइल की वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से कुछ ही सेकंड्स में बात भी कर सकते हैं, ये भी फायदा हुआ।
1: लेकिन सिर्फ बात ही नहीं, पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, बैंकिंग, शॉपिंग और जरूरी जानकारी भी मोबाइल से बात
0: बिल्कुल
1: कर सकते
0: साथ
1: हैं।
0: ही सोशल मीडिया ने कई लोगों को अपनी कला और टैलेंट दिखाने का भी तो प्लेटफॉर्म दिया है।
1: लेकिन आयुषी, कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जितने फायदे और उतने ही नुकसान भी है।
0: बिल्कुल, जैसे कि स्क्रीन टाइम का बढ़ना, कई लोग घंटों तक रील्स और वीडियोस देखते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि वक्त कब निकल गया।
1: और इसका सीधा असर हमारी नींद, पढ़ाई और मेंटल

0: हेल्थ पे पड़ता है। कभी कभी लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से खुश ही नहीं रहते, कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो इतने खुश है, वो ऐसा कर रहे, वो वैसा कर रहे, और हम खुश ही नहीं है।
1: क्योंकि ऐसे इसीलिए ना कि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग ना अपनी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ अच्छे पल ही दिखाते हैं, तो कंपैरिजन तो आएगा ही।
0: और एक और दिक्कत है, वो है हमारी सबसे बड़ी दिक्कत, जो कि है फेक न्यूज़। हर चीज़ जो इंटरनेट पे दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो।
1: तो ऐसे में क्या समझती है, हमें सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरत है बैलेंस की। टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए बनी है, हम उस पर हावी होने के लिए नहीं है।
1: मतलब मोबाइल को यूज़ करिए, लेकिन मोबाइल को अपनी ज़िंदगी को यूज़ मत करने दीजिए। मतलब ओवरऑल यही बात हुई कि कंट्रोल हमें खुद पर रखना होगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मोबाइल के वजह से और सोशल मीडिया को यूज़ करने के वजह से आ रही है, लेकिन इसका एक ही सल्यूशन है, वो है सेल्फ कंट्रोल, कि कैसे आप अपना जो टाइम है वो मोबाइल में अगर स्पेंड कर रहे हैं तो कैसे उसे कंट्रोल करें। वो एक ही तरीका है जो आपका वक्त जो है वो बचा सकता है।
0: बिल्कुल। और ना, मेरे को लगता है हमको जितना फ़ायदा है ना, वही मोबाइल में यूज़ करना चाहिए, नुकसान नहीं देखने चाहिए हम, क्योंकि ऐसा नहीं, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन हम जितना उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ना, उतना ही सही रहता है। अगर हम उसको नेगेटिव यूज़ नहीं करें, जो लोग आजकल ये साइबर बुलिंग वगैरह ये सब हो रही है, वो सब ना हो, तो मोबाइल के बहुत फ़ायदे हैं।
1: फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि सबका अपना नज़रिया होता है, सबके अपने काम हैं, उस हिसाब से किसी को मोबाइल काम में भी आ रहा है तो किसी के लिए जो है उनका टाइम वेस्ट भी हो रहा है। तो वो आप देखिए कि आप किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल करके अपनी इन मोबाइल से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकाल सके।
0: अभी ना हमारे श्रोताओं के लिए एक ही सोल्यूशन है, वो है अच्छे अच्छे गाने और बहुत सारा मस्ती और म्यूजिक। तो चलिए फिर सफर में आगे बढ़ते और आपको सुनवाते हमारी अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: दोस्तों शामें अक्सर अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती है, कुछ मुस्कुराहटें, कुछ यादें और कुछ ऐसी बातें जो हम किसी से कह नहीं पाते। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है तो मन भी जैसे कुछ देर के लिए ठहर जाता है। ऐसे ही पलों में कभी कोई पुरानी याद दस्तक देती है, कभी किसी अपने की कमी महसूस होती है और कभी किसी बीते हुए लम्हे की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। ज़िंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ते हैं, भले ही उनका अंत हमें याद हो। कुछ लोग, कुछ बातें और कुछ मुलाकातें वक्त के साथ पीछे छूट तो जाती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती हैं। वैसे ही मैंने एक कहानी सुनी थी जो कि आज भी मुझे याद है, तो बस वही कहानी मैं आपके कानों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि वो कौन सी कहानी है।
1: शहर के बीचों बीच एक छोटा सा रेडियो स्टेशन था जहाँ काम करता था आरव। आरव की आवाज बहुत खास थी। ये सिर्फ बोलता नहीं, महसूस कराता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जो आदमी हजारों लोगों को हंसा सकता था, वो खुद अंदर से बिल्कुल खाली था। हर रात 9 बजे उसका शो आता था, दिल की बातें। लोग कॉल करते, अपनी कहानियां बताते और आरव उन्हें सलाह देता, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शो खत्म होता, स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता और आरव की अपनी खामोशी लौट आती। एक रात एक कॉल आया, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने कहा, बेटा मैं रोज तुम्हारा शो सुनती हूँ। आरव मुस्कुराया, थैंक यू आंटी, बताइए क्या बात है। महिला बोली, मेरे पास कोई नहीं है, बेटी बेटी सब अपनी जिंदगी में व्यस्त है, मैं बस तुम्हारी आवाज सुनकर सो जाती हूँ। आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आंटी आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। महिला बोली, तुम हो इसलिए तो मैं ठीक हूँ। उस रात शो खत्म हुआ, लेकिन आरव पहली बार चुप नहीं था। वो सोच रहा था, मेरी आवाज किसी की जिंदगी का सहारा है। अगले दिन से आरव ने अपना शो बदल दिया। अब वो सिर्फ सलाह नहीं देता था, वो लोगों की बातें सच में सुनता था, उनके नाम याद रखता, उनकी कहानियां याद रखता। कुछ महीनों बाद वही बुजुर्ग महिला फिर कॉल पर आई। उन्होंने कहा,

बेटा अब मैं अकेली नहीं लगती। आरव की आंखें भर आई। उसने पूछा, क्यों आंटी? महिला बोली, क्योंकि अब मुझे लगता है कोई मेरी आवाज भी सुनता है। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया, वो सिर्फ बोल नहीं रहा, वो जुड़ रहा है। कुछ समय बाद एक दिन वो महिला कॉल पर नहीं आई। एक हफ्ता, दो हफ्ता, कोई खबर नहीं। आरव को अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। फिर एक दिन स्टेशन पर एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, बेटा आरव, शायद अब मैं तुम्हारा शो नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे मेरी आखिरी दिनों में अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। तुम सिर्फ रेडियो जॉकी नहीं हो, तुम किसी की जिंदगी की आवाज भी हो। आरव लंबे समय तक उस चिट्ठी को देखता रहा। उस दिन उसने समझा, किसी की जिंदगी बदलने के लिए बड़े काम नहीं, बस सच्चे दिल से सुनी गई एक आवाज भी काफी होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आवाज जो लौट आई, कि कभी कभी किसी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है बस सुने जाने की। आपकी छोटी सी मौजूदगी भी किसी की बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सुनना भी एक कला है।

0: दोस्तों, इस कहानी से अभी अभी हमने सीखा कि हर आवाज को जवाब नहीं चाहिए होता है। कुछ आवाजों को बस एक सुनने वाला चाहिए होता है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी बात सुने, हमारे मन की उलझनों को महसूस करे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जैसे हमें सुने जाने की ज़रूरत है, वैसे ही दूसरों को भी होती है। कई बार लोगों को सलाह की नहीं, बस किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो बिना टोके, बिना जज किए उनकी बात को सुन ले। एक ऐसा श्रोता होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अच्छा वक्ता होना होता है। तो अभी आपने कहानी सुनी जिसका शीर्षक था आवाज़ जो लौट आई।
1: और अब हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो टॉपिक बहुत खास है और बहुत हम सबके लिए बहुत ज़रूरी भी है। वो टॉपिक है एक ऐसी सलाह जिसने हम सबकी ज़िंदगी बदल दी।
0: स्वस्ति, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कई बार एक छोटी सी बात, एक छोटी सी सलाह इतना बड़ा असर कर जाती है कि पूरी सोच ही बदल जाती है हमारी।
1: बिल्कुल, लेकिन आयुषी, कभी कभी वो सलाह किसी किताब से नहीं बल्कि किसी अपने से दो बात करने से मिलती है। वैसे आयुषी, तुम्हें कोई सलाह याद है जो कभी किसी ने दी और तुम्हारे बहुत काम आई हो?
0: हाँ स्वस्ति, मुझे मेरी मम्मी ने एक बार एक कुछ कहा था, वो मुझे याद है कि हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। पहले मैं हर बात पर अपनी सफाई देने की कोशिश करती थी, फिर समझ आया कि कुछ लोगों को जवाब नहीं सिर्फ वक्त देना चाहिए।
1: वाह, बहुत खूबसूरत बात है। मुझे भी एक सलाह याद है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर मेहनत करो, जो नहीं उसकी चिंता ही मत करो।
0: और ये सलाह फॉलो करना शायद सबसे मुश्किल भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, लेकिन जब ये समझ आ जाए तो ज़िंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। हम अक्सर उन बातों की फिक्र करते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, जो हमारे हाथ में ही नहीं है बदलना।
0: सही कहा, और मुझे लगता है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो उसने कहीं सुनी हो और फिर कभी भूल ही ना हो।
1: वैसे आयुषी, मेरे पास एक और सलाह है जो मुझे बहुत पसंद है। दूसरों से नहीं, खुद के कल से बेहतर बनने की कोशिश करो।
0: अरे वाह, क्या बात है। लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है ना, क्योंकि कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सफ़र हमेशा चल सकता है।
1: अगर आपको भी ज़िंदगी में कोई ऐसी सलाह मिली है जिसने आपकी सोच या ज़िंदगी बदल दी है, तो प्लीज़ उसे अपने चाहने वाले लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि क्या पता जैसे आपकी ज़िंदगी बदली वैसे उनकी भी बदल जाए।
0: बिल्कुल, हो सकता है कि आपकी वो एक बात किसी और के लिए भी रास्ता दिखा दे। कोई अगर परेशानी में हो तो आपकी दी हुई वो सलाह उसे याद रह जाए और तब वो उसके काम आ जाए, है ना। तो आपको अगर अपने बड़े लोगों से ऐसी कोई सलाह मिले तो अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके उसके बारे में भी चर्चा करें, ज़रूर करें। इससे क्या होगा ना, आपको भी जब मुसीबत में वो बात याद आएगी, साथ ही आपके उस दोस्त को भी। फिलहाल के लिए स्वस्ति, मेरी एक सलाह है, वो तुम मान लो।
1: बिल्कुल,
0: वो ये है कि प्लीज एक गाना सुना दो।
1: चलिए फिर आप सभी को हम सुनवाते हैं हमारा ये अगला गाना।

0: दोस्तों कहते हैं कि मंडे से फ्राइडे तक हम कैलेंडर देखते हैं और जैसे ही सैटरडे संडे आता है ना हम घड़ी या कैलेंडर सब कुछ देखना ही भूल जाते हैं।
1: क्योंकि वीकेंड का मतलब ही है नो अलार्म नो हरी और ओनली चिल।
0: वैसे आयुषी वीकेंड में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सुबह जल्दी उठते हैं पूरा दिन प्लान करते हैं
1: और दूसरे वो जो दोपहर में उठकर कहते हैं अरे आधा वीकेंड तो निकल गया।
0: दोस्तों आप कौन से अर्ली बर्ड या वीकेंड स्लीपर्स?
1: और अगर आप अभी चाय कॉफी या अपनी पसंदीदा स्नैक के साथ में आराम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी शाम और भी खास होने वाली है।
0: क्योंकि आज हम जो बात करेंगे ना वो करेंगे हम छोटी छोटी चीजों की जो वीकेंड पे करते हैं या और कैसे खास बना सकते हैं।
1: वैसे तो अभी तक हमने ढेर सारी बातें की है स्वस्ती है ना, लेकिन अभी भी अगर तुम्हारे मन में एक दो बातें और रह गई है जिसका तुम जिक्र कर रही हो तो वो भी हम कर लेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद करेंगे। कैसा रहा है ना, तो क्यों ना अभी अगर हम आने वाला हमारा जो प्यारा सा सॉन्ग है वो सुन ले तो मजा आ जाएगा।

0: दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर दिन हम वर्ड ऑफ द डे लाते हैं, आज तो हम लाए नहीं अभी तक, लेकिन अब लेकर के आ गए हैं। और हर बार हम कोई ना कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड उठा कर लाते हैं जिसका मतलब ना आपको पता होता है और हमने भी पहली बार ही सुना होता है, लेकिन आज हम ऐसा प्यारा सा वर्ड लेकर आए हैं ना, इतना सुंदर, इतना अच्छा और साथ ही उतना ही ईजी वर्ड लेकर आए हैं। तो आज का हमारा जो वर्ड ऑफ द डे है वो है बैलेंस।
1: बैलेंस यानी संतुलन। जीवन में हर चीज़ का सही तालमेल बना के रखना, यही तो बैलेंस है। जितना सुनने में आसान है उतना ही जिंदगी में इसका बहुत महत्व है।
0: तो दोस्तों, इसका मीनिंग तो मुझे लगता है हम सबको पता है, बैलेंस, जो हम डेली अपनी लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते भी हैं। लेकिन यहाँ हम आपको वर्ड ऑफ द इसका मीनिंग ही नहीं ये भी बताने आए हैं कि यही जो वर्ड है ये हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी भी है। जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर ज़िंदगी की एक साइकिल की तरह है, तो बैलेंस भी वही चीज़ है जो हमें गिरने नहीं देती। तो मतलब समझ रहे हो, ये वर्ड सिर्फ वर्ड नहीं है, ये साथ में एक ऐसा टिप है जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए।
1: आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सब कुछ पाने के लिए कोशिश करें कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन कभी कभी खुद के लिए समय निकाल कर भूल जाते हैं। बैलेंस हमें यही याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ एक मंजिल का नाम नहीं है, सफर का नाम है। हमें खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए थोड़ा।
0: बिल्कुल स्वस्ति, तुम्हारी इस बात से मुझे एक इंग्लिश कोट है जो मैंने कई बार पढ़ा है और कई जगह पर इसके पोस्टर भी लगे हुए देखे हैं मैंने लाइब्रेरीज वगैरह में, तो मैं वो बताना चाहूंगी, जो कि है, बैलेंस इज नॉट अबाउट हैविंग टाइम फॉर एवरीथिंग, इट्स

0: अबाउट मेकिंग टाइम फॉर वॉट ट्रूली मैटर्स, यानी कि जो बैलेंस है वो इसीलिए नहीं है कि हमें हर जगह पे हमें जो टाइम मिल रहा है उसके लिए, बल्कि ये है कि हम जो सच में हमारे लिए मायने रखता है उसको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में साथ लेकर आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, याद रखिए जिंदगी तब तक सबसे खूबसूरत लगती है जब तक उसमें बैलेंस होता है।
0: तो दोस्तों आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी ज़िंदगी में काम, परिवार, दोस्त और खुद के लिए समय समय का सही बैलेंस है या नहीं? अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे बदलावों से भी बड़ा संतुलन बनाया जा सकता है। तो याद रखिए ज़िंदगी तब सबसे खूबसूरत लगती है जब उसमें होता है बैलेंस। तो हम वर्ड ऑफ द डे जो है बैलेंस लेकर आए तो थे, लेकिन ये जो वर्ड है ये डे का वर्ड नहीं है बल्कि ये वर्ड ऑफ द लाइफ हो गया है। तो वर्ड जो बैलेंस है हम सब ट्राई करते हैं कि हम मेनटेन रखें, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि हम सब कोशिश कर रहे हैं और एक दिन बैलेंस कर भी पाएंगे।
1: और ये प्रोग्राम भी ना तभी बैलेंस हो पाएगा जब हमारी बातों के साथ साथ मजेदार गाने भी हो। तो
0: बिल्कुल
1: चलिए फिर सुनवाते अगला गाना।

0: दोस्तों, आज हम ढेर सारी हमने बातें की, साथ ही हमने सुनी एक प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक था आवाज जो लौट आई, है ना, जिसमें हमने ये जाना कि हम कई बार लोगों को सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना हम सोचते हैं कि हमें बोलना चाहिए, है ना। इसी के साथ और भी कई सारी बातें की। अभी हमने आपके सामने एक वर्ड ला के रखा जो कि था बैलेंस, जिसका मीनिंग आपको भी पता था और हमें भी पता था, बस हमने आपको ये बताया कि किस तरह आप इसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। फिलहाल अब समय हो चुका है कि आप हमें दे इजाजत जाने की, है ना स्वस्ति।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम युववाणी, हम दो रेडियो बडीज जुड़े थे आपके साथ, मेरा नाम है आयुषी और आज मेरे साथ थी,
1: यानी कि मैं आपकी दोस्त। अब हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, कल शाम ठीक 5 बजे आपके साथ होगी कार्यक्रम युववाणी।
0: नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।

सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाएं।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम जयमाला, बस कुछ ही पलों में।

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। मुकेश की आवाज है, फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: मुकेश की आवाज थी और फिल्म का नाम था जिस देश में गंगा बहती है। और आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना, ये गीत। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर है कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

भारतीय सेना। अभी आप सुन रहे थे ये गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर का था। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम याराना, गीत रचना अनजान की और संगीत राजेश रोशन का।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: जयमाला कार्यक्रम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजें। फिल्म का नाम है दो प्रेमी। शब्दकार आनंद बख्शी हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
3: पायलिया छनकी के ना
4: छनकी छनकी

0: जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है

0: रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला।

तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कहना।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: शिवहरी के संगीत निर्देशन में ये था जावेद अख्तर का लिखा दो गाना। अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाजें थीं। फिल्म का नाम था सिलसिला।
1: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
2: क्यों?
1: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज है। फिल्म का नाम जमाने को दिखाना है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम इंद्रधनुष, विविध भारती मुंबई से।
1: इंद्रधनुष के तहत आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता।

तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो तुम मौजूद थे। आँख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, दर्द की लौ की तरह, प्यार की खुशबू की तरह, बेवफा वादों की दिलदारी का अंदाज लिए। तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो तुम आए थे रात के सीने में मेहताब की खंजर की तरह। अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में अली सरदार जाफरी का ये कलाम। और आइए अब सुनते हैं छाया गांगुली की आवाज़, कलाम अहमद वसी का, संगीत मधुरानी का है।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को अभी आपने सुना कलाम इब्राहिम अश्क का था। और अब इंद्रधनुष के तहत कार्यक्रम गुलदस्ता संपन्न हुआ।

0: हवामहल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटिका सफेदे के पेड़। लेखक हैं रेवती शरण शर्मा और निर्देशक दीनानाथ।
1: कौन?
2: मेम साहब मैं।
1: कौन? अब्दुल करीम, तुम चाय देकर नहीं आए?
2: हुजूर मेम साहब मैं क्या करूं, साहब कहते हैं पहले उन्हें दे आओ, आप कहती हैं उन्हें दे आओ, मेरी तो कोई सुनता नहीं।
1: तुम्हारी?
2: जी।

0: मैंने साहब से कहा आप ही मान जाइए, और अगर नहीं मानते तो मैं डबल चाय ले आता हूँ, आप भी इधर ही पी लीजिएगा। लेकिन वो मानते ही नहीं।
1: क्या कहते हैं?
0: कहते हैं अब्दुल करीम, मैंने कल उनके साथ इतनी गुस्ताखी की कि आज किस मुंह से चाय पीने उनके पास जाऊं।
1: तुमने क्या कहा?
0: मैं क्या कहता हुजूर मेम साहब, जी में आया कि कह दूं मेम साहब इतनी छोटी तबीयत के नहीं है, पर हुजूर डर गया कि कहीं आप।
1: इसमें डरने की क्या बात, गलत फहमी में ऐसा हो ही जाता है। मेरे दिल में तो अब कोई बात नहीं, वो आना चाहे तो शौक से आ जाए, मैं ऐसी तो नहीं कि वो आए और मैं कोई बद अखलाकी बरतूं।
0: बस तो हुजूर, मैं तो आपके हुक्म के इंतजार में था, मैं अभी जाकर कहता हूँ।
1: लेकिन सुनो तो।
0: हुजूर अब तो आकर ही सुनूंगा।
1: ओफो।
0: साहब साहब जल्दी से तैयार हो जाइए।
2: लेकिन किस बात के लिए?
0: दावतनामा कबूल करने के लिए।
2: कैसा दावतनामा?
0: हुजूर मेम साहब ने एक हल निकाल लिया, फरमाया दोनों में से कोई भी अगर पहले चाय नहीं पीना चाहता तो फिर दोनों साथ पी लें। साहब को बोलो अगर एतराज ना हो तो मेरे ही कमरे में पी लें।
2: क्या उन्होंने कहा है?
0: जहां खुद कहा है, इसलिए आप तैयार हो जाइए, बंदा सिंगल के बजाय डबल ट्रे लेकर हाजिर होता है।
1: एक कप और लीजिए।
2: बस बस शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आज तो मैंने 3 कप पी लिए, वरना एक से ज्यादा मैं कभी नहीं पीता है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ।
1: इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे तो जैसे ही अब्दुल करीम ने कहा कि साहब कहते हैं कल के वाक्य के बाद वे किस मुंह से चाय पीने मेरे कमरे में आए।
2: जी अब्दुल करीम ने क्या कहा?
1: यही कि आप उसकी बात मानकर चाय पीने यहाँ आ जाते, लेकिन
2: किसकी बात मानकर?
1: अब्दुल करीम की।
2: आप क्या कह रहे हैं?
1: क्यों?
2: अब्दुल करीम ने तो मुझे ये कहा कि आपने ये हल निकाला है कि अगर दोनों चाय पहले पीना ना चाहें तो फिर दोनों साथ पी लें।
1: क्या?
2: जी हाँ।
1: यानी आपने खुद यहाँ आना नहीं चाहा?
2: कतई नहीं, मैं तो आपके बुलाने पर।
1: गलत, मैंने आपको नहीं बुलाया, मैं क्यों बुलाती?
2: तो मैं क्यों आता भला?
1: मुझे क्या मालूम?
2: लेकिन मुझे मालूम है, मैं इतना जलील नहीं हूँ कि।
1: तो क्या मैं इतनी जलील हूँ कि अरे घरों को?
2: देखिए ऐसा मत कहिए आप।
1: तो आप भी मत कहिए।
2: मैं क्या कह रहा हूँ?
1: आपने कहा नहीं कि मैं इतना जलील नहीं, तो क्या मैं इतनी जलील हूँ?
2: नहीं नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो उल्टा आपका शुक्रिया अदा किया था।
1: तो क्या मैंने खुशी जाहिर नहीं की थी? मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस बकबक और लड़ाई झगड़े से, इसलिए तो भागकर कश्मीर आई थी।
2: और मैं किस लिए आया था? आपको मालूम नहीं मेरी जिंदगी में कितनी तलखी है, लोगों की बेरुखी और नफरत से बचकर अमन चैन और खामोशी के कुछ सांस लेने यहां आया था, मगर मेरी बदनसीबी तो 4 कदम आगे चलती है। अपनी खुशी क्या हासिल करता, दूसरों की खुशी का दुश्मन बन बैठा।
1: और क्या मैं इस इल्जाम से बरी हूं सतीश जी? मुझ में क्या औरत बन रह गया है? नौकरी करके, टीचरों से लड़ लड़ के, घर वालों की खुदगर्जी और बाहर वालों की नफरत देख देख कर मेरे अंदर भी क्या कुछ कोमल भावुक कविता और कल्पना से भरा रह गया है। सतीश जी मैं खुद सूखी नदी बन के रह गई हूँ, जिसके किनारे पर घास भी अपनी पत्ती खिलाना नहीं चाहती।
2: ऐसे न कहिए, ऐसे न कहिए संतोषी, ये आपका दोष नहीं है, ये जिंदगी, ये दुनिया, इसके लोग ही ऐसे हैं, ये सब ऊपर से देखते हैं, दिल में झांक कर कोई नहीं देखता। लेकिन मैंने भी ये क्या बात शुरू कर दी, आपका अच्छा भला मूड खराब कर।
1: नहीं नहीं, आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ।
2: अच्छा तो बाहर आइए ना, देखिए क्या सुनहरी धूप है।
1: अरे हाँ आइए, हाय जरा गुलमर्ग को देखिए, कितना ओसीला, कितना हरा भरा और कितना आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला लग रहा है।
2: अरे सच, कल दोपहर आए थे तो बड़ा बासी बासी सा लग रहा था, पर अब ओस में नहाकर घास कैसी जगमगा रही है,
1: और हरी भरी घास के ऊपर से ये देवदार के काले काले जंगल, सच क्या कलर कंट्रास्ट है,
2: और उनसे ऊपर अलपत्थर की ये चोटी देखिए तो बस क्या शीशा ही चमक रही है।
1: हाय सचमुच क्या प्यारी चोटी है, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे चांदी की बनी हो।
2: चलिएगा।
1: कहाँ?
2: वहाँ।
1: इतनी दूर, मेरा दिल कमजोर है।
2: आइए तो कहीं तो लौट जाएंगे, देखिए वो भी जा रहे हैं।
1: कौन?
2: वही दोनों।
1: वो मियाँ बीवी? कहाँ है
2: वो? देखिए जहाँ से जंगल शुरू होता है वो पोनियों पर।
1: हाँ हाँ देखिए कैसे जा रहे हैं,
2: हाथ पकड़ रखे हैं एक दूसरे के,
1: बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे को।
2: हाँ।
1: उम्र की

0: नजर निकल जाती है तो सब कुछ निकल जाता है।
1: हाँ, सब कुछ निकल जाता है, बस बुढ़ापा रह जाता है।
0: हाँ, पर आप अपने आप को कैसे बूढ़ा समझने लगे?
1: क्यों? क्या मैं जवान लगता हूँ?
0: बिल्कुल।
1: आप अपने आईने में देख रही हैं।
0: क्यों, क्या मैं जवान लगती हूँ?
1: आप संतोष जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब इंसान जानता है पर ये नहीं जानता कि जवाब देने का उसे हक है कि नहीं। चलिए, फिर धूप तेज हो जाएगी।
0: चलिए।

0: ओ सतीश जी, आपने क्या किस्सा सुनाया, मेरा तो हंसते हंसते बुरा हाल हो गया।
1: ये बताइए, आपके कॉलेज के किस्से से मजेदार है या नहीं?
0: बिल्कुल, और आपका अंदाज जान तो उसने डाली
1: जी।
0: बिल्कुल, तभी तो बातों बातों में लगाकर यहाँ तक ले आए। सच मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी ऊंची जा सकती हूँ।
1: कामयाबी तो तब समझूं जब आपको चोटी तक ले जाऊं और फिर अलपत्थर की वो नीली झीलें दिखाऊं।
0: ना बाबा ना, मैं वहां तक नहीं जा सकती, मैं तो बस यहाँ बैठूंगी।
1: हाँ हाँ, तो फिर यहाँ नहीं, वहां पर उस चश्मे के करीब। कहते हैं इसका पानी शहद की तरह मीठा होता है।
2: मैंने कहा संतोष जी को क्या बता रहे हैं सतीश साहब।
1: अरे आप
0: आप यहाँ?
3: हम तो हैं, मगर आप लोग कब आए?
0: बस अभी अभी।
1: बात ये है चंद्र साहब, मैं आ रहा था और आप भी आ रही थी, मैंने कहा साथ चलते हैं, साथ हो जाएगा।
2: ये वाकई आपने बहुत अच्छा सोचा, साथ वाकई बहुत अच्छा होता है।
3: गुलमर्ग से भी अच्छा होता है
0: जी।
3: मैंने अर्ज किया कि साथ गुलमर्ग से भी अच्छा होता है, साथ हो तो हर चीज गुलमर्ग हो सकती है, साथ ना हो तो गुलमर्ग भी गुलमर्ग नहीं। क्यों संतोष जी?
0: जी जी हाँ जी हाँ, बाहर आकर कंपनी जरूर चाहिए। आप देखिए ना, आपसे मुलाकात हो गई, इनसे मुलाकात हो गई, इसलिए ऐसा लगता ही नहीं जैसे मैं अकेली आई हूँ। आप लोगों का क्या प्रोग्राम?
3: हम तो नीचे जा रहे हैं
0: अभी से।
2: हम काफी देर से आए हुए हैं और हमें लौटना भी है।
1: क्या आज ही लौट जाएंगे?
2: जी हाँ, कल हमें पहलगांव जाना है, आप ठहरिएगा।
1: जी हाँ, अभी कुछ सोचा तो नहीं, लेकिन शायद एक रात और ठहरें।
3: और पहलगांव?
1: देखिए जाना तो है, मगर गुलमर्ग भी कुछ कम खूबसूरत नहीं।
3: जी हाँ, गुलमर्ग कम खूबसूरत नहीं है। अच्छा तो हमें इजाजत है?
0: अच्छा देखिए, पहलगांव में मुलाकात हो शायद।
3: बेहद खुशी होगी। नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: देखा आपने?
0: क्या?
1: हम पर छींटा कसा।
0: पर मुझे बुरा नहीं लगा।
1: क्यों?
0: मालूम नहीं क्यों, उल्टा बहुत अच्छा लगा। आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों बाद। गुलमर्ग, खिलनमर्ग, पहलगाम, सच सतीश जी आपने मिलते हैं तो ये सब कुछ मैं इतनी अच्छी तरह से ना देख पाती।
1: और मैं संतोष जी, मेरी जिंदगी के ये 15 दिन ऐसे कटे हैं कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपका साथ, आपका हर वक्त मेरा ख्याल रखना, हम लोगों का एक साथ घूमना, चाय पीना, खाना खाना, ओहो मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं।
0: आप तो शुक्रिया अदा कर देंगे, पर मैं किस तरह आपका एहसान चुका सकूंगी। पहलगांव में तबीयत खराब होने पर जिस तरह दो रातें आपने मेरे सिरहाने आंखों में काटी।
1: आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या ये इंसान का फर्ज नहीं होता?
0: फर्ज?
1: हाँ?
0: आप इस दुनिया में फर्ज की बात करते हैं सतीश जी? पिछले साल मुझे 21 दिन तक टाइफाइड चढ़ा था। मेरी माँ, मेरे दो सगे भाई, मेरी दो सगी भावजी घर में थी, सब मेरे रुपयों पे पलते हैं, लेकिन रात मेरे पास कोई नहीं सोया, दवा और पानी का गिलास रखकर सब चले जाते।
1: उनका जिक्र न कीजिए संतोष जी, माँ बाप भाई बहन कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के होते।
0: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सतीश जी, मैंने घर वालों की खुशी के लिए शादी नहीं की, लेकिन मेरी खुशी की कोई नहीं सोचता। कोई शादी की बात भी करता है तो मेरी माँ कहती है मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसे शादी की हाय नहीं है।
1: बिल्कुल मेरी

0: जैसी बात है। घर पर कोई भी आता है तो कह देते हैं, नहीं साहब, भाई साहब शादी नहीं करेंगे, उनसे बात चलाना बेकार है। गोया भाई साहब को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, भाई साहब तो पत्थर हैं।
1: ओह, मैं कितनी बुरी हूँ, ऐसी बात ले बैठी, आपको भी उदास कर दिया। आप चाय पियेंगे?
0: नहीं संतोष जी, आज अपने कमरे में ही चाय पीऊंगा।
1: क्यों?
0: इसलिए कि आज आप चाय पिला देंगी, पर कल के बाद तो फिर खुद ही चाय बनाना और खुद ही पीना होगा।
1: कल जरूर जाएंगे?
0: जाना ही होगा संतोष जी, एक दिन तो लौट नहीं होगा।
1: कुछ दिन और नहीं ठहर सकते?
0: ठहर सकता हूँ, पर दो चार दिन ठहरने से क्या होगा?
1: दो चार दिन के लिए भूली रहूंगी कि दुनिया बुरी होती है, लोग खुदगर्ज होते हैं, कोई किसी के दर्द की दवा नहीं बनता।
0: ये आप क्या कह रही हैं संतोष जी, मुझे मालूम नहीं कि मुझे ये कहने का हक है कि नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूँ, अगर आपने मुझे अपने लिए कुछ करने का कभी भी मौका दिया तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा।
1: और मैं क्या, मैं इतनी बदनसीब हूँ कि जिसने पहली मर्तबा मेरे दिल को यूं रखा, मैं उसे लेती ही रहूंगी, तकलीफ ही देती रहूंगी?
0: ये मेरे लिए तकलीफ नहीं होगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। जिंदगी में मैं पहली बार महसूस करूंगा कि किसी ने मुझे अपना समझा है।
1: और मैं क्या, मैं कभी किसी को महसूस न करा सकूंगी कि मैं भी किसी की हो सकती हूँ, मैं भी किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ?
0: संतोष जी,
1: मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना।
0: ये क्या संतोष जी, ये क्या पागलपन है? संतोष, ये क्या पागलपन है?
1: मुझे रोने दो, मुझे अपने फूटे भाग पे रोने दो।
0: रो मत संतोष, रो मत। अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुमसे वो कह दूं जो आज तक मैंने ठुकराए जाने के डर से किसी से नहीं कहा, तो लो, मैं कह देता हूं, मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना लो।
1: तुम सच कह रहे हो?
0: हाँ संतोष, मुझे अपना लो, क्योंकि अपनी जिंदगी की सूनी सड़क पर गुलमर्ग के रास्ते में खड़े सफेदे के पेड़ों की तरह तना नहीं खड़ा रहा जाता। मुझे सहारा दो, अपना साथ दे दो।
1: मेरे सतीश, तब मेरा भी हाथ थाम लो, मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, पर जो बचा है उसे तो पा लेने दो।
0: मेरे साथ।

0: सफेदे के पेड़ अभी आप सुन रहे थे ये नाटिका। लेखक रेवती शरण शर्मा थे और निर्देशक दीनानाथ। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: कार्यक्रम चित्रलोक बस कुछ ही पलों में।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, फिल्म का नाम है विजय पथ। गीतकार हैं जमीर काजमी और संगीत अनु मलिक का।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें थीं। फिल्म का नाम था विजय पथ। इस गीत को जमीर काजमी ने लिखा और धुन बनाई अनु मलिक ने।
1: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
2: क्यों?
1: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट

बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। मन चाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: मोहित चौहान और उज्जैनी की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म तनु वेड्स मनु का गीत, राजशेखर के बोल और कृष्णा का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: सोनू निगम की आवाज, फिल्म का नाम संघर्ष, गीतकार हैं समीर और संगीतकार जतिन ललित।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी

0: भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यानी इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: थोड़ी सी बेवफाई। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का दो गाना, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे। गीत को लिखा था गुलजार साहब ने और धुन बनाई थी खय्याम ने। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में है। ये फिल्म है शर्मिली। गीत रचना नीरज की और संगीत सचिन देव बर्मन का।
1: कैसे कहें हम प्यार ने हमको

0: किस्मत हमसे खुद से हम।
1: किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था शर्मिली। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। मदन मोहन का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह आवाज़ है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है प्यार का मौसम, शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन हैं।

ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था प्यार का मौसम। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा की रचना, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है हाथ की सफाई।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी में, गीत गुलजार साहब का और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार

इस दोगाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी।
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कह लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस समय
1: और मुझे
0: नाम
1: वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

1909 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कवाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूँगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब।
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

सुपुत्री श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बीमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदमी बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ
0: बेचारा
1: अच्छा।
0: जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी।
2: दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा।

शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गई इस फानी दुनिया से, दे गई फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थी, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

छाया गीत में आप सभी का स्वागत है। ये दुनिया ही अजीब है, यहाँ कोई प्यार मांगता है तो उसे मिलती है झिड़की। उस पर आलम ये है कि एक मुस्कान को भी लोग प्यार

समझ बैठते हैं और संजोने लगते हैं ढेर सारे एहसास। मौका मिलते ही चल पड़ते हैं इन भावनाओं का बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी मंजिल की ओर। पर कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। एक ना एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है और होता है कुछ ऐसा हाल।

0: एक बार जो दिल टूट जाता है तो गिनी जाती हैं अपनी कमियां। 100 नुक्स खुद में निकाले जाते हैं तो 100 इल्जाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, यूं ना होता तो ऐसा होता। पर क्या इन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं भला? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
2: गाना न आया, बजाना न आया।

तेरी की सड़क तेरी है देसी राग की ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले हुँ, हुँ? गले को गर्म कर

दोस्त लेकिन ओ जने मन है जने मन। कांटे छुरी से खानन आया, कांटे छुरी से खानन आया, दिलबर को अपना बनानन आया, दिलबर को अपना बनानन आया, गानन आया बजानन आया, अरे ये नहीं आया अरे वो नहीं आया, गानन आया बजानन आया।

जब अपनी कमियों और हालातों को दोष देकर कुछ आराम मिलता है, तब समझ आता है कि भाई सारा कसूर है इस दिल का। ये बदमाश न जाने क्या क्या मन में घोलता रहता है और मन इसके इशारे पर नाचता रहता है। लाख कोशिशें की जाती हैं कि दिल और दिमाग की दुश्मनी करवा दी जाए, न ये दिल बहकाएगा और ना ही डोलेगा मन, वरना इस दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब कहां कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे।

छाया गीत में आप सुन रहे हैं दिल और दिमाग का सुरताल। लो जी, लाख समझा लो पर मन को तो करनी है अपनी ही। अब देखिए ना, आ पहुंचा है किसी के पीछे पीछे इतनी दूर, और उस पर ये दिल मन को बहका रहा है कि कुछ बदमाशी तो की जाए। अब इन दोनों बदमाशों के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाएं। जाने कौन सा सुर साध रहे हैं और कौन सा राग चल रहा है इनका।

जहाँ दिल और दिमाग अपने सुर और ताल मिला लें, वहाँ समझो इंसान का बंटाधार है। उस पर जो नजर आए कोई खूबसूरत चेहरा, तो मानो हम गए काम से। डरते डरते भी आ पहुंचे हैं उनके पीछे, लेकिन वो भाई वो तो वो हैं, क्या कहने।

बहकी निगाहें माशा अल्लाह बाकी अदाएं माशा अल्लाह माशा अल्लाह पलकों की उठती गिरती चिलमन

तीर चलाए माशा अल्लाह, दिल का करार हो तुम, जाने बहार हो तुम, करने को आए हैं नजारे हम बेचारे।

चाल तुम्हारी सबसे आला, ला ला ला ला। बात तुम्हारी रस का प्याला, अपना तो हाल कुछ ना पूछो, कैद हुआ है चाहने वाला, जुल्फों के जाल में हम, तेरे ख्याल में हम उलझे हैं अरमां हमारे, हम बेचारे प्यार के मारे, और तुम तो तुम हो बहरे बहरे, तो डरते डरते

0: दिल और दिमाग की ये तिकड़म कभी कभी काम भी कर जाती है। जी हाँ, भले ही सामने हमसे बातें ना की हों, लेकिन खिड़की से वो भी झांकते हैं चुपके चुपके। तो क्या उधर भी चल रही है दिल और दिमाग की सरगम? क्या वहां भी हो रही है वही तिकड़म? अब ये बात जाने भी तो कैसे। हाँ, एक रास्ता है।
1: वो झरोके से जो

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: वाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की।

0: रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakil. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realising the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and launched a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety,